सुप्रभात। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। आज बृहस्पतिवार है, शक संबत 1948, आश्विन माह की तिथि 9, तदनुसार 1 अक्टूबर ईस्वी सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए चलेंगे आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और एक पुस्तक 100 लैंडमार्क्स जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया का विमोचन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल।

शामिल है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों के बीच भारत और पोलैंड के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से कारोबार के लिए नए अवसर पैदा करने और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि इस सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज और संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली में जल आपूर्ति तंत्र को और मजबूत करने के लिए 6,044 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी है। यमुना नदी की सफाई के लिए 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंका में श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चित्रकूट में माताओं से श्रीराम, सीता और लक्ष्मण के साक्षात्कार और चारों भाइयों के परस्पर मिलन का दृश्य जहां एक ओर स्नेह सिंचित था, वहां दूसरी ओर अयोध्या पति के निधन के समाचार ने एक बार फिर सभी को शोक के सागर में डुबो दिया। दूसरे दिन कुलगुरु के आदेशानुसार वैदिक रीति से श्रद्धा भक्तिपूर्वक श्राद्ध संपन्न करके वैसे ही शुद्ध हुए जिस प्रकार तीर्थों के आवाहन से पतित पावनी गंगा शुद्ध होती हैं। अद्भुत दृश्य उपस्थित है चित्रकूट में, जहां दुखी अयोध्यावासी कंदमूल और फल का आहार करते हैं। भरत, शत्रुघ्न, मंत्रियों तथा माताओं को व्याकुल देख श्रीराम को एक एक पल भारी हो रहा है। अतः उन्होंने वशिष्ठ जी से सबको लेकर अयोध्या लौट जाने का आग्रह किया।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। प्रस्तुत है अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी और साथियों के स्वर में ये भक्ति गीत। इसी के साथ हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये चायबसा केंद्र है और अब श्रोताओं, आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें। 6:45 पर आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, कलाकार होंगी मृणालिनी अखौरी। सुबह 7 समय होगा जोहार चायबसा का कार्यक्रम का, जिसमें आप कुछ बॉलीवुड फिल्म गीतों का आनंद ले सकेंगे। समाचार प्रभात प्रातः 8 और मॉर्निंग न्यूज़ का प्रसारण 8:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 8:30 पर आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:40 पर माटी की महक, जिसमें आप सुनते हैं लोकगीत, तो आज हम आपको सुनवाएंगे हो लोकगीत। कलाकार होंगी फूलमती पाटपिंगवा और उनके साथी।

सुबह 9 बजे समय होगा कार्यक्रम विविधा का। श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में आज हम बात करेंगे रेजिंग डे ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के बारे में। और आज श्रोताओं, वृद्ध व्यक्तियों का आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है और एनी बेसेंट की जयंती है। और हम पुण्यतिथि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में, जिनकी आज पुण्यतिथि मनाई जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। 9:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रसरंजन। और सुबह 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हम आपको सुनवाएंगे, जिसके प्रायोजक होंगे NCERT। 10:30 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र। हमारे सायंकालीन सभा की शुरुआत होगी 5:02 पर। तो श्रोताओं, अभी आप जानकारी ले रहे थे आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

मृणालिनी या खौरी के स्वर में गाए इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार चाईबासा। जोहार चाईबासा सुनने वाले सभी श्रोताओं को

निशा का जोहार। श्रोताओं, आज के सुहानी सुबह में दिल से स्वागत है। सुबह का समय अपने आप में एक नई शुरुआत है। बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आज के दिन को मुस्कुराहट के साथ अपनाने का समय। आज की सुबह को बनाते हैं संगीत से मधुर और अपने विचारों से सकारात्मक और अच्छी बातों से यादगार। श्रोताओं, हर सुबह हमें ज़िंदगी का एक नया अवसर देती है। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हम बीते कल की चिंता छोड़कर आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। सच ही तो है, हम बीते हुए कल को कभी बदल नहीं सकते, लेकिन आज का एक अच्छा कदम आने वाले कल को ज़रूर बदल सकता है। इसलिए आज मुस्कुराइए, किसी अपने से प्यार से बात कीजिए और अपने काम की शुरुआत पूरे विश्वास के साथ कीजिए, क्योंकि अच्छी शुरुआत ही अच्छी दिन की पहली सीढ़ी होती है। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ सुनते हैं ये गीत।

लता मंगेशकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे रवि के धुन पर फिल्म आंखें का ये भजन। श्रोताओं, संगीत के साथ आपकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप बाइक या स्कूटर से निकल रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहने, कार में सफ़र कर रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाना ना भूलें। और सुनवा रहे हैं आपको हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र कृष्ण के बोल शंकर जयकिशन के धुन पर लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म धरती का ये गीत। और अब श्रोताओं, सुबह की हवा में एक अलग ही ताजगी होती है। अगर आपके पास समय हो तो कुछ मिनट खुले वातावरण में टहलने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन मौसम खराब हो तो खुले स्थानों में जाने से बचें। और जी हाँ, मोबाइल की स्क्रीन देखने से पहले कुछ पल अपने आसपास के लोगों को भी देखना न भूलें। घर में किसी बड़े बुजुर्ग का हाल पूछिए, बच्चों से प्यार भरी बातें कीजिए और अपने परिवार के साथ दिन की शुरुआत कीजिए। यही छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को खूबसूरत बनाती है दोस्तों। और सुनते हैं अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना किशोर कुमार को फिल्म दिल तुझको दिया, और अब अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको मोहम्मद रफ़ी का गाया, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धुन पर फिल्म आशा से।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी का गाया, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धुन पर फिल्म आशा का ये गीत। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से हम आपको सुनवा रहे हैं जोहार चाईबासा कार्यक्रम में ये गीत। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि खुश होने के लिए कोई बड़ी वजह चाहिए, लेकिन खुशी तो छोटी छोटी चीज़ों में भी छिपी होती है, जैसे कि सुबह की चाय, खिड़की से आती ठंडी हवा और किसी अपने की मुस्कान और साथ में पसंदीदा गीत। तो सबसे बढ़कर और उससे भी बढ़कर है कि हम स्वस्थ होकर एक और सुबह को देख पाए। किसी को धन्यवाद कहने का मौका मिले तो ज़रूर कहिए, क्योंकि एक छोटा सा अच्छा व्यवहार किसी का पूरा दिन अच्छा बना सकता है। और सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

0: गीत, इससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

फिल्म का नाम था आए मिलन की रात। बेला क्षमा करेंगे, आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में शंकर जयकिशन की धुन पर। दोस्तों, सुबह का समय कितना खूबसूरत होता है ना। कहीं चूल्हे पर चाय चढ़ी होती है, कहीं बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया जा रहा होता है और कोई ऑफिस जाने की तैयारी में है, कहीं हमारे किसान भाई अपने खेतों की ओर निकल चुके हैं। शहर हो या गांव, सुबह की अपनी एक अलग कहानी होती है और इस कहानी में रेडियो भी तो आपका एक साथी ही है। आप काम करते रहिए, चाय की चुस्की लेते रहिए और हमारे गीत संगीत का आनंद लेते रहिए, क्योंकि रेडियो की खूबसूरती ही यही है। यह आपके घर में बिना किसी औपचारिकता के आता है और धीरे धीरे आपके परिवार का हिस्सा बन जाता है। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनवा रहे हैं आपको हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के गुलस्वर में सुता हूँ। अभी आपने सुना फिल्म यादों की बारात का ये गीत। दोस्तों, अब हमारे इस प्रातःकालीन संगीत सफ़र का समय धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर है, लेकिन जाने से पहले ये संदेश जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले अच्छी सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, मौसम के ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा करें, सड़क पर जल्दबाजी नहीं, सुरक्षा को प्राथमिकता दें और सबसे ज़रूरी अपने चेहरे की मुस्कान को पूरे दिन बनाए रखें, क्योंकि आपकी मुस्कान सिर्फ आपकी ही नहीं आपके आसपास के लोगों को भी खुश कर सकती है। और सुनते हैं ये गीत।

लता मंगेशकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जंगली का ये गीत। और इसी के साथ श्रोताओं, जोहार चाय वासा कार्यक्रम का सफ़र यहीं समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया। सऊदी अधिकारियों ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर चाकू से हमला करने और दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास के आरोप में ओमान के सह पायलट को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 174 लोगों की जान बचाने वाले कप्तान को सच्चा नायक बताया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी। यह कार्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन आयोजित किया गया।

0: अनुपमेश आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीनीकरणीय विद्युत ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा।
2: 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग DED के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रो एंटरोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों का उल्लेख किया।
3: आयुष्मान भारत पीएम जय,
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना से अब तक 60 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और इसका लक्ष्य 70 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है।
1: खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं, जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीप शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस MM सुंदरेश और PB बराली की खंडपीठ ने संकेत दिया कि वे दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, जबकि दिन भर पटाखे जलाने की अनुमति देने से पर्यावरण और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में वायु प्रदूषण के दौरान पटाखों पर पाबंदी से जुड़े एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ये बात कही। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: हमले के कारण दो मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। इसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट किया गया और उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रहे हैं। वर्तमान में स्मिथ तबुक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दूतावास ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन के परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी के अधिकारियों के समन्वय से हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अटूट साहस दिखाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टली। प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छार को सच्चा नायक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम एक ऐसे उदाहरण की बात कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आधुनिक बुनियादी ढांचे और मजबूत जुड़ाव की परिकल्पना जम्मू कश्मीर में बने ऐतिहासिक चिनाब और अंजी खड्ड रेलवे पुलों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है।
6: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
7: 6 जून 2026 को चिनाब और अंजीखड़ रेलवे पुलों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पुलों को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक और जम्मू कश्मीर में रेल यातायात को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा पड़ाव बताया। ये दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और इन्हें मुश्किल पहाड़ी इलाकों में बनाया गया है। चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना चिनाब रेलवे पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और अंजी पुल भारत का पहला तारों पर टिका रेलवे पुल है। इन पुलों के जरिए न केवल जम्मू कश्मीर का शेष भारत से रेल संपर्क जुड़ा बल्कि माल ढुलाई और पर्यटन में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इन पुलों की वजह से कश्मीर के कृषि, बागवानी और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर के बाजारों तक तेजी से पहुंचाना आसान हो गया। कुलगाम के एक सेब उत्पादक तजमुल अहमद का मानना है कि रेल संपर्क जुड़ने से जम्मू कश्मीर के फल उत्पादकों के लिए अपनी उपज को देश भर में पहुंचाना बहुत आसान हो गया।
8: जब से रेल कनेक्ट हो गई है तो तब से हमारी जो मेवा सन्नत है इसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि हम एक तो अपना मेवा मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए इस रेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये कि किराया भी बहुत कम देना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि रेलवे कनेक्टिविटी जो है ये हमारे इस मेवा सेक्टर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
7: जानकारों का कहना है कि ये पुल न सिर्फ इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है बल्कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ और भी मजबूती से जोड़ने की अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जापान एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। वहीं महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के तटवर्ती और भीतरी इलाकों, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश की संभावना है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की संभावना है। इसके साथ ही वर्षा भी हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी की
9: खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हों expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
1: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी। धन्यवाद जया। दीपावली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बयान को आज सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट का देश भर में पटाखों पर रोक से इनकार, कहा 2400 घंटे भी आतिशबाजी नहीं, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। लोकसत्य ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, भावनाओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण में संतुलन जरूरी, पटाखों पर पूर्ण रोक नहीं, दिवाली से पहले तय होंगे नियम। दुबई से इसराइल जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर क्रैश कराने की कोशिश की खबर भी आज की अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक जागरण लिखता है, विमान हाईजैक कर इसराइल में क्रैश कराने को मंसूबा, भारतीय पायलट ने साहस दिखाकर बचाए 172 जाने। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इसराइल जा रही फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग, भारतीय पायलट ने 9/11 जैसे आतंकी हमला रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत को लेकर की खबर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। प्रधानमंत्री मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चर्चा की, दोनों करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत, जनसत्ता की सुर्खी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am V.C. Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to participate in centenary celebrations of UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Cabinet hikes minimum support prices for Rabi crops for 2027-28 marketing season. Government to launch auction of offshore mineral blocks today to unlock India's offshore mineral potential. Supreme Court rules out total ban on firecrackers ahead of Diwali. Favors balanced approach. Saudi authorities arrest Omani co-pilot for stabbing captain and attempting to crash fly Dubai flight traveling from Dubai to Tel Aviv. Prime Minister Modi describes Indian pilot Smith Machar a true hero for saving 174 lives. And in men's cricket, India beat the West Indies by 8 wickets in the second ODI in Guwahati to take an unassailable 2-0 lead. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of the Union Public Service Commission UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. The Prime Minister will also address the gathering on the occasion. A report.
10: The program will mark the culmination of year-long celebrations that commenced on 1st October last year, commemorating 100 years since the establishment of the Union Public Service Commission in 1926. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi will release a UPSC centenary commemorative coin, a commemorative stamp, and a book titled 100 Landmark Judgments Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India. The program will witness participation of stakeholders from across the country, including chairmen and members of state public service commissions, senior officers of Government of India, academicians, UPSC officials and others. This event is part of the two-day program being held by UPSC. Yesterday, on the first day, Shatabdi Samaroh Manthan was held at Bharat Mandapam. Eminent speakers addressed the event and it was followed by panel discussions on various themes. Anupam Mish, Akashwani News, Delhi.
9: The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated Rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal and wheat by 25 rupees per quintal.
11: Rabi season ki MSP badhane se
12: the increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition of their hard work and efforts. MSP is determined through a well-established mechanism based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices. The new MSP rates for the six major Rabi crops, wheat, barley, gram, lentil, rapeseed and mustard and sunflower have been approved today. This decision is in line with the government's commitment to ensuring that MSP remains at least 50% above the cost of production.
11: Us commitment ko dhyan mein rakhte hue ye naye MSP approve hue.
9: The minister said the CCEA has also approved the implementation of the intelligent traffic management system project by the Delhi police at an estimated cost of over 1,789 crore rupees inclusive of taxes. Mr. Vaishnav said the Union Cabinet also approved the Green Energy Corridor Phase 3 scheme. The Ministry of Mines will launch the auction of offshore mineral blocks today. The ministry said that this marks an important step towards unlocking India's offshore mineral potential and strengthening the country's long-term mineral resource security. The auction comprises two offshore mineral blocks in the Andaman Sea region, which will be offered for grant of composite license. The ministry underlined that it is expected to encourage systematic exploration, attract investment and promote the adoption of advanced technologies for offshore mineral exploration and development. The Supreme Court has ruled out a complete ban on firecrackers ahead of Diwali and favoured a balanced approach. A bench of Justices M.M. Sundaresh and P.B. Varale indicated it will permit the use of certain firecrackers during Diwali but impose specified time limits, ruling out both a blanket ban and unrestricted bursting of crackers. The apex court stressed the need to strike a balance between religious sentiments and the harmful effects of air pollution. It said a complete ban could hurt the sentiments of people celebrating Diwali, while allowing firecrackers throughout the day will adversely affect the environment and vulnerable groups, including children, the elderly and the sick. The apex court was hearing a long-pending matter concerning restrictions on firecrackers in Delhi NCR and other northern states during the period of severe air pollution. This is Akashwani giving you the news.
5: News that keeps you informed. Follow us on X at AIR News Alerts and on Public at AIR News Alerts.
9: Saudi authorities have arrested an Omani co-pilot after he stabbed the captain and attempted to crash a Fly Dubai flight traveling from Dubai to Tel Aviv in Israel. The Omani co-pilot stabbed the captain and caused the aircraft to plunge roughly 17,400 feet in under 2 minutes yesterday. However, passengers and crew members, including off-duty personnel, breached the cockpit, subdued the attacker and helped stabilize the plane. The flight was diverted and landed safely at Tabuk Regional Airport in the northwestern Saudi Arabia. More in this report.
13: Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Israel Katz described the event as a severe security incident and a suspected terrorist attack. Israeli Prime Minister described Captain Smith Matcher, an Indian national, a true hero who saved the lives of 174 people on board the Israel-bound flight. Mr. Netanyahu said Captain Smith Matcher displayed extraordinary bravery by fighting back and preventing a mid-air disaster. Prime Minister Narendra Modi has said that in the face of the gravest danger and despite being seriously injured, Captain Smith Mathur showed immense courage and an unwavering resolve to protect the lives of others. In a social media post, Mr. Modi said his valor helped save hundreds of lives and avert a great tragedy. He said Captain Smith is a hero and India is proud of him. The Prime Minister prayed for a speedy recovery, renewed strength and good health. US President Donald Trump also hailed Captain Smith as a hero for fighting off a knife attack on the Omani co-pilot, opening the cockpit door and calling for help to foil a bid to crash the aircraft. India's embassy in Riyadh and its consulate general in Jeddah said they are closely monitoring the health of Captain Smith Mathur. In a statement, Indian embassy said Captain Mathur is currently admitted to a hospital in Tabuk and receiving medical treatment. The embassy said initial reports indicate that his condition is stable. Komudi Pare, News.
9: That in the face of the gravest danger and despite being seriously injured, Captain Smith Mathur showed immense courage and an unwavering resolve to protect the lives of others. In a social media post, Mr. Modi said his valor helped save hundreds of lives and avert a great tragedy. He said Captain Smith Mathur is a hero and India is proud of him. The Prime Minister prayed for his speedy recovery, renewed strength and good health. In men's cricket, India crushed the West Indies by 8 wickets in the second ODI of the 3-match series at Barsapada Cricket Stadium in Guwahati last night, taking an unassailable 2-0 lead. Put into bat, West Indies posted their highest ever ODI total of 405 for 7. India comfortably chased down the target in 43.3 overs, losing only 2 wickets. Captain Shubman Gill led the charge with a sensational unbeaten 233 of 133 balls, while Rohit Sharma scored 101 of 75 balls to register his 35th ODI century. India will begin Day 12 of the Asian Games 2026 with hopes of adding more medals to their tally today, with several key events lined up across disciplines. The spotlight will be on the men's hockey semi-final, where India will take on arch-rivals Pakistan in a highly anticipated clash. The Indian team will be aiming for a win to secure its place in the final. Meanwhile, the Indian women's hockey team has already secured its place in the gold medal match against China. In cricket, defending champions India will face Sri Lanka in the men's semi-final. India will look to secure a victory and move one step closer to defending their Asian Games title. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva, Se Desh Seva, and a relentless commitment that continues today. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today in this special series, we bring you an instance of how PM Modi led government's vision of modern infrastructure and stronger connectivity is being translated into action through the remarkable Chenab and Anji Khad railway bridges in Jammu and Kashmir.
6: Udhampur, Srinagar, Aramula, ye rail line project, ye sirf naam nahi hai, ye Jammu Kashmir ke naye samarth ki pehchan hai. Chenab Bridge, duniya ka sabse uncha railway arch ब्रिज है हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था चुनौतीपूर्ण था लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है
7: After inaugurating the Chenab and Anji Khad bridges on June 6 last year, Prime Minister Narendra Modi described the railway bridges as symbols of India's engineering capabilities and milestones in strengthening connectivity in Jammu and Kashmir. The two bridges are vital components of Udhampur Srinagar Baramulla rail link and were built across challenging mountainous terrain. The Chenab rail bridge, standing 359 meters above the Chenab River, is the world's highest railway arc bridge. The Anji bridge is India's first cable-stayed railway bridge, supported by 96 cables. Tajamul Ahmed, an orthodontist from Kulgam, believes that the rail connectivity made possible by the construction of these bridges has made it easy for the apple growers to transport their produce to the other parts of the country safely.
14: Previously, we used to face enormous problems in transporting our fruits and other agricultural produce to the different parts of the country. But ever since the operationalization of Katra Banihal Srinagar rail link, it has become very easy for us to transport the fruits to the different states and markets of the country.
7: Ishfaq Shah, Akashwani News, Srinagar.
9: And now, for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Pramod. Israel-bound plane drops 16,000 feet in a minute as pilot stabs colleague, headlines the Hindu. While the Indian Express headlines, mid-air scare, flight plunges as co-pilot stabs pilot. Israel says terror bid to bring down plane. And the Tribune headlines, Indian captain fights for co-pilot trying to crash Israel-bound

0: Spain. The paper adds that he saved 174 on board the Dubai-Tel Aviv flight. Most papers also have on their front page the story of PM Modi calling President Trump and discussing regional and global issues against the backdrop of New Delhi's concern over a U.S. sanctions law on Russia. The Hindustan Times says, trade, defense, energy ties in focus as Modi-Trump talk, while the Asian Age has on its front page, Modi speaks to Trump amid U.S. tariff threat over Russia oil. Hashim Musa, last man linked to Pahalgam attack, killed in JNK, headlines the Pioneer, while the Statesman says, security forces killed senior LET commander Musa in JNK. And finally, a report in the Economic Times says that buoyant quarter two demand for consumer goods lifts festive sales outlook. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Sarabjit. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to participate in centenary celebrations of UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Cabinet hikes minimum support prices for rabi crops for 2027-28 marketing season. Government to launch auction of offshore mineral blocks today to unlock India's offshore mineral potential. Supreme Court rules out total ban on firecrackers ahead of Diwali, favors balanced approach. Saudi authorities arrest Omani co-pilot for stabbing captain and attempting to crash fly Dubai flight traveling from Dubai to Tel Aviv. Prime Minister Modi describes Indian pilot Smith Machar a true hero for saving 174 lives. And in men's cricket, India beat West Indies by 8 wickets in second ODI in Guwahati to take unassailable 2-0 lead. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: पोती का जन्म ठीक से हो गया, चलो सब घर चलते।
4: सुनिए, डॉक्टर साहब ने अस्पताल में 2 रात रुकने को बोला था।
3: नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं।
4: अरे देख के, हाय गिर गए।
5: अच्छा मलहम लगाओ, पट्टी करो और एक्सरे करो जल्दी।
6: देखा आपने, कोई भी गड़बड़ होने पर यहाँ तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद के 48 घंटे माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसलिए अस्पताल में 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेकर चांस क्यों लेना,
7: चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना।
8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
9: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
10: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गाँव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
9: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
10: बहन पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
9: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
8: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना और टेली आईसीयू सेवाओं की हुई शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ग्रामीणों को मिलेगा सीधा लाभ। बड़गाई जमीन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप तय होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज। भाजपा ने मांगा इस्तीफा, झामुमो ने आरोपों को बताया मनगढ़ंत। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा की। कहा, गिरिडीह में 5 मार्च से पहले होगा उपचुनाव। दुमका, धनबाद और जमशेदपुर समेत कई जिलों में आज बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। और रांची में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत वेस्टइंडीज T20 मैच के टिकटों की बिक्री 5 और 6 अक्टूबर को होगी। ऑनलाइन और काउंटर दोनों माध्यमों से मिलेंगे टिकट। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल तकनीक से जोड़ने के लिए रांची में 2 दिवसीय झारखंड डिजिटल हेल्थ कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना और टेली आईसीयू समेत कई पोर्टल्स की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि AI और टेलीमेडिसिन का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण मरीजों को मिलेगा।
1: जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम

0: जिस समय पुलिस उनको दिल्ली आवास में ईडी के साथ पहुंची थी गिरफ्तार करने के लिए, 40 घंटे तक ये राज्य जो था भगवान भरोसे था। 6-7 महीने वो जेल में रहे, उस दौरान वो वर्चुअली जेल से सरकार चल रही थी। तो झारखंड की बदनामी और जग हसाई पूरे वैश्विक स्तर पर मुख्यमंत्री जी ने कराया।
1: इस पर झामुमो नेता मनोज पांडे ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे झूठा और मनगढ़ंत मामला बताते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और अंततः सत्य की ही जीत होगी।
2: इनोसेंट है वो बरी होंगे, लेकिन लोकप्रिय मुख्यमंत्री एक आदिवासी का बेटा को फंसाने का काम आप कर रहे हैं, आपके मंसूबे सफल नहीं होंगे। हम निर्दोष हैं, हमारे नेता निर्दोष हैं, इनोसेंट हैं, वो बरी होंगे। लेकिन जो लोग उंगली उठाते हैं उनको याद होना चाहिए, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा उससे बड़ा आरोप किसी पर होगा। एक मिसाल पेश करें।
1: साहिबगंज जिले में आज से 9 अक्टूबर तक 7 दिवसीय विशेष दस्तावेजीकरण अभियान शुरू हो रहा है। इसके तहत पलाश सखी मंडल की पात्र दीदियों को मुद्रा लोन से जोड़ा जाएगा। विभिन्न पंचायतों में कैंप लगाकर आवेदन तैयार किए जाएंगे ताकि महिलाओं को कृषि और व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता मिल सके। रांची के मोरहाबादी में आज से 7 दिवसीय एक्सपो उत्सव की शुरुआत हो रही है। इस 29वें व्यापार मेले में देश विदेश के करीब 400 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। मेले में घरेलू सामानों से लेकर कई अत्याधुनिक उत्पादों की प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, जिसे लेकर स्थानीय निवासियों में उत्साह है। पलामू के विश्रामपुर अंतर्गत सोडीहा में संचालित राहत अस्पताल को सील कर दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार पांडे द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में चिकित्सक की अनुपस्थिति में इलाज और अवैध अल्ट्रासाउंड संचालन का मामला सामने आया है। इस संबंध में विश्रामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने गिरिडीह में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नए मतदाताओं के नाम जोड़ने पर विशेष जोर दिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि गिरिडीह विधानसभा उपचुनाव मतदाता सूची का काम पूरा होने के बाद 5 मार्च से पहले कराया जाएगा।
3: एनसीआर जितना भी आपका फेस्टिवल है वो कम्प्लीट होने के बाद से आपका इलेक्शन का प्रक्रिया शुरू होगी। अभी कमीशन का डेट हम लोग को दिया चुका है, उसमें जैसे हम लोग का 5 तारीख तक समय है, उसका पहले झारखंड में चुनाव कमीशन अनाउंस करेगी, उस हिसाब से गिरिडीह में बैठ रखेंगे।
1: साहिबगंज में पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना की समीक्षा बैठक की हुई। छात्र छात्राओं की कम उपस्थिति पर उपायुक्त दीपक दुबे ने प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने स्कूलों में बच्चों की नियमित उपस्थिति और सभी नामांकित छात्रों के लिए आयरन एवं फॉलिक एसिड की गोलियों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया है। हजारीबाग के दारू प्रखंड में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। हरली गांव में छापेमारी कर 2,198 लीटर अवैध नकली विदेशी शराब बरामद की गई है। मुख्य अभियुक्त श्रवण सुंडी और धनेश्वर महतो फरार है, जबकि मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर सिमडेगा के कोलेबिरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक एम्बुलेंस से 83 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने वाहन जांच के दौरान ओडिशा से रांची जा रहे 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ डीडी पासवान के अनुसार आरोपियों के पास से 27,000 रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दुमका, धनबाद, गुड्डा, जामताड़ा और जमशेदपुर समेत विभिन्न इलाकों में बारिश की संभावना है। एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों द्वारा गोल्डन हैट्रिक बनाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने बधाई दी है। उन्होंने इसे पूरे देश के लिए गौरव का क्षण बताया और कहा कि खिलाड़ियों ने अपनी कड़ी मेहनत से इतिहास रचा है। उन्होंने झारखंड में खेल के विकास पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

0: झारखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र को प्रेरणा मिले ऐसे खेलों के माध्यम से, क्योंकि ये ट्राइबल स्टेट के रूप में, ट्राइबल आइडेंटिटी के रूप में तीर धनुष उससे बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर यदि एशिया कप कराने के लिए राज्य सरकार का सहयोग प्राप्त होता है तो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया झारखंड को भी प्राथमिकता देने के बारे में विचार करेगी।
1: रांची के जेएससीए स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत वेस्ट इंडीज दूसरे टी20 मैच के लिए टिकटों की बिक्री 5 और 6 अक्टूबर को होगी। काउंटर से सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट मिलेंगे और एक व्यक्ति अधिकतम 2 टिकट ही खरीद सकेगा। दर्शक ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं। और अब अखबारों की सुर्खियाँ। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने एशियाई खेलों में भारत के 4 स्वर्ण पदक जीतने और वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत द्वारा 400 से ज्यादा रन चेज करने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने हटवाने का समय खत्म, 19 अक्टूबर को फाइनल सूची। हिंदुस्तान के शब्द हैं, जमशेदपुर कोलकाता में 4 ठिकानों पर ईडी के छापे, 2 गिरफ्तार। प्रभात खबर की सुर्खी है, 34,000 फीट ऊंचाई पर था विमान, क्रैश कराने की कोशिश, चाकू मारा, जख्मी हाल में भारतीय कैप्टन ने बचाई 174 जाने। दैनिक जागरण लिखता है, एसआईआर पूरी कर चुके राज्यों में फॉर्म 6 से घोषणा पत्र हटा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना और टेली आईसीयू सेवाओं की हुई शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ग्रामीणों को मिलेगा सीधा लाभ। बड़गाई जमीन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप तय होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज, भाजपा ने मांगा इस्तीफा, झामुमो ने आरोपों को बताया मनगढ़ंत। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने की मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा, कहा गिरिडीह में 5 मार्च से पहले होगा उपचुनाव। दुमका, धनबाद और जमशेदपुर समेत कई जिलों में आज बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। और रांची में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत वेस्टइंडीज टी20 मैच के टिकटों की बिक्री 5 और 6 अक्टूबर को होगी। ऑनलाइन और काउंटर दोनों माध्यमों से मिलेंगे टिकट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अरे पोस्टमैन साहब, आप तो पढ़े लिखे हो, बच्चों के टीकाकरण के बारे में कुछ जानकारी दो ना हमको।
3: अरे भोला, इसके लिए अपने निकटतम सहिया या ANM दीदी से संपर्क करो।
2: अच्छा,
3: इतना ही नहीं, गर्भवती महिला की जांच और देखभाल, खेल मनोरंजन की जानकारी, परिवार नियोजन की सलाह जैसी बहुत सी जानकारियां अब झारखंड सरकार उपलब्ध करा रही है।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम सहिया या ANM दीदी से संपर्क करें।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: बच्चों के विकास के लिए विटामिन ए है बहुत जरूरी।
7: विटामिन ए बच्चों को बनाता है तंदुरुस्त, दूर करता है शरीर की कमजोरी।
6: हरी पत्तेदार साग सब्जियाँ, दूध और दूध से बने उत्पाद, पीले फल, मांसाहारी भोजन, ये है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत।
7: तो अपने बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए 6 माह के बाद बच्चे को विटामिन ए युक्त भोजन खिलाएं।
6: साथ ही 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 6 माह के अंतराल पर विटामिन ए की खुराक पिलाएं।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है, प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। माटी की महक में श्रोताओं, आज आपको सुनवा रहे हैं हो लोकगीत, कलाकार हैं फूलमती माई और उनके साथी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फूलमती पाट पिंगवा और साथियों से होल लोकगीत। इसी के साथ हमारा आज का लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक यहीं समाप्त होता है।

कार्यक्रम विविधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में आज हम बात करेंगे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस रेजिंग डे पर और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर। तो श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस रेजिंग डे पर। आज 1 अक्टूबर है और श्रोताओं, आज का यह दिन भारतीय सशस्त्र सेनाओं की चिकित्सा व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी MNS के लिए विशेष महत्व रखता है। आज हम मना रहे हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस रेजिंग डे। श्रोताओं, जब हम सेना की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले सीमा पर तैनात सैनिक की तस्वीर उभरती है, लेकिन देश की रक्षा और सैनिकों की सुरक्षा की इस व्यवस्था में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने हाथों में हथियार नहीं बल्कि चिकित्सा उपकरण और सेवा का भाव लेकर खड़े रहते हैं। घायल सैनिक के लिए एक नर्सिंग अधिकारी केवल चिकित्सा व्यवस्था का हिस्सा नहीं होती बल्कि मुश्किल घड़ी में हौसला देने वाली एक संवेदनशील आवाज़ भी होती है। यही है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की पहचान, सेवा, साहस, अनुशासन और करुणा। श्रोताओं, भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा का इतिहास बहुत ही पुराना है। भारत

में सैन्य अस्पतालों में नर्सिंग सेवा की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में हुई। समय के साथ इस सेवा का स्वरूप भी विकसित होता गया। 1 अक्टूबर 1926 को भारतीय सेना में एक अस्थायी नर्सिंग सेवा का गठन किया गया। जिसे उस समय इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के नाम से भी जाना गया। इसी ऐतिहासिक तारीख की स्मृति में 1 अक्टूबर को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस रेजिंग डे मनाया जाता है। समय के साथ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने अनेक महत्वपूर्ण पड़ाव भी तय किए और आज यह भारतीय सशस्त्र बलों की चिकित्सा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए उस परिस्थिति की जब किसी सैनिक को युद्ध क्षेत्र में चोट लग जाती है। चारों ओर तनाव है, वातावरण बहुत ही कठिन है, घायल सैनिक को तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है। ऐसे समय में डॉक्टरों और नर्सिंग अधिकारियों की टीम जीवन बचाने के लिए पूरी तत्परता से जुट जाती है। नर्सिंग अधिकारी घायल सैनिक की स्थिति पर लगातार नज़र बनाए रखती है। दवाइयां और उपचार उन्हें क्या मिलेगा यह सुनिश्चित करती हैं, साथ ही रोगी को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाए रखने का प्रयास करती है। कभी कभी तो उपचार केवल दवा से नहीं होता, एक भरोसे भरी आवाज़ से भी उपचार किया जाता है। एक नर्स का यह कहना कि घबराइए मत, आप ठीक हो जाएंगे, किसी घायल व्यक्ति के लिए उस समय बहुत ही बड़ा सहारा बन जाता है। दोस्तों, यही मानवीय संवेदना मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को एक विशेष स्थान दिलाती है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की भूमिका केवल युद्धकाल तक ही सीमित नहीं होता है, शांति के समय भी सैन्य अस्पतालों में सैनिकों, उनके परिवारों और अन्य मरीजों की देखभाल में नर्सिंग अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, प्राकृतिक आपदा हो, महामारी जैसी चुनौती हो या किसी अन्य आपात स्थिति में भी चिकित्सा सहायता की आवश्यकता हो तो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों की जिम्मेदारी तो बहुत ही बढ़ जाती है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की यात्रा हमें महिलाओं की बदलती भूमिका की भी कहानी सुनाती है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन, खेल, अंतरिक्ष और सेना, हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने भी लंबे समय से महिलाओं को राष्ट्र सेवा का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। वर्दी पहनकर सेवा करना केवल एक नौकरी नहीं बल्कि अनुशासन और जिम्मेदारी का संकल्प है। दोस्तों, एक नर्सिंग अधिकारी को अपने कार्य में चिकित्सा ज्ञान के साथ साथ धैर्य, संवेदनशीलता और मानसिक मजबूती की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि अस्पताल में आने वाला हर मरीज एक मेडिकल केस नहीं होता, वह किसी का बेटा होता है, किसी का पति है, किसी का भाई है तो किसी का पिता भी है और उसके पीछे एक बड़ा पूरा परिवार है। इसलिए एक नर्सिंग अधिकारी की जिम्मेदारी केवल एक मरीज की देखभाल करने तक ही नहीं होती बल्कि परिवार को भरोसा देने तक भी पहुंचती है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस रेजिंग डे हमें उन सभी नर्सिंग अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपनी सेवा को प्राथमिकता दी। इनकी सेवा हमें एक बहुत सुंदर संदेश देती है श्रोताओं कि राष्ट्र सेवा के कई रूप हैं। कोई सीमा पर देश की रक्षा कर रहा है, कोई अस्पताल में जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई आपदा के समय राहत पहुंचा रहा है और हर सेवा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन हमें यह भी समझना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाले लोगों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता पूरे समाज को बनाए रखने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक मरीज के लिए डॉक्टर महत्वपूर्ण है तो नर्सिंग स्टाफ भी उतना ही महत्वपूर्ण हो। डॉक्टर उपचार की दिशा तय करते हैं लेकिन नर्सिंग अधिकारी मरीज के साथ उपचार की पूरी

0: प्रक्रिया में लगातार उपस्थित रहती है। दवा का समय हो, मरीज की स्थिति पर नज़र रखनी हो, डॉक्टर के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना हो, मरीजों को भावनात्मक सहारा देना हो, नर्सिंग सेवा की भूमिका हर स्तर पर दिखाई देती है। दोस्तों, जब यही सेवा सैन्य व्यवस्था का हिस्सा बन जाती है तो इसके साथ अनुशासन और सैन्य जिम्मेदारियां भी जुड़ जाती है। यही कारण है कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को सेवा और सैन्य अनुशासन के सुंदर सुगह संगम के रूप में देखा जाता है। आज 1 अक्टूबर के इस विशेष अवसर पर हम मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की सभी वर्तमान और पूर्व नर्सिंग अधिकारियों को सम्मानपूर्वक नमन करते हैं। दोस्तों, हम उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाया, उन परिवारों के प्रति सम्मान जिन्होंने अपने प्रियजनों को राष्ट्र सेवा के लिए आगे बढ़ने का हौसला दिया, और उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को भी हमारा सलाम जो कठिन परिस्थितियों में मानव जीवन की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास किया। दोस्तों, आज का दिन हमें एक बात याद दिलाता है कि वर्दी का सम्मान केवल उसकी चमक में नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे कर्तव्य और त्याग में भी है, और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की पहचान भी इसी सेवा भाव से बनी है।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

और इस संदेश के बाद श्रोताओं कार्यक्रम में आप सबों का फिर से स्वागत है। और श्रोताओं, अब हम आज के विशेष दिवस अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के बारे में भी बात करेंगे।

आज श्रोताओं हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस। एक अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1990 में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के रूप में घोषित किया था। इस दिवस का उद्देश्य वृद्ध लोगों के योगदान को सम्मान देना और उनकी आवश्यकताओं, अधिकारों और गरिमापूर्ण जीवन के प्रति समाज में जागरूकता पैदा करना था। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, परिवारों का स्वरूप बदल रहा है और जीवन की गति पहले से कहीं अधिक तेज हो गई है, ऐसे समय में वृद्धजनों के जीवन को समझना हमारे लिए और भी जरूरी हो गया है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कभी कभी हमें खुद से यह भी पूछना चाहिए, क्या हम उनके लिए उतना समय निकाल पा रहे हैं जितना उन्होंने हमारे लिए निकाला था। जब हम छोटे थे तो उन्होंने हमारी एक छोटी सी ज़रूरत के लिए अपना काम रोक दिया। हम बीमार हुए तो रात भर जागे, हम स्कूल गए तो हमारे साथ चले, हम परीक्षा में सफल हुए तो हमसे ज़्यादा खुश हुए, हम असफल हुए तो हमें संभाला। और आज जब इनकी उम्र बढ़ रही है तो शायद उन्हें हमारी ज़रूरत किसी और रूप में है। उन्हें हर समय पैसों की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, उन्हें हर समय किसी महंगे चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती। कई बार उन्हें केवल चाहिए होता है थोड़ा सा समय, हमारी दो बातें, हमारा साथ और यह भरोसा कि वे हमारे लिए आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों वृद्धावस्था में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती है। रक्तचाप, शुगर, हड्डियों की कमजोरी, आंखों और सुनने से जुड़ी समस्याएं जैसी परेशानियां उनमें अधिक देखने को मिलती है। ऐसे में उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच, डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयों का सेवन, संतुलित भोजन और हल्की शारीरिक गतिविधि उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन स्वास्थ्य केवल शरीर का ही नाम नहीं, मन का स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। कई वृद्धजन अकेलेपन का अनुभव करते हैं, घर में लोग होते हुए भी उन्हें लगता है कि उनसे कोई बात नहीं करता। बच्चे अपने काम में व्यस्त हैं, पोते पोतियाँ मोबाइल में व्यस्त हैं और धीरे धीरे उनकी बातचीत कम होती जाती है। यही वह स्थिति है जहाँ हमें थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। क्यों ना हम रोज़ कुछ मिनट उनके साथ बैठें, उनके पुराने दिनों के बारे में पूछें, उनके पसंद का गीत सुनें या उनके पास बैठकर चाय पी लें। शायद हमारे लिए यह केवल 15-20 मिनट का समय हो, लेकिन उनके लिए यह पूरे दिन का सबसे खूबसूरत घड़ी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हमें याद दिलाता है कि वृद्धजनों को

0: केवल देखभाल नहीं, सम्मान और अपनापन भी चाहिए। वृद्ध जनों के प्रति सम्मान केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी है। उनके लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाया जाए। सार्वजनिक स्थानों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधा हो। अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी आसान पहुंच हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उम्र के आधार पर उनके साथ भेदभाव न किया जाए। उम्र बढ़ना किसी व्यक्ति की उपयोगिता को समाप्त नहीं करना है। दोस्तों, एक बुजुर्ग शिक्षक का अनुभव आज भी किसी युवा शिक्षक के काम आ सकता है। एक किसान का वर्षों का अनुभव नई पीढ़ी के किसान को बहुत कुछ सिखा सकता है। एक दादा दादी की जीवन यात्रा परिवार के बच्चों को इतिहास की किताब से अलग एक जीवंत सीख दे सकती है। इसलिए हमें वृद्ध जनों की केवल देखभाल की जरूरत वाले व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि उनके ज्ञान, अनुभव और मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में भी देखा जाना चाहिए। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी और वृद्ध पीढ़ी के बीच संवाद की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। युवा तकनीक जानते हैं, लेकिन वृद्ध जीवन का अनुभव जानते हैं। युवा नई दुनिया की गति को समझाते हैं, वृद्ध समय की गहराई को पहचानते हैं। अगर दोनों पीढ़ियां एक दूसरे से सीखे तो परिवार और समाज दोनों ही मजबूत हो सकते हैं। अपने घर के किसी बुजुर्ग से रोज कुछ देर बात करेंगे, उनकी दवाइयों और स्वास्थ्य का ध्यान हम रखेंगे, उन्हें अकेलापन नहीं होने देंगे, उनकी बात को बीच में काटने की बजाय ध्यान से सुनेंगे, तो सबसे ज़रूरी है उन्हें यह एहसास दिलाएंगे कि वे हमारे लिए बोझ नहीं, बल्कि हमारे जीवन की अनमोल धरोहर हैं। कभी अपने घर के बुजुर्ग के चेहरे को ध्यान से देखें। उस चेहरे की झुर्रियों में आपको केवल उम्र नहीं दिखाई देगी, वहाँ दिखाई देगी परिवार के लिए किए गए त्याग की कहानियाँ, मुश्किल दिनों में लड़ने का साहस, बच्चों के भविष्य के लिए किए गए संघर्ष और अपनों के लिए अनगिनत दुआएं। हम आज जहाँ हैं उसके पीछे कई बार किसी बुजुर्ग के त्याग की नींव होती है, इसलिए आज उनके प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। श्रोताओं, उन्हें गले लगाने का दिन है, उनके साथ बैठने का दिन है और यह कहने का दिन है कि आप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस पर हम ऐसा समाज बनाने की कोशिश करें जहां उम्र बढ़ने का अर्थ अकेलापन नहीं बल्कि सम्मान हो, जहां बुजुर्गों को बोझ नहीं समझा जाए, उनके अनुभव को महत्व दिया जाए, उन्हें सुरक्षा, स्वास्थ्य और अपनापन मिले, जहां हर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी का हाथ थामकर आगे बढ़े। क्योंकि जीवन का सफर तभी खूबसूरत बनता है जब उसमें अनुभव का हाथ और नई पीढ़ी का उत्साह दोनों ही साथ हों। तो श्रोताओं, इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आइए सुनवाते हैं आपको ये गीत।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आप

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन।

अनजाना फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर का गाया, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धुन पर। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म बहार आने तक से। सुनते हैं पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल को।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का ये गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में गीत लिखा था रानी मल्लिक ने और संगीत से सजाया था अनु मल्लिक ने।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
5: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
4: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: और अब श्रोताओं, सुनते हैं चलते चलते फिल्म हीर रांझा का ये गीत, कैफी आजमी का लिखा, लता मंगेशकर का गाया।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी ने। लिखते हैं,
2: रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
0: वाह क्या बात है, रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, लेकिन
2: रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुंदर विचार के लिए। तो आइए सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: आर्य नगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी लिखते हैं,
0: छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार भोजली हमें माटी की खुशबू, प्रकृति से प्रेम करना और अपनी लोक परंपराओं को सहेजना सिखाती है। भोजली की हरियाली और संस्कृति का मान, यही हमारी छत्तीसगढ़ी पहचान है।
2: गाँव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत अवाना जी लिखते हैं,
0: 25 अगस्त 2026 के कार्यक्रम में नागालैंड के लांगवा गाँव और कोन्याक जनजाति के बारे में दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक, रोचक और दिलचस्प लगी। विशेष रूप से भारत म्यांमार सीमा पर बसे इस अनोखे गांव की स्थिति को, कोन्याक जनजाति की संस्कृति के बारे में जानना बेहद रोचक लगा।
2: ये भारत की विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। आपका कार्यक्रम हर सप्ताह हमें भारत की विविधता, संस्कृति और अनोखे तथ्यों से परिचित करा रहा है। हमारा पूरा परिवार इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करता है और हर बार कुछ नया जानने की उत्सुकता बनी रहती है। इस शानदार और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए आप दोनों का हृदय से धन्यवाद और साधुवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखा है,
2: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, सादर नमस्कार। हमारी संस्कृति, संस्कार, त्योहार, जाति, बोली, रहन सहन, भाषा और इन्हीं में हमारी मातृभाषा हिंदी प्रेरक प्रसंग में हमने जंगल, शैम्पू, पजामा शब्दों की उत्पत्ति के बारे में सुना। इतनी रोचक जानकारी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही पीटी उषा जी पर भी विशेष कार्यक्रम सुना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है श्रोताओं, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा और संजय अंशु वर्मा। साथ ही हमें संदेश मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से विकास कुमार मौर्य जी का।
2: बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा।
0: आप सबके संदेशों के लिए श्रोताओं एक बार फिर से हमारा बहुत बहुत आभार। तो श्रोताओ, भारत के बहादुर बच्चों की श्रृंखला में आज एक बार फिर से चलते हैं, आइए भारत के खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की ओर।
2: मेघालय, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, झरने और नदियां प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं।
0: श्रोताओ, मेघालय यानी मेघों का घर
2: जी।
0: यह राज्य भारी वर्षा के लिए जाना जाता है और जब भारी वर्षा होती है तो प्रकृति भी कभी कभी चुनौती बन जाती है, खासकर तब जब बारिश हो और नदियों का बहाव बहुत तेज हो जाए।
2: जी हाँ श्रोताओं, ऐसी ही एक चुनौती आ खड़ी हुई मेघालय के एक 15 वर्षीय बालक के सामने। उसका नाम है किसेन वानियांग।
0: किसेन वानियांग एक ऐसा नाम जिसने अपनी बहादुरी से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। दिन था 25 मई 2024। मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले के माओ लांगवीर गांव में भारी बारिश हो रही थी।
2: बारिश के कारण गांव की पहाड़ी नदी में धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था।
0: पहाड़ी नदियों में श्रोताओं अचानक ही पानी इतना बढ़ जाता है कि संकट की स्थिति अक्सर उत्पन्न हो जाती है
2: जी।
0: उस समय बालक किसेन नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। पानी बढ़ता देख कर उसने वहां से हटने का विचार किया, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ बच्चों की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ।
2: श्रोताओं कल्पना कीजिए, बारिश का मौसम, तेज बहती नदी और अचानक मदद के लिए बच्चों की चीख पुकार। किसेन ने देखा कि 4 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 9 से 12 वर्ष थी नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। ये वो क्षण था जब किसेन के सामने 2 रास्ते थे, एक अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना और दूसरा संकट में फंसे बच्चों की सहायता करना।
0: और किसेन ने श्रोताओं दूसरा रास्ता चुना। नदी में उतरना स्वयं एक बहुत बड़ा जोखिम था
2: जी।
0: फिर भी किसेन ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और बच्चों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया।
2: एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा
0: और अंततः चौथा बच्चा भी किसेन ने चारों बच्चों को पानी के तेज बहाव से खींचकर किनारे पर लगा दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने चार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
2: इतने में गांव के लोग भी वहां आ गए और सबने किसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। दूसरे दिन इस घटना की चर्चा संचार माध्यमों द्वारा पूरे देश भर में फैल गई।
0: किसेन की इस बहादुरी को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया
2: जी।
0: और फिर दिन आया 26 दिसंबर 2024 का, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के वीरता वर्ग में सम्मानित किया।
2: सोचिए श्रोताओ, केवल 15 वर्ष की उम्र और ऐसा साहस कि चार बच्चों का जीवन बच गया।
0: श्रोताओ, किसेन की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि उम्र छोटी हो सकती है लेकिन साहस और समर्पण हो तो बहुत असंभव लगने वाला कार्य भी किया जा सकता है
2: जी।
0: यहाँ हम उमंग कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और सभी श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि
2: यदि कभी आपके सामने कोई व्यक्ति नदी, तालाब या किसी अन्य खतरनाक स्थान पर संकट में हो तो बिना सोचे समझे स्वयं खतरे में न कूदें।
0: बिल्कुल, तुरंत आसपास अपने बड़ों को बुलाएं, स्थानीय बचाव दल या आपातकालीन सेवाओं से सहायता लें, असुरक्षित तरीके से मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि बहादुरी का अर्थ केवल जोखिम उठाना नहीं है
2: बल्कि समझदारी के साथ साथ सही समय पर सही कदम उठाना ही बहादुरी है।
0: बहादुर बालक किसेन वानियांग ने चार बच्चों की जान बचाकर ये संदेश दिया कि मानवता की भावना किसी उम्र की मोहताज नहीं होती,
2: और सारी दुनिया के बच्चों के लिए उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। दूसरों की मदद कीजिए, संकट में धैर्य रखिए और हमेशा अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखिए।
0: तो श्रोताओ, आज की कहानी से हम तीन बातों को जरूर याद रखें
2: जी।
0: तो पहली बात,
2: संकट में घबराए नहीं।
0: दूसरी बात,
2: जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करें।
0: और तीसरी बात,
2: साहस के साथ साथ समझदारी और सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
0: तो बहादुर बालक किसेन बानियांग को उमंग कार्यक्रम की ओर से सलाम
2: जी, और भारत के उन सभी बच्चों को भी सलाम जो कठिन परिस्थितियों में मानवता और साहस का परिचय देते हैं।
0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुनी किसेन बानियांग की कहानी
2: जी,
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से है। हमारा प्रश्न है, मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
2: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता को इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि चींटी कितनी परिश्रमी और उद्यमी है। हमें अपने जीवन में चींटी से सीखने की आवश्यकता है।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
3: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
3: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
3: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
3: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
3: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
3: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
3: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
3: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
3: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
3: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
3: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
3: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
3: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम चींटी, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के पराक्रमी योद्धा मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन और युद्ध के मैदान में उनके असाधारण शौर्य के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया।
2: विद्यालय में प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की जा रही है।
3: मेरा देश महान भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पांचवी कक्षा की छात्रा मेघा ने।
4: अरे वाह मेघा, मजा आ गया।
5: आओ देखिए क्या मिला है पुरस्कार में।
6: ना ना ना नहीं,
7: अरे
6: इसे तो मैं नंदिनी मैडम के सामने ही खोलूंगी। पता है इस भाषण प्रतियोगिता की तैयारी उन्होंने ही करवाई थी।
7: अरे मोहित तुम ही बोलो ना, मेघा तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, बोलो ना।
5: हाँ मेघा, दिखा देना नंदिनी मैडम को भी, पर हम भी तो देखें इसमें है क्या।
6: प्लीज मेघा, दिखा दो।
7: अरे चुप चुप, देखो मैडम आ रही हैं।
8: चलो चलो सब क्लास में चलो, अगर देर हो गई तो मैडम फिर गुस्सा हो जाएंगी।
7: चलो चलो चलो चलो।
9: गुड मॉर्निंग मैडम।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, आज की भाषण प्रतियोगिता कैसी लगी?
9: बहुत अच्छी।
10: मैडम मेघा ने बहुत अच्छा बोला।
3: हाँ केतकी, मेघा इधर आओ।
11: जी मैडम।
3: शाबाश शाबाश। बहुत अच्छा लगा तुम्हें मंच पर इतना अच्छा बोलते देखकर।
11: धन्यवाद मैडम।
3: क्या मिला पुरस्कार में?
11: जी
5: मैडम, आप ही कहते हैं इंतजार कर रही थी।
3: अच्छा,
5: कह रही थी मैडम के सामने ही खोलूंगी।
3: मेघा दिखाओ तो अपना पुरस्कार।
11: लीजिए मैडम।
3: हाँ, इसको खोलते हैं। अरे वाह, ये तो एक किताब है।
8: अरे किताब भी ली है।
3: हाँ, शीर्षक है हमारे परमवीर चक्र विजेता। वाह
11: मैडम, किस विषय पर है ये किताब?
3: मेघा ये किताब हमारे देश के उन वीर सैनिकों के बारे में है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। समझे?
8: सैनिकों के बारे में?
5: अच्छा अच्छा, अब्दुल हमीद के बारे में है। इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, वही है ना मैडम?
3: हाँ मोहित, पर अब्दुल हमीद के साथ साथ इसमें और भी वीर सैनिकों के बारे में लिखा है जिन्हें परमवीर चक्र से सुशोभित किया जा चुका है।
11: हाँ मैडम, मेरी कॉलोनी में एक लड़का रहता है, वो कहता है कि उसके दादाजी के एक दोस्त हैं, उन्हें भी परमवीर चक्र मिला था।
3: अच्छा।
11: उन्होंने भारत पाक युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे।
3: वाह,
10: क्या परमवीर चक्र उसी को मिलता है जिसने युद्ध में लड़ाई लड़ी हो?
3: हाँ केतकी, परमवीर चक्र उनको मिलता है जो युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति के समय अपनी आन बान जान को देश पर न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं।
11: सैनिकों को तो बड़ी मेहनत करनी होती होगी। बहादुर है हमारे सैनिक।
5: अरे वाह, इस किताब में तो बहुत सी वीरता की कहानियां पढ़ने को मिल सकती हैं। मेघा मुझे भी ये किताब पढ़ने के लिए दे देना प्लीज।
12: मुझे भी। इसके बाद में
5: नहीं, पहले मैंने कहा था, पहले मैं।
11: हां हां, हम सब पढ़ेंगे एक एक करके।
5: पर मेघा इस तरह तो काफी समय लग जाएगा।
3: मोहित एक मिनट, एक रास्ता है।
5: रास्ता है?
3: मेघा क्यों ना तुम इस किताब को पढ़कर हम सबको उन शूरवीर योद्धाओं के बारे में बताओ। कैसा रहेगा? अच्छा ना। अच्छा देखो, कल रविवार है, कोशिश करना कि पूरा दिन बैठकर ये किताब पढ़ सको।
11: जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
3: ठीक है, तो बच्चों सोमवार को नंदिनी मैडम की जगह मेघा मैडम से पढ़ेंगे।
11: जी मैडम।
9: गुड मॉर्निंग मैडम।
3: गुड मॉर्निंग। हाँ तो मेघा, आज तैयार हो सबको पढ़ाने के लिए?
11: जी मैडम।
12: अच्छा पहले ये बताओ कैसी लगी किताब?
11: मैडम बहुत ही अच्छी किताब है। उन बहादुर सैनिकों की वीरता का वर्णन पढ़कर ऐसा लगा कि मैं भी सेना में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करूं।
12: क्या बात है।
5: अच्छा मेघा, ये परमवीर चक्र कब और किसको मिलता है?
11: बताती हूँ। सुनो, परमवीर चक्र हमारे देश का सर्वोच्च वीरता पदक है। ये चक्र युद्ध में प्रदर्शित असाधारण वीरता और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ये पदक सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों तथा जवानों को प्रदान किया जाता है।
12: वाह। अच्छा मेघा, क्या तुम बता सकती हो पहला परमवीर चक्र किसे और क्यों मिला था?
11: जी मैडम, पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था।
12: शाबाश।
11: उन्होंने 1947-48 में हुए भारत पाक युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था।
5: मेघा, ऐसा क्या किया था उन्होंने?
11: हाँ, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। कहाँ से शुरू करूँ?
13: ओ मैडम जी।
12: जी मोहन भैया, क्या बात है? आ जाइए।
13: मैडम जी, आपसे कोई मिलने आए, कहते हैं आप ही ने बुलाया उनको।
12: हाँ, मोहन भैया आप उन्हें बिठाइए, मैं भी आती हूँ।
13: ठीक है जी।
12: बच्चों मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, शोर मत मचाना।
11: जी मैडम।
12: मेघा, देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
5: मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि उन्हें परमवीर चक्र जैसा सम्मान मिला।
8: काश मुझे भी अपने देश की सेवा करने का मौका मिले, फौजी अफसरों का साथ हो और सामने दुश्मन। वाह,
14: देखो नंदिनी मैडम के साथ कोई फौजी अफसर आ रहे हैं।
15: मोहित, लगता है आज तुम्हें अफसर मिल ही जाएगा। काश मिल जाए।
12: चुप, एकदम शांत। बच्चों ये है मेजर अशोक।
16: नमस्ते सर।
17: नमस्ते बच्चों।
12: ये भारतीय सेना में अफसर हैं, आजकल छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। क्यों मेजर? आज इन्हें मैंने खास तौर से तुम लोगों से मिलने के लिए बुलाया है। क्यों, ठीक किया ना मेघा?
11: जी मैडम।
17: भाई आप लोगों की क्लास तो बहुत अच्छी लग रही है। आपको देखकर लग रहा है कि आप सभी बहुत अनुशासन प्रिय हैं।
11: धन्यवाद सर।
17: सबसे पहले तो मेघा, मैं तुम्हें और तुम्हारी कक्षा को बधाई देना चाहूंगा। मैंने सुना है कि तुमने मंच पर बहुत अच्छा बोला।
11: धन्यवाद सर।
17: हाँ तो बताओ कि कहाँ से शुरू करें?
11: सर, मेजर सोमनाथ शर्मा ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें परमवीर चक्र मिला?
17: बिल्कुल ठीक। बच्चों, मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को डाढ़ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। मेजर सोमनाथ शर्मा एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे। ये बात सन 1947 की है जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था। बहुत ही भावुक और नाजुक समय था वो। बच्चों परिवार बिछड़ रहे थे, दोस्त बिछड़ रहे थे और सबसे बड़ा दुख था अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से बिछड़ने का।
12: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा मेजर।
17: कुछ रियासतें पाकिस्तान से जा मिली तो कुछ भारत से, और कुछ असमंजस में थे, यहां जाएं कि वहां जाएं। अभी तो सब एक ही था, एक हिंदुस्तान। क्या था बच्चों?
16: एक हिंदुस्तान।
17: उनमें से एक थे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। उन्होंने कुछ समय मांगा जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा और मत जानने के लिए। भारत को यह मंजूर था, पर पाकिस्तान, जो जम्मू कश्मीर की जमीन को अपनी जमीन में मिलाने को आतुर था, उसे ये बात मंजूर नहीं थी। पाकिस्तान ने आक्रमण कर जम्मू कश्मीर को अपने वश में करने की ठान ली। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर हमला 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ। हमले के लिए 20,000 कबायलियों के लगभग 20 लश्करों का संगठन बनाया था पाकिस्तानी सैनिकों ने, और उन्हें काम सौंपा गया था जम्मू कश्मीर की जमीन पर कब्जा करने का। महाराजा हरि सिंह को ये नागवार गुजरा और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान के साथ अपनी रियासत के विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था और उसकी रक्षा करना भारतीय सेना का कर्तव्य। हमारी फौज ने जरा भी देर नहीं लगाई। हिंदुस्तानी फौज की टुकड़ियां एक एक कर जम्मू कश्मीर पहुंचनी शुरू हुई। ऐसी ही एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा।
18: मेजर सोमनाथ शर्मा, एक डॉक्टर की तो यही सलाह है कि आप आराम करें। आपके हाथ पर प्लास्टर बंधा है, इस हालत में श्रीनगर जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है।
17: सर, मेरी कंपनी श्रीनगर जा रही है और मेरा उनके साथ जाना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे मौके पर अपनी कंपनी का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं आपकी राय का सम्मान करता हूँ, किंतु मुझे जाना ही होगा। जय हिंद। दुश्मन की संख्या लगभग 700 थी और हम 100, यानी हमारा एक सैनिक 7 हमलावरों से लड़ रहा था। मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए वो कठिन परीक्षा का समय था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक ओर तो अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे।
19: शाबाश शाबाश, एक एक को नहीं छोड़ेंगे, ये चाहे तादाद में ज्यादा है लेकिन हम इनसे कम नहीं। डटे रहो, ये गन पकड़ो, फायर फायर।
17: और दूसरी ओर आला अफसरों को स्थिति की जानकारी देते रहे।
19: सर, दुश्मन हमसे तादाद में 7 गुना ज्यादा है लेकिन हमने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी है। हम यहाँ पे अगली सांस तक अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आप फौरन हवाई कवर भेजिए। ओवर एंड आउट।
17: उन्हें बताया गया कि लड़ाकू विमानों को उनकी मदद के लिए भेजा जा रहा है।
19: सर, हम लड़ाकू विमानों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास एम्युनिशन खत्म होता जा रहा है लेकिन हम हौसले से दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। हम चार चार दुश्मनों को अकेले मार रहे हैं। ओवर एंड आउट।
17: मेजर शर्मा ने स्वयं हवाई हमले के लिए धरती पर पहचान फीतियां लगाकर टारगेट बनाया। शीघ्र ही 2 लड़ाकू विमान आए, हमला भी हुआ, पर दुश्मन संख्या में ज्यादा थे और इस हमले का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। मेजर शर्मा जानते थे कि दुश्मन का असली मकसद श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करना है। उन्होंने निश्चय किया कि जैसे तैसे वो दुश्मन को

0: भर रोके रखेंगे। वायरलेस पर मेजर शर्मा अभी अफसरों से बात कर ही रहे थे।
1: सर, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। हम दुश्मन की भारी तादाद के कारण घिर गए हैं, पर मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। सर, हम आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ते रहेंगे।
0: तभी एक जोरदार धमाका हुआ।
1: जवानों, आगे बढ़ो, एक दुश्मन बचने दे पाए, आगे बढ़ो, फायर।
0: और वायरलेस सेट ने भी उनका साथ छोड़ दिया, पर मेजर शर्मा बड़ी मुस्तैदी से एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर भागते रहे और जवानों को निर्देश देते रहे।
1: बाला सिंह, मैं तुम्हारी वैक्सीन भरता हूँ। कीप ऑन फायरिंग, छोड़ना नहीं मोर्चा, कोई यहाँ से निकलेगा नहीं, हम एक-एक को मार के छोड़ेंगे। कीप ऑन फायरिंग।
0: उन्हें दुश्मन की गोलियों से बेखौफ एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक भागते देख भारतीय सैनिकों में भी खूब जोश भर आया। उन्होंने सैनिकों को गोलियां भर भर कर मैगजीन दी, जिससे दुश्मन पर किए जा रहे जवाबी फायर की गति धीमी ना पड़े। मेजर शर्मा एक जगह मैगजीन में गोलियां भर ही रहे थे कि दुश्मन का एक बम उनके बगल में पड़े एम्यूनिशन के भंडार पर आ गिरा। और इस धमाके से इस योद्धा ने वीर गति पाई। लगभग 6 घंटे तक हमारे 100 सैनिकों ने 700 की संख्या वाले दुश्मन को रोके रखा। और बच्चों, उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे को दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचा लिया। मेजर शर्मा अंतिम सांस तक अपने जवानों का नेतृत्व करते रहे और इस तरह उन्होंने उत्कृष्ट वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें मरणोपरांत ये चक्र दिया गया था।
2: मेघा, मेघा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू?
0: मेघा, इस कहानी को सुनकर आंसू नहीं, जोश आना चाहिए, अपने देश के लिए कुछ करने का जोश। क्यों बच्चों?
3: यस सर, शाबाश।
2: हाँ तो बच्चों, ये थी मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता और बलिदान की कहानी। ऐसी और भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे।
0: नंदिनी जी,
2: जी
0: मैं आपका और खास तौर से इन बच्चों का धन्यवाद करना चाहूंगा, इसलिए नहीं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ध्यान से सुना, बल्कि इसलिए कि इन बच्चों ने इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की।
2: जी,
0: इन बच्चों से मिलकर मुझे विश्वास हो गया कि ये वीरों की कक्षा है और इनमें भी कहीं ना कहीं कोई परम वीर छिपा है। क्यों बच्चों, ठीक कहा ना?
3: यस सर।
0: अच्छा, अब मैं चलता हूं।
2: जी।
0: अच्छा बच्चों, जय हिंद।
3: जय।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या,
1: प्रसून
0: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
1: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक थे NCERT। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

0: Asian Games 2026 update.
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
2: हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल आर लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। दोस्तों मैं हूं साक्षी मांडवाल, मेरे साथ इस वक्त यहां मौजूद है धर्मेंद्र और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए सुबह के 10:30 बजे की लाइव अपडेट्स फ्रॉम द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट की, जहां भारत और श्रीलंका आज है इस वक्त आमने सामने इन द सेमीफाइनल क्लैश एंड इंडिया वॉज ऑब्वियसली पुट इन टू बैट फर्स्ट टूडे। जी हाँ, एंड बल्लेबाजी करते हुए भारत ने आज शुरुआती दौर में ही बहुत जल्दी अपने दो विकेट्स, इंपॉर्टेंट विकेट्स अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का गवा दिया वेरी अर्ली ऑन, एंड एज अ रिजल्ट दे स्टार्टेड रीलिंग इन एट 24 for 2। लेकिन देन वैभव सूर्यवंशी के ऊपर पूरा का पूरा एक तरह से कहते रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई टू हेल्प इंडिया सम हाउ सस्टेन themselves एंड पुट themselves इन अ कमांडिंग पोजिशन, एंड वैभव सूर्यवंशी देन वॉज एबल टू लीड इंडिया टू वर्ड्स एन इंपॉर्टेंट इनिंग्स वेरी हिट 20 गेंदों में 38 रन्स विच इंक्लूड्स 6 फोर्स इन 2 सिक्सेस एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 190, thereby helping India somehow stabilize themselves at 59 runs for the loss of 2 wickets. But as I say this, Vaibhav Suryavanshi also has now gotten out. Ji haan, Vaibhav Suryavanshi got out and he was caught by Sinith Jayawardena. As a result, India now are 59 for 3 in just 6.2 overs. Dharmendra, a lot needs to be seen as to how the Indian innings will develop in this stipulated 20 overs.
3: Yeah, लेकिन तीरंदाजी से तो मिलीजुली खबर आ रही है। पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड इवेंट में गणेश मणिरत्नम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जहां उनका सामना कुछ ही देर में दक्षिण कोरिया के किम जोंग हो से होगा। गणेश मणिरत्नम ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के ची लुनचेन को 148-138 के अंतर से हराया। गणेश ने इस मुकाबले में सिर्फ 2 अंक गवाए। स्कोर 29-28, 29-28, 30-29, 30-26 और 30-27 रहा। हालांकि चिकिता तनिवार थी, क्वार्टर फाइनल में हार गई और एक जो मेडल की उम्मीद उनसे थी वो पूरी नहीं हो सकी। काफी नजदीकी मुकाबला रहा और इंडोनेशिया की नुरिसा दियान अशरीफा ने उन्हें हराया। और तीरंदाजी में ये जो खबर रही ये मिली जुली खबर है
2: जी। और जूडो की दुनिया से आपको कुछ खबर दे देते हैं, जहां यामिनी मौर्य क्वालिफाइड फॉर द वुमेन्स 57 किलोग्राम्स कैटेगरी क्वार्टर फाइनल इन जूडो। लेकिन क्वार्टर फाइनल से आगे जीत पाने के बाद जब वो आगे गई तो वहां पर हमने देखा कि यामिनी मौर्य लॉस्ट वुमेन्स 57 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल टू मंगोलियाज अरियुन जया तरबिश बायुको। एंड दूसरी तरफ अब बात करते हैं कि शी देन मूव्ड इनटू द रेपेचार्ज वेयर शी वुड बी फेसिंग जापान्स मियो श्रीकाने फॉर अ प्लेस इन द ब्रॉन्ज मेडल मैच। दूसरी तरफ भारत की तरफ से हमने देखा कि इनुन गणवीर तखलबाम एडवांस टू द वुमेन 70 किलोग्राम्स क्वार्टर फाइनल्स आफ्टर बीटिंग नेपाल्स पूनम श्रेष्ठ बाय इपो। शी विल टेक ऑन नॉर्थ कोरियाज मुन सोंग हुई नेक्स्ट।
3: और शूटिंग से अच्छी खबर आने का सिलसिला जारी है। अनीश भानवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के फाइनल में जगह बना ली है। हालांकि अनीश क्वालिफिकेशन में 9वें स्थान पर रहे, लेकिन इस प्रदर्शन के बावजूद उनसे पदक की उम्मीद साक्षी तो बनी हुई है
2: जी। और कयाक की दुनिया से भी आपको कुछ खबरें दे देते हैं, जहां पर इंडिया शिखा चौहान हैज बुक्ड अ प्लेस इन द वुमेन्स कयाक सिंगल फाइनल आफ्टर फिनिशिंग 10th इन द सेमीफाइनल्स। शिखा क्लॉक 2:46.16 सेकंड्स टू सिक्योर अ स्पॉट इन द फाइनल व्हिच विल बी बिगिनिंग शॉर्टली एट अराउंड 10:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम व्हिच शुड बी से दैट द मैच इज ऑल सेट टू हैपन नाउ।
3: और टेनिस में पुरुषों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में भारत के सुमित नागल चीन के यिबिंग वू से पराजित हो गए हैं। स्कोर 4-6, 4-6 रहा। हालांकि सुमित ने वापसी की भरपूर कोशिश की, बहुत जोर लगाया, लेकिन भारी साबित हुए यिबिंग वू

0: 100 अंक के साथ पांचवें स्थान पर रही। वे फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई हैं। पूम से में हम आपको बता दें कि खिलाड़ी अकेले कई मूवमेंट का प्रदर्शन करते हैं, इसमें किसी प्रतिद्वंदी से मुकाबला नहीं होता। प्रदर्शन का आकलन सटीकता और प्रस्तुति के आधार पर किया जाता है।
1: जी एंड जस्ट बिफोर वी रैप अप दिस अपडेट, लेट्स गिव यू ऑल्सो वेयर इंडिया स्टैंड्स इन द मेडल टेबल एज ऑफ नाउ। भारत के पास इस समय कुल मिलाकर 62 मेडल्स हो चुके हैं। भारत इस समय मेडल टेबल में 8वें स्थान पर है विद द टोटल ऑफ 62 मेडल्स विच इंक्लूड्स 10 गोल्ड, 22 silver, 30 bronze. That is all that we had in this update of 10:30 AM for all your lovely people. हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे सुबह 11:30 बजे. फिलहाल मुझे साक्षी मांडवाल और धर्मेंद्र को दीजिए इजाजत. थैंक यू, गुड बाय.
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है. मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 पर प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार रांची. सुनने वाले सभी दोस्तों को रेणु का नमस्कार. कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुविचार से. हम सोचते हैं कि खुश रहने के लिए हमें और तेज दौड़ना है, बेहतर बनना है और दूसरों से आगे निकलना है. इस भाग दौड़ में मन कभी शांत नहीं होता. जब हम खुद को शावित करने की कोशिश छोड़कर अपने आज पर ध्यान देते हैं, अपने काम को पूरा मन से करते हैं, तब जीवन ज्यादा अर्थपूर्ण लगता है.

0: यदि माँ HIV से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को HIV का संक्रमण हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर माँ की HIV जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को HIV के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-0-9-7 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: अब नजर डालते हैं मौसम पर। तो मौसम की अवधि लगभग खत्म है, लेकिन 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से लौट जाएगा। राज्य में सामान्य से 2% ही कम बारिश हुई, लेकिन झारखंड के 8 जिले रेड जोन में हैं। झारखंड में मानसून की अवधि 1 जून से 30 सितंबर तक है। हालांकि मानसून के वापसी लौटने में लगभग 15 अक्टूबर तक समय लग जाता है, और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस वर्ष के मानसून के बाद झारखंड में 2% कम बारिश हुई है। इसे समान ही कहा जा सकता है। परेशानी वाली बात यह है कि कम बारिश वाले राज्य के 8 जिले हैं जो रेड जोन में हैं, जिनमें पाकुड़, देवघर, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा और गुमला शामिल है। और राज्य के जिन 6 मुख्य जलाशयों की निगरानी जो CWC करता है, उनमें वर्तमान में कुल क्षमता से 31.33% पानी ही उपलब्ध है। और इस मानसून में खरीफ फसल 26-27 के दौरान विभिन्न फसलों के कुल आच्छादन तक लक्ष्य करने के मुकाबले 80.93% दर्ज किया गया है। इस तरह से मानसून के उतार चढ़ाव में काफी बदलाव हुए और ऐसे में बदला है। ऐसी स्थिति है कि लगातार 3 वर्ष तक सूखे जैसे हालात रहे, लेकिन 26 में बारिश सामान्य से करीब पहुंची। इस वर्ष मानसून अवधि कम हुई, फिर भी ठीक था। तो उतार चढ़ाव मौसम का चलता रहेगा। ऐसे में हम लोग गीत संगीत सुनते चले और मौसम का आनंद तो देख ही रहे हैं। धूप, कभी छांव, बादल छाए हुए हैं, तो कभी कड़ी धूप भी है। ऐसे में बस संभल कर रहना है और गीत संगीत सुनते चलना है।

पलटते हैं इतिहास के पन्ने, जानते हैं आज की घटनाएं। 1967 ईस्वी में आज के दिन पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। 1978 ईस्वी में भारत में विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाई गई, जिसके तहत लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की उम्र 21 वर्ष तय की गई। 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया गया। 1854 ईस्वी में भारत कोष के अनुसार आज ही के दिन भारत में पहली बार डाक टिकट की शुरुआत हुई थी, जिसकी कीमत आधा अन्ना थी। आज के दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाए जा रहे हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, और आज के दिन राष्ट्रीय शैक्षिक रक्तदान दिवस भी हर साल मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 1975 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वैच्छिक और सुरक्षित रक्तदान के महत्व को जागरूक करना है, रक्तदान से ही जुड़ी गलतफहमियों और डर को खत्म करना है, आपातकालीन स्थितियों के लिए अस्पतालों और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जैसे संस्थानों में पर्याप्त रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है।

हाँ दोस्तों, हम साथ साथ इसलिए हैं कि आज जो है अंतर्राष्ट्रीय वृक्षण दिवस प्रतिवर्ष जो है आज के दिन मनाया जाता है, और जिसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को संकल्प के तहत वृक्षण दिवस के रूप में नामित किया था आज ही के दिन, और पहली बार जो है 1991 को मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करना, उनके अधिकारों को मान्यता देना और उनको स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के प्रति समाज में जागरूकता फैलाना, बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और भेदभाव को रोकना तथा उनके बेहतर जीवन स्तर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करना। तभी तो हम साथ साथ होते हैं। बड़े बुजुर्गों को कुछ नहीं चाहिए, मान सम्मान चाहिए। उनके साथ बैठकर दो बातें कीजिए, समय दीजिए, एक समय साथ भोजन कीजिए, नाश्ता कीजिए, उनकी बातें सुनिए, तब हम साथ साथ हैं।

आज का जोहार रांची कार्यक्रम यही समाप्त होता है। रेणु को दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप यूपीएससी के शताब्दी समारोह का आयोजन 1 अक्टूबर 2026 का भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित रहेंगे, जिसका आप सीधा प्रसारण सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित होने वाले संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के शताब्दी समारोह में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें, ये कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोह का समापन होगा जो पिछले 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री यूपीएससी शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में यूपीएससी और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, भारत सरकार के विशिष्ट अधिकारी, शिक्षाविद और काफी लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस सब का विवरण देने के लिए मैं हूं शोएसियार खान, मेरे साथ हैं कौशिक राय। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका।
1: नमस्कार एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल ब्रॉडकास्ट विच इज मार्किंग द सेंटिनरी ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दैट अपॉइंट्स इंडिया सिविल सर्वेंट्स। एंड नाउ श्री अजय कुमार, चेयरमैन यूपीएससी, इज एड्रेसिंग।
2: माननीय कार्मिक मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय कैबिनेट सचिव श्री सोमनाथन, संघ लोक सेवा आयोग के माननीय सदस्यगण, राज्य लोक सेवा आयोगों के सम्मान्य अध्यक्ष एवं सदस्यगण, संघ लोक सेवा आयोग के सम्मानित पूर्व अध्यक्ष और सदस्यगण, वर्तमान और सेवानिवृत्त सम्मान्य अधिकारीगण, सम्मान्य वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, विशिष्ट अतिथिगण और मेरे प्रिय सहयोगियों, संघ लोक सेवा आयोग की शताब्दी के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य और सम्मान की बात है। मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि मैं एक ऐसे संस्थान की अध्यक्षता करता हूं जो सिविल सेवाओं और सशस्त्र बलों के लिए सुयोग्य अधिकारियों का चयन करता है। यह वे अधिकारी हैं जो दशकों से राष्ट्र के निर्माण एवं सुरक्षा में लगे रहे हैं और आने वाले समय में विकसित भारत के सपने को साकार करने की जिम्मेवारी भी इनके कंधों पर रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हम केवल आयोग के 100 वर्षों की का जश्न नहीं मना रहे हैं बल्कि लोक विश्वास के 100 वर्षों का महोत्सव भी मना रहे हैं। आजादी के बाद पीढ़ियों से देश के युवा देश सेवा के सपने लेकर आयोग के द्वार पर आते रहे हैं और आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि उन्हें केवल और केवल उनकी योग्यता की कसौटी पर ही कसा जाए, कोई भेदभाव नहीं, पूरी निष्पक्षता से उनका चयन हो। आयोग पर विश्वास केवल भर्ती प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, ये भारत के संविधान द्वारा आयोग को सौंपी गई समस्त जिम्मेवारियों में झलकता है, चाहे वो अधिकारियों की नियुक्ति हो, पदोन्नति हो, डेपुटेशन या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का मामला हो। आयोग ये भली भांति समझता है कि विश्वास बनने में वर्षों लग जाते हैं और उसे बनाए रखना उससे भी बड़ी साधना है। इसलिए आयोग के लिए हर कार्य केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक नैतिक दायित्व है जिसे हम प्रतिबद्धता, प्रामाणिकता और सत्यनिष्ठा से निभाने का प्रयास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आयोग हर साल लगभग 250 भर्ती प्रक्रियाएं आयोजित करता है। इसका अर्थ है लगभग हर वर्किंग डे पर आयोग कोई ना कोई नया परिणाम घोषित करता है। सन 2013 में हमारी परीक्षाएं केवल 45 शहरों में आयोजित होती थी, आज देश के 86 शहरों में होती हैं। आज सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों में लगभग 30% महिलाएं हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से डुप्लीकेट एप्लीकेशंस की पहचान, उम्मीदवारों द्वारा अपलोड किए गए करोड़ों दस्तावेजों का ओसीआर द्वारा रियल टाइम इवैल्यूएशन और परीक्षा केंद्रों पर लाखों उम्मीदवारों का फेस ऑथेंटिकेशन कुछ ऐसे हालिया उपाय हैं जिन्हें आयोग ने निष्पक्षता और सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए अपनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब हम शताब्दी का उत्सव मना रहे हैं तो हम कृतज्ञता पूर्वक उन सभी का भी स्मरण करते हैं जिनकी साधना से इस संस्थान को यह गरिमा मिली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस शताब्दी समारोह को हम सभी के लिए और भी स्मरणीय बना दिया है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और समस्त सम्मानित अतिथियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
0: यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार जी,
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से विनम्र निवेदन, अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें मान्यवर।
0: और अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे।
4: परमादरणीय प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामय उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि आज के दिन का क्या महत्व है, क्या अहमियत है, क्या इतिहास है। आज के दिन हम एक ऐसी संस्था के 100 साल मना रहे हैं जिसका जन्म हिंदुस्तान की आजादी से पहले हुआ था। देयरफॉर लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज एन इंस्टीट्यूशन विच कैरीज द लेगेसी ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एंड द फ्लेवर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। 100 वर्षों के इस गौरवमय यात्रा में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस विशाल देश में अनेकों अनगिनत छिपी हुई विभूतियों को तलाशा, खोजा, फिर तराशा और तराश कर इस काबिल बनाया कि वो देश की प्रशासनिक जिम्मेवारियां निभा सके। एंड देयरफॉर यूपीएससी ट्रूली ट्रूली पर्सोनिफाइज सरदार पटेल्स विजन ऑफ स्ट्रांग, पावरफुल एंड प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज, द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि 100 साल के इस लंबे सफर में पिछले 10-12 साल एक खास मकाम रखते हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा लाए गए गवर्नेंस रिफॉर्म्स के चलते इन 12-13 सालों में यूपीएससी ने कई आयाम हासिल किए, कई कीर्तिमान स्थापित किए। नतीजे के तौर पर जहां यूपीएससी के द्वारा होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई, वहीं साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता में इजाफा हुआ और लोगों का भरोसा भी बढ़ा। यदि बात करें संख्या की तो यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में यूपीएससी द्वारा की गई नियुक्तियों की संख्या रही 45,431 और इसकी तुलना में एनडीए के पहले 10 वर्षों में यह संख्या बढ़ करके हो गई 50,906 और अगर हिसाब लगाया जाए 12 साल का तो यह आंकड़ा 65,000 पार कर जाता है। अनेकों रिफॉर्म्स लाए गए जैसे यूनिफाइड वन टाइम रजिस्ट्रेशन इंटेग्रेटेड विद आधार एंड डिजी लॉकर, जैसे दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सेंटर ऑफ चॉइस, जैसे प्रोविजनल आंसर की ऑन दी वेबसाइट और प्रतिभा सेतु सिविल सर्विसेज एग्जाम के वो उम्मीदवार जो आखिरी चरण में किसी कारण असफल रह गए उनके लिए विकल्पित जॉब ऑप्शंस, और अभी हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट। आज यूपीएससी एक रोल मॉडल बन चुका है देश विदेश की हर एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए। आज दुनिया भर से अनेकों मुल्कों से प्रतिनिधि मंडल यहां आकर के यूपीएससी की नियुक्ति प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं। आज यूपीएससी एक बेंचमार्क है, एक यार्डस्टिक है, एक मापदंड है जिसके ऊपर हर एक रिक्रूटमेंट एजेंसी पूरा उतरना चाहती है। और अंत में केवल इतना कहना है कि प्रधानमंत्री जी, आपने हमारे सामने सन 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की रचयिता है यूपीएससी। यूपीएससी इज इंडीड द आर्किटेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रूट टू डेस्टिनेशन 2047। विरासत और विकास का ये खूबसूरत मिश्रण इसी तरह बना रहे, इसी दुआ के साथ, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was Dr. Jitendra Singh,
3: आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए हृदय से आभार मानी मंत्री महोदय।
1: इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग पेंशंस एंड ग्रीवेंसेस and the honorable prime minister of india shri narendra modi is the guest of honor at the centenary celebrations of the union public service commission and a short film on upsc
5: karodon sapne aur ek atoot kasauti merit saal dar saal jan seva ke liye 200 se adhik parikshaon ke madhyam se सबसे योग्य प्रतिभा को चुनना यूपीएससी द्वारा सटीकता का राष्ट्रीय स्तर पर अभ्यास है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जिसमें भाग लेती है भारत की विविधता, 48 विषय, 22 संवैधानिक भाषाएं, लाखों परीक्षक और अंत में सिर्फ एक मेरिट लिस्ट। इतनी विविधता को एक ही राष्ट्रीय कसौटी पर लाना, यही यूपीएससी की उपलब्धि है। 100 वर्षों में परीक्षा का आकार बढ़ा तो अवसर का दायरा भी। 1957-58 में लगभग 1000 अनुसूचित जाति कैंडिडेट से 450 गुना बढ़ना, 100 से भी कम अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट से आज 1500 गुना बढ़ना, दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए सेंटर ऑफ चॉइस, अतिरिक्त समय, स्क्राइब की सहायता मिलना, बदलते भारत के साथ महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी, 1952 में 3 से बढ़कर 2025 में लगभग 300 हुई, जिनमें टॉप 25 में 11 महिलाएं शामिल हैं। लाखों कैंडिडेट्स, हजारों परीक्षा केंद्र, निष्पक्षता की रक्षा कैसे हो? यूपीएससी ने चुनी न महंगी मशीन, न भारी ढांचा, बस एक स्मार्टफोन। 2025 से सभी 2072 केंद्रों पर रियल टाइम फेस ऑथेंटिकेशन, 7 सेकंड में पहचान, हर मिनट 12,000 सत्यापन, एआई से एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स की जांच, प्रतिभा सेतु, अंतिम सूची से चूक गए प्रतिभाशाली कैंडिडेट्स को देता है एक और अवसर। तभी तो सर्वोच्च अदालत से लेकर लाखों युवाओं का यूपीएससी पर है अटूट भरोसा।
6: यूपीएससी एंड इट्स कंडक्ट इज ऑलवेज टॉप नॉच। देर इज नो प्रॉब्लम इन कंडक्टिंग ऑफ पेपर्स, देर इज नो लेट शेड्यूलिंग ऑफ पेपर्स, नो कैंसिलेशन ऑफ पेपर्स। आई थिंक दैट्स ऑलमोस्ट द बेस्ट बॉडी यू कैन गेट।
7: बहुत ही ज्यादा फेयर सिलेक्शन होता है कि आप आओगे, आप अपनी तैयारी करके आओ और आपको मौका दिया जाएगा और आपका इवेल्युएशन होगा।
5: 100 वर्षों में भारत बदला, यूपीएससी भी बदला, लेकिन लक्ष्य वही है, प्रतिभा की तलाश, निष्पक्षता का संकल्प और अडिग रहकर हर कर्तव्य का पालन।
8: कर्तव्य हमारे लिए विकल्प नहीं, संकल्प है। ये समय तेजी से बदलाव का समय है, आपकी भूमिका भी, आपके अधिकारों से नहीं, आपके कर्तव्य और उनके पालन से तय होगी।
5: यूपीएससी 100 years of selecting India.
0: संघ लोक सेवा आयोग के 100 वर्षों की यात्रा को दिखाती हुई है फिल्म का प्रदर्शन किया गया भारत मंडप।
3: देशवासियों की सेवा आराधना कभी प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ का गौरव पाता है, तभी गुलामी की मानसिकता को त्याग कर कर्तव्य पथ, कर्तव्य का बोध कराता है और हर
0: भारत मंडप में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है।
3: सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा
0: प्रधानमंत्री
3: शताब्दी स्मारक टिकट
0: हिस्सा ले रहे हैं।
3: शताब्दी स्मारक सिक्का एवं लोक सेवा आयोग से संबंधित
0: टिकट और सिक्का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा
3: का विमोचन जारी किया जा रहा है। आपसे
1: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल
3: प्रकल्पों का विमोचन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय।

0: is a commemorative postage stamp, a commemorative coin, and a publication titled The 100 Landmark Judgments. And the postage stamp is priced at 5 rupees, and it says 100 years of Union Public Service Commission. It's indeed a collector's item, and the postage stamp and cover is a special commemorative postage stamp and cover that is available as a collector's item. And this also, a beautiful coin which depicts the UPSC building from 1926 to 2026, and it is valued at 100 rupees. And the publication, 100 Landmark Judgments, the commemorative postage stamp, the commemorative coin, and 100 Landmark Judgments publication have been released by the Honorable Prime Minister.
1: माननीय प्रधानमंत्री ने स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया। आपको बता दें,
2: 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का शंखनाद
1: यूपीएससी के 100 वर्ष के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया रहा है। अब समारोह
0: And now the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi will address the gathering here to mark 100 years of the Union Public Service Commission.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
3: केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पीके मिश्रा जी टीवी सोमनाथन जी अजय कुमार जी यूपीएससी के सभी माननीय सदस्यगण अलग अलग राज्यों से आए सभी पीएससी के चेयरमैन अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों मैं आज इस बात करने से पहले कल जो एक घटना घटी और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई उनकी सारवार चल रही है आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें साथियों आज का ये दिन यूपीएससी के 100 वर्षों के उत्सव के साथ ही एक विरासत का भी उत्सव है ये उत्सव उस आकांक्षा का है जिसे हर वर्ष लाखों लाख युवा उसे जीते हैं। ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, टेक्नोलॉजी बदली, सिलेबस बदले, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। और ये आप सभी की बहुत बड़ी पूंजी है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर अभी यहीं स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है। मैं 100 वर्ष की इस यात्रा से जुड़े सभी महानुभावों का वंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी मैं एक छोटी सी गैलरी बनाई है, उसका निरीक्षण कर रहा था और आप सबसे भी कहूंगा कि 10-15 मिनट लगेंगे, जरूर देखें। और मैंने उसमें 75 साल के कार्यक्रम का भी एक चित्र देखा जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्रनाथ दिखते हैं। आज 90 साल की आयु में हमारे बीच मौजूद है। साथियों, ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने इस यात्रा को विश्वास में बदला है, समयाकुल परिवर्तन किए हैं और संस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। जब मैं गैलरी देख रहा था तो 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने भी इसी प्रक्रिया से जब गुजरे थे, उसकी सारी जानकारी वहां है। और मेरा इस बात पर ध्यान गया कि उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी लेकिन संस्कृत का पेपर हुआ करता था और सुभाष बाबू ने संस्कृत में पेपर लिखा है। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी नमन करूंगा। आजादी के बाद उनके सामने केवल एक देश को आजाद रखने की चुनौती नहीं थी, उनके सामने एक राष्ट्र को चलाने की चुनौती भी थी। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए जिस स्टील फ्रेम की जरूरत थी, वो स्टील फ्रेम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। उन्होंने इस संस्था को आजाद भारत का एक प्रमुख स्तंभ बनाया, इसे सशक्त किया। साथियों, 1926 में जब इस संस्थान की नींव रखी गई थी, तब उस समय की प्राथमिकताएं अलग थी। उस समय व्यवस्था का फोकस और उसका समर्पण दोनों ही ब्रिटिश राज के प्रति था। देश आजाद हुआ तो आजाद भारत के सपने और भारत की व्यवस्था, ये फोकस में रहे, केंद्र में रहे। बीते दशकों में यूपीएससी ने अपने दायित्वों को बेहतरीन तरीके से निभाया है।

भारत की हर संस्था के लिए बहुत अहम है। इसलिए आज मैं अपनी चर्चा का फोकस इसी दिशा में रखूंगा। साथियों, विकसित भारत के लिए अब जिस तरह की गवर्नेंस देश को चाहिए, उसका बहुत बड़ा माध्यम यूपीएससी और राज्यों के चयन आयोग भी है। आज आप जिन युवाओं की भर्ती कर रहे हैं, वो विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे और वही विकसित भारत के सबसे बड़े बेनिफिशियरी भी होने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें दो कसौटियों को हमेशा याद रखना है। पहली कसौटी है नेशन फर्स्ट और दूसरी कसौटी है सिटीजन फर्स्ट। यही दो कसौटियां हैं जिन पर हर सिलेक्शन को कसा जाना है और जब इस भाव से कैंडिडेट को परखा जाएगा, इस भाव से भरे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा तो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति उतनी ही सहज हो जाएगी, आसान हो जाएगी। साथियों, 2047 का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। भारत आज के मुकाबले और अधिक अर्बन होगा, गांव और शहरों का अंतर कम होगा और हमारे नागरिकों, खासकर युवाओं के एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस कहीं ज्यादा बड़ी होगी। आज ही इसका बदलाव दिखाई दे रहा है। इसलिए आज सवाल सिर्फ सर्विस डिलीवरी का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या पब्लिक सर्विसेज आज की इंस्टेंट डिलीवरी वाली दुनिया की गति उसको पकड़ पा रहे हैं क्या, उस हिसाब से चल पा रहे हैं क्या। आज नागरिक किसी सर्विस के लिए हफ्तों या महीनों का इंतजार नहीं करना चाहता। जब एआई हजारों डॉक्यूमेंट्स को कुछ ही क्षणों में प्रोसेस कर सकता है, जब सरकार के पास रियल टाइम डाटा उपलब्ध है, तो नागरिक तेजी से समाधान चाहता है। यही बदलती हुई सोच हमारी सिविल सर्विसेज से भी नए बदलाव की मांग करती है। इसलिए हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं, पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखें कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है। क्योंकि जब मोटिवेशन सही होगा तो बदलती जन आकांक्षाओं के साथ चलना भी आसान होगा, ढलना भी आसान होगा। साथियों, आप में से काफी लोग इस बात से परिचित है कि मैं जब ट्रेनी ऑफिसर से मिलता हूं तो उनसे कहता हूं कि वे लिखकर रखें प्रारंभ

खुद लिख करके उसको रखे, वे सिविल सर्विस में क्यों आए हैं? क्योंकि समय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, नई चुनौतियां आती हैं। ऐसे समय में वही छोटा सा नोट उन्हें उनके मूल उद्देश्य की याद दिलाता है। ये उनके लिए एक सेल्फ अप्रेजल टूल भी बन जाता है। यूपीएससी और राज्यों के आयोग भी कुछ ऐसी व्यवस्था को विकसित करने के बारे में विचार कर सकते हैं। साथियों, हमने अतीत का वो दौर देखा है जब माना जाता था कि सरकार ही माई बाप है, लेकिन आज ये दौर है जिसमें हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। यानी देश का नागरिक हमारे लिए किसी देव से कम नहीं है। हमारे लिए नागरिक की सेवा सर्वोपरि है। इसलिए साथियों, आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका मूल सिद्धांत है प्रो पीपल, प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस। प्रो पीपल यानी सरकार की सुविधा को देखते हुए नहीं, बल्कि नागरिक के हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम करना। प्रोएक्टिव यानी जब समस्या आए तब एक्शन के बजाय समस्या को पहले ही एंटीसिपेट करके उसके समाधान तैयार हो। गुड गवर्नेंस यानी सरकार का अभाव भी न हो, दबाव भी न हो और अनावश्यक प्रभाव भी न हो। राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर दोनों ही जगह हमें अपने सिलेक्शन प्रोसेस को इसी स्पिरिट के हिसाब से डिजाइन करना चाहिए। हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो देश की आवश्यकताओं को समझे, जो कानून का पालन कराए, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है। साथियों, आज जिस तेजी से युग बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, वो हम सब देख रहे हैं। इसके बाद जो आने वाला समय है उसमें नई तरह की चुनौतियां समाज के सामने आने जा रही है। एआई को लेकर इस समय विश्व में जो चर्चा छिड़ी हुई है उससे हम सब परिचित हैं। ऐसे में हमारे सिविल सर्वेंट्स भी अलग तरह की परिस्थितियों में काम करेंगे। इंफॉर्मेशन वॉर की स्थिति होगी, डीप फेक्स होंगे, एल्गोरिथमिक बायस के चैलेंज होंगे, क्लाइमेट जस्टिस जैसे कॉम्प्लेक्स सवाल होंगे। ऐसे में हमें चयन प्रक्रिया में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग,
और दूरदृष्टि को टेस्ट करने का भी उस प्रयासों को भी प्राथमिकता देनी होगी। साथियों, हम सभी जानते हैं देश आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से चल रहा है। ऐसे समय में हमारी परीक्षा कराने वाली एजेंसीज को उन रिफॉर्म्स पर तेजी से काम करना होगा जो आज के समय की मांग है। जैसे परीक्षाओं को कराने में लगने वाला समय एक बहुत अहम विषय है। परीक्षा को हमें केवल एक इवेंट की तरह नहीं देखना है। ये इवेंट से कहीं अधिक युवाओं के भविष्य से, उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। परीक्षाओं में कुछ महीनों की देरी युवाओं के लिए बड़ा संकट बन सकती है। कोचिंग की फीस, रेंट, ट्रांसपोर्ट का खर्च युवा पर होता है। इसलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम टाइम सर्टिफिकेट को बढ़ाएं, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए ईपीएस को देश के सब छात्रों को

0: सरकार से तीन दिन के लिए डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश के सभी डीजीपी इकट्ठे होकर के बातचीत करते हैं और इन कॉन्फ्रेंस में एक प्रयास होता है कि एक राज्य दूसरे राज्य की बेस्ट प्रैक्टिसेस को जाने, समझे, सीखे और उचित लगे तो उन्हें अपने राज्य में लागू करें। मुझे बताया गया है कि यूपीएससी हर वर्ष स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। अब उसको और विस्तार देकर के और अधिक प्रोडक्टिव बनाने के लिए और अधिक नए विचारों से भरने के लिए भी उसके रूप रंग व्यवस्था को कैसे नया आयाम दिया जाए उस पर जरूर आप सोचते होंगे। ऐसे प्रयासों से अलग अलग संस्थानों की बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा होती है लेकिन साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी स्टडी करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने प्रोसेस और प्रोसीजर्स की एफिशिएंसी ये कैसे बढ़े इस पर भी फोकस चर्चा होनी चाहिए। क्लॉस लर्निंग के इस प्रयास से यूपीएससी को भी फायदा होगा और हर राज्य के चुनाव चयन आयोग को भी जरूर लाभ होगा। हमें प्रोसेस और प्रोसीड्यूरल के मानकों को स्टैंडर्डाइज करने पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इससे युवाओं को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, एक और विषय यूपीएससी और राज्यों के चयन आयोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग का भी है। ये काम भी निरंतर होते रहना चाहिए। मिशन कर्मयोगी के तहत जो आईकॉट प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसका उपयोग हमारी अंदरूनी व्यवस्थाओं के लिए भी, हमारे साथ काम करने वाली टीम के कैपेबिलिटी के लिए भी इन सारे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया जा सकता है। साथियों, आप सभी को हमेशा याद रखना है कि आपका काम युवा शक्ति के भविष्य से जुड़ा है, यानी युवा शक्ति से राष्ट्र शक्ति के निर्माण का जो मिशन है आप उसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और बीते वर्षों में आपने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई भी है। जब यूपीएससी का गठन हुआ था तब बड़े शहरों, समर्थ परिवारों और बड़े संस्थानों से पढ़े युवाओं को अवसरों का लाभ अधिक मिलता था लेकिन आज गांवों और कस्बों के युवा भी पब्लिक सर्विस में पहुंच रहे हैं। हमारी बेटियों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। 1952 में सिविल सर्विसेज में विमेन कैंडिडेट की संख्या सिर्फ 3% थी, 3%। आज यह 30%, 30% से अधिक हो चुकी है और यूपीएससी के पूरे इतिहास में 4 विमेन चेयरपर्सन रही है पूरे यूपीएससी के इतिहास में। ताली बजने का समय अब आएगा। पूरे यूपीएससी की हिस्ट्री में 4, उसमें से 3 2014 के बाद बनी है। ये बदलाव केवल आंकड़े नहीं है, ये बताते हैं कि देश में अवसरों का दायरा कितना बढ़ा है। साथियों, 1976 में जब यूपीएससी को 50 साल हुए थे उस समय की तुलना में परीक्षा देने वालों की संख्या में 45 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की जा चुकी है, 44.5 टाइम। यानी आज हमारे सामने टैलेंट का एक बहुत बड़ा पूल है। ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है। अब हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है, क्योंकि जब इतना बड़ा टैलेंट पूल हो, पूरी दुनिया जिस पर ईर्ष्या करती है, जब सामने इतना बड़ा टैलेंट पूल है, तो आप सिर्फ एक कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे व्यक्ति का चयन कर रहे हैं जो आगे चलकर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। ग्राउंड लेवल पर लोग उसी को गवर्नमेंट मानेंगे। इसलिए आप सभी पर सही व्यक्ति के चयन का बहुत बड़ा दायित्व है। साथियों, यूपीएससी ने अपने पहले 100 साल में अपनी विश्वसनीयता को निरंतर मजबूत किया है। अब इस संस्था को अपनी दूसरी सदी में नई संभावनाओं, नई चुनौतियों के हिसाब से विश्वसनीयता को और समृद्ध कर रहा है। जो वैल्यूज आज तक हमारी ताकत रही है, उन्हें बनाए रखते हुए भविष्य के अनुरूप अपग्रेड भी करना है। यूपीएससी की स्वतंत्रता, निष्पक्षता, योग्यता, गोपनीयता और निष्पक्ष प्रक्रिया, यही उसकी पहचान है। ये मूल्य हमेशा बने रहना चाहिए। इसी आग्रह के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: The Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission, said that he spoke to the parents and the spouse of Captain Smith Machar, who saved many lives in an aircraft that was on its way from Dubai to Israel yesterday. And he said that this displays India's commitment to peace and to fight terrorism. The Prime Minister said that he was pleased to see a photograph of Netaji Subhash Chandra Bose, who appeared and passed the 1920 UPSC examination, and he had appeared for the exams and wrote the paper in Sanskrit. The Prime Minister observed that the Union Public Service Commission played a pivotal role in shaping the roadmap of our bureaucrats and our police officers. He said that the coming 2 decades would be extremely significant for every citizen and every institution as India embarks on Viksit Bharat. During Viksit Bharat governance, UPSC and state PSCs will play a great role. He said that two touchstones should be remembered by the civil servants. The first is nation first and the other citizen first. 2047's India will be totally different from now. Nagrik Devo Bhava should be the mantra of every civil servant, as it is the mantra of the government. Service to citizens should be the top priority of officers of the central and state governments. Citizens require quick solutions to their grievances. The examination cycle's timeline may be brought down further, observed the Prime Minister. He urged the Commission to standardize processes and procedures and said that UPSC is the link between Yuva Shakti and Rashtra Shakti.
2: Mananiya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi Lok Seva Aayog ke Shatabdi Samaroh ko sambodhit kar rahe the. Is avsar par Mananiya Pradhan Mantri ne UPSC ki aitihasik yatra, लोक सेवा की भूमिका और देश के प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने इस समय युवाओं और लोक सेवा में उनकी भूमिका की चर्चा भी की। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक सेवा में प्रतिभा, जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण के महत्व को भी रेखांकित किया। श्रोताओं, 1 अक्टूबर 2026 को भारत मंडपम में आयोजित यह समारोह संघ लोक सेवा आयोग की 100 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा को एक साथ देखने का अवसर प्रदान करता है। 1 अक्टूबर 1926 को शुरू हुई यात्रा, फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चरण और स्वतंत्र भारत के संविधान के लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का संवैधानिक स्वरूप, इन सभी प्रयाणों से गुजरते हुए यूपीएससी ने आज अपना शताब्दी समारोह मनाया। आज का यह समारोह अतीत की विरासत को स्मरण करने के साथ साथ आने वाले समय के लिए नई सोच, नई दिशा पर विचार करने का एक अवसर भी है। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इस विशेष प्रसारण से मैं शहसियार खान, अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय और कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद कुमार के साथ आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: अभी आप यूपीएससी के शताब्दी समारोह का सीधा प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे। भारत मंडपम नई दिल्ली से, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: बहनों नमस्कार। जानकारी और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम गृह लक्ष्मी लेकर हम हाजिर है। मैं महजबीन और आज हमारे साथ है एक और प्यारी सी सखी खुशबू।
1: बिल्कुल, कहते हैं सुबह की एक अच्छी शुरुआत पूरे दिन को खुशनुमा बना देती है। चेहरे पर मुस्कान हो, मन में उत्साह हो और अपनों का साथ हो तो साधारण सा दिन भी बहुत खास बन जाता है। बस इसी खुशी और सकारात्मकता के साथ आज की इस मुलाकात की शुरुआत करते हैं। सखियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम बात करेंगे बहुत ही प्यारे से विषय पर, क्योंकि कहते हैं ना कि खुशियां सच में छोटी छोटी बातों में छिपी होती हैं। और जब यही खुशियां अपनों के साथ बांटी जाती है तो रिश्ते और भी खूबसूरत हो जाते हैं। परिवार की बात करें तो हमारे घर में हर उम्र और हर पीढ़ी की अपनी एक खास जगह होती है। बच्चों की चंचलता, युवाओं का उत्साह और बुजुर्गों का अनुभव, इन सबका साथ हो तो परिवार पूरा हो जाता है ना।
0: बहनों, हमारे समाज और परिवार में बुजुर्ग जो हमारी तीसरी पीढ़ी हैं और बहुत ही अनमोल धरोहर हैं और मार्गदर्शक भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ना खुशबू कि हमारी तीसरी पीढ़ी हमारे जीवन की नींव भी होते हैं, वे अनुभव का खजाना होते हैं।
1: बिल्कुल, और आज हम परिवार की इसी खूबसूरत सी कड़ी की बात करने जा रहे हैं, हमारे वृद्धजन। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है सखियों, और कहा जाता है कि वे जीवन का लंबा अनुभव उनके पास होता है और वो हमें कहीं नहीं मिलता। उनके सुझाव और दिखाए गए रास्ते हमारे बहुत काम आते हैं और साथ ही साथ संस्कारों के वे संवाहक भी होते हैं। वे परिवार को बांध कर रखते हैं और हमारी नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति, नैतिक मूल्यों व अनुशासन से भी जोड़ते हैं।
0: हाँ खुशबू, देखा जाए तो हमारी तीसरी पीढ़ी हर समय एक छायाधार वृक्ष की तरह हमेशा परेशानी, तकलीफ, हर उन बातों से बचाते हैं जिनकी उनको ज़रूरत होती है। यानी जिंदगी के जो भी उतार चढ़ाव होते हैं ना, तो उस वक्त हमारे जो हमारी तीसरी पीढ़ी है वो एक छायादार वृक्ष की तरह संभाले हुए होते हैं और उस वक्त वो राह दिखाते हैं जब हमें ज़रूरत होती है कि हम क्या करें आगे और क्या ना करें, हमें कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो उस वक्त हमें सही राह दिखाते हैं।
1: बिल्कुल, मैं जबीन आपने बिल्कुल सही कहा, जीवन में सुख और शांति जो है ना वो हमें अपने वृद्धजनों से ही मिलती है। और शायद यही वजह है कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में खुशियां बनी रहे, रिश्तों में मिठास बनी रहे और हर सदस्य को अपनापन महसूस हो। और कहा भी जाता है कि परिवार वो जगह है जहां हमारे जीवन के हर पड़ाव का पर साथ और सहारा मिलता है। लेकिन परिवार को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम रिश्तों की अहमियत को समझे, हर पीढ़ी को सम्मान दे।
0: खुशबू, मैं यहाँ पे एक बात बहुत ही अच्छी बात कहना चाहूंगी। इसे आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि हम अपने वृद्ध जनों का किस तरह से सम्मान कर सकते हैं। हमारी तीसरी पीढ़ी जब उस पड़ाव पर पहुंचते, उस उम्र के पड़ाव पर पहुंचते, उस समय वो अकेला महसूस करते हैं। तब हमें चाहिए कि उनको उस समय अकेला बिल्कुल भी ना छोड़े। बहनों, हम अक्सर जब भी परिवार के साथ कभी मिलने घूमने का इरादा करते या कहीं जाने का इरादा करते हैं, यानी अच्छी प्लानिंग होती है कि हम कुछ मूड फ्रेश करके कहीं घूम करके आते हैं, तो ये होता है कि अब जो हमारे बुजुर्ग होते हैं तो उनको किस मतलब घर में ज्यादातर देखा जाता है कि वो उन्हें अकेला छोड़ करके परिवार के सदस्य चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात हम यही कहना चाहेंगे कि चाहे सुझाव कहिए या फिर एक बात है जो बहुत ही अच्छी है कि अगर अपने बुजुर्ग को आप अपने साथ ले जाएं तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, उन्हें उनकी भी जो हवा पानी के हम कहते हैं ना कि जैसे मौसम चेंज होता है उस तरह से उनकी ज़िंदगी में भी बदलाव होनी चाहिए और वो अच्छा महसूस करने के लिए आप उनको हमेशा अपने साथ रखें और उन्हें अकेला महसूस ना होने दें। और ये भी होता है कि अगर आप

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बहनों फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। और खुशबू आगे प्रोग्राम में क्या है?
4: बिल्कुल सखियो, आज है गुरुवार और हम आपके लिए लेकर आते हैं संजीवनी, जहां स्वास्थ्य से जुड़े उन विषयों पर हम विशेषज्ञों से बातचीत करते हैं जिनके बारे में सही जानकारी हमारे लिए बेहद जरूरी है। और आज का विषय है मेनोपोज यानी रजोनिवृत्ति, या महिलाओं के जीवन का एक स्वाभाविक चरण है। तो इस पर विशेष बातचीत कर रही है सुभाषिनी डॉक्टर अंजलि बनर्जी से। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
5: मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति, यह हर महिला के जीवन का एक स्वाभाविक और खूबसूरत पड़ाव है, जिससे 40 से 50 वर्ष की उम्र के बीच हर महिला को गुजरना पड़ता है। लेकिन सही जानकारी के अभाव में कई महिलाएं इस दौरान होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलावों से अकेले ही जूझती रहती है। मेनोपॉज क्या है, इसके लक्षण क्या है और इस दौरान महिलाएं अपना ख्याल कैसे रखें, इन सभी जरूरी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर देवांजलि बनर्जी, जो कि एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आइए इनसे बातें करते हैं। देवांजलि जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
6: नमस्कार।
5: तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि मेनोपॉज क्या होता है और ये सामान्यतः किस उम्र में होता है?
6: मेनोपॉज वह अवस्था है जब महिला को लगातार कम से कम 12 महीने अर्थात एक साल तक मासिक धर्म नहीं आता है, और इसका कोई और वजह, कोई और अन्य कारण पता नहीं चलता है, जैसे कि कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, कोई थायराइड की समस्या इत्यादि और कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है
5: जी।
6: यह यूजुअली 45 से 55 के उम्र के बीच में होती है। अंडाशय यानी ओवरीज की कार्यक्षमता कम हो जाने के कारण फीमेल हार्मोन्स शरीर में कम हो जाते हैं और मेनोपॉज आ जाती है
5: जी।
6: इसका प्रभाव महिला के लाइफ में लगभग हर एक क्षेत्र में दिखाई देती है। सबसे बड़ा जो चेंज है शारीरिक, वो है पीरियड्स में अनियमितता या इरेगुलरिटी, और इसका क्रमशः बंद हो जाना। उसके साथ साथ वजाइनल एरिया यानी शोनि में ड्राइनेस लगना, सूखापन होना, संभोग में डिस्कम्फर्ट होना, खुजली होना तथा अन्य यूरिनरी इन्फेक्शंस जल्दी जल्दी हो जाना। हड्डियों और मांसपेशियों में मेनोपॉज के दौरान कमजोरी आ सकती है, जिससे जॉइंट पेन्स, बैक पेन इत्यादि समस्याएं आ जाती हैं
5: जी।
6: गर्मी की लहरें, जिसे हम आमतौर से हॉट फ्लैशेस कहते हैं
5: जी,
6: वो भी काफ़ी कॉमन है। मानसिक प्रभाव भी इसका बहुत कॉमन है, जैसे चिड़चिड़ापन रहना, मूड स्विंग्स हो जाना, कॉन्सेंट्रेट न कर पाना, अधिक चिंता होना, एंग्जाइटी रहना, लो मूड, और ये सभी मेनोपॉज में दिखाई देते हैं
5: जी। तो मेनोपॉज के तो ये लक्षण आपने जो बताए, ये हर महिला को ध्यान देना चाहिए। इसमें आहार और व्यायाम या फिर कहें कि नींद की क्या भूमिका होती है? और ये भी हमें जानना है कि जो हार्मोनल टेस्ट जो करवाया जाता है, उससे क्या लाभ होता है और ये क्या होता है?
6: हार्मोनल टेस्ट जो होते हैं वो है ये LH और FSH फीमेल हार्मोन्स की कुछ टेस्ट्स होती हैं
5: जी।
6: जो हमेशा करना ज़रूरी नहीं होता है। अगर हमें कुछ डाउट्स हैं, पीरियड्स इरेगुलर हैं, या साल भर में कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, और पूरा 12 साल तक जो गैप होना चाहिए वो नहीं है, तो फिर इसी डाउट्स में हम लोग हार्मोनल टेस्ट करा सकते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि मेनोपॉज हो रहा है कि नहीं। लेकिन सामान्यतः ये टेस्ट्स मेनोपॉज प्रूव करने के लिए जरूरी नहीं होते
5: नहीं।
6: हैं,
5: यानी कि हर महिला को
6: कराने
5: कोई
6: की जरूरत
5: नहीं है
6: जी, जी।
5: तो जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारा खान पान है, जो हमारी नींद है
6: जी,
5: या जो हम एक्सरसाइज करते हैं, उसकी क्या भूमिका है, क्या उसमें सहायता मिलती है?
6: बिल्कुल बिल्कुल, इस सवाल का जवाब जानना हमारे श्रोताओं के लिए अत्यावश्यक है। सिर्फ HRT ही मेनोपॉज की सिम्टम से छुटकारा पाने का एकमात्र विकल्प नहीं है। वेट मैनेजमेंट करना, पर्याप्त नींद लेना, नियमित व्यायाम या वॉकिंग, योगा या मेडिटेशन से स्ट्रेस को कंट्रोल करना, अपने डाइट में माइंडफुलनेस लाना, पारिवारिक मानसिक और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी लेना
5: जी।
6: मेनोपॉज के सिम्टम्स में ये सारी बहुत हद तक कंट्रोल कर सकती हैं। आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन्स का सेवन करना चाहिए। WHO के अनुसार प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट का मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बहुत आवश्यक है
5: जी।
6: ये सारी चीजें मेनोपॉज के एक्सपीरियंस को एक अच्छी एक्सपीरियंस में बदल दे।
5: बिल्कुल। तो जो HRT होता है यानी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो होती है जिसके बारे में आपने बताया, तो अगर किसी महिला को इसकी जांच की जरूरत पड़ गई तो किन बातों का इसमें ध्यान रखा जाता है और क्या इससे साइड इफेक्ट भी होते हैं?
6: जी बिल्कुल। HRT का अर्थ होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। आजकल इसे सिर्फ हार्मोन थेरेपी भी कहा जाता है। जैसा हमें पता है अभी कि फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन की कमी से मेनोपॉज होता है, तो मेनोपॉज के सारे लक्षण जो आमतौर के से प्रतीत होते हैं ये अगर बीमारी का रूप ले ले, मतलब ये हमें बहुत अधिक परेशान करने लगे
5: जी।
6: तो एस्ट्रोजन की भरपाई करने के लिए जो चिकित्सा की जाती है उसे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, और यह मुख्यतः हॉट फ्लैशेस जो गर्मी की लहरें और बोन लॉस के लिए ही की जाती हैं।
5: अच्छा।
6: और HRT शुरू करने से पहले बहुत सारी बातों का ध्यान दिया जाता है और इसे बहुत लाइटली नहीं दिया जाता। यह बहुत जरूरी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है डिटेल्ड हिस्ट्री लेना, मतलब महिला को किसी फीमेल चिकित्सक के पास जाना है और वो डॉक्टर उनका डिटेल्ड मेडिकल फैमिली हिस्ट्री सारा चीज लेंगी, जैसे कि घर में किसी को कैंसर की हिस्ट्री है कि नहीं, कोई असामान्य मासिक ब्लीडिंग हुआ है कि नहीं, उनको हृदय की दिल की कोई बीमारी है कि नहीं, उच्च रक्तचाप है कि नहीं, लिवर की कोई समस्या है कि नहीं, कभी स्ट्रोक हुआ है कि नहीं, इन सब मामलों में HRT खतरनाक हो सकता है।
5: अच्छा।
6: तो नहीं दिया जाता है।
5: नहीं।
6: अगर इन सब रोगों से महिला मुक्त है और बाकी कोई और ब्लड टेस्ट में भी कोई संदेहजनक रिपोर्ट्स नहीं आए हैं तो HRT शुरू किया जा सकता है।
5: बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया तो हड्डियों की सेहत के लिए भी क्या HRT जो है वो सही रहता है?
6: जी बिल्कुल बिल्कुल। आजकल मुख्यतः हड्डियों की स्वास्थ्य के लिए और मूड स्विंग्स और हॉट फ्लैशेस के लिए HRT काफी प्रचलित है। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए HRT काफी लाभदायक है और इनका पूरा पूरा फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन वही है कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर पूरी तरह से सारी साइड इफेक्ट्स वगैरह का ध्यान रखते हुए इसे शुरू किया जाना चाहिए।
5: जी बिल्कुल। यानी कि HRT सुरक्षित हो सकता है लेकिन जरूरत हो तभी महिलाओं को कराना चाहिए और चिकित्सक की देख रेख में उनसे कंसल्ट करके ही। HRT बंद करने पर मेनोपॉज के लक्षण फिर से आ सकते हैं या HRT से ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो इन बातों में कितनी सच्चाई है?
6: HRT बंद करने पर HRT के सिम्टम्स वापस तो आ सकती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि HRT जब शुरू होता है तो उन्हें हर 3 से 6 महीने में हम बुलाते हैं।
5: अच्छा।
6: रिव्यू करते हैं और यह पता लगाते हैं कि और कितने दिनों तक जरूरत पड़ेगी और सिम्टम्स में कितना सुधार हो रहा है। HRT जहाँ तक हो सके मिनिमम डोसेज में देना चाहिए और मिनिमम समय के लिए देना चाहिए, तो और मैक्सिमम 3 से 4 साल से ज़्यादा यूजुअली हम लोग HRT कंटिन्यू नहीं करते हैं।
5: जी, जी।
6: तो अगर सिम्टम्स हमें पूरी तरह से पता है कि अब सिम्टम्स कम हो रहे हैं तब हम HRT बंद कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा से परेशानी यूजुअली नहीं होती
5: नहीं
6: है, क्योंकि
5: होती
6: तब तक में बॉडी को एडजस्ट हो जाता है मेनोपॉज का स्टेट। ब्रेस्ट कैंसर की का जो इश्यू है वो तो है, एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है HRT से, तो इसीलिए जैसा मैंने पहले बताया कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर पूरी डिटेल फैमिली हिस्ट्री के साथ सारे टेस्ट्स के साथ HRT शुरू करने पे कोई रिस्क नहीं रहता है।
5: जी।
6: लेकिन जिनके फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है या फिर ब्रेस्ट में कोई गांठ है या ऐसा कुछ एबनॉर्मल सिक्रीशंस आते हैं तो उनके लिए HRT बिल्कुल भी नहीं है।
5: बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि HRT जो है वो इसे कराना भी चाहिए बिल्कुल डॉक्टर की देखरेख में, तो ये कितने दिनों के अंतराल पर दिया जाता है, मतलब कैसे इसका टेस्ट होता है, कितने दिनों पर आप बुलाती हैं पेशेंट को?
6: ओके। तो HRT साधारणतः ओरल टैबलेट से भी हो सकती है या
5: जी।
6: सकते हैं। तो अगर पेशेंट ठीक है अच्छी है तो हर 3 महीने पे हम बुलाते हैं, एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसा महसूस कर रही हैं, सिम्टम्स में सुधार है कि नहीं या कोई और साइड इफेक्ट्स उनको पता चल रहा है कि नहीं, फिर उस हिसाब से हम लोग डोज को टेपर करते हैं या फिर बढ़ाते घटाते हैं। 3 से 6 महीने के बीच में चेकअप्स करवा लेना अच्छी बात
5: अच्छी
6: है।
5: बात है जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर किसी महिला को एचआरटी दी जा रही है तो इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और क्या सावधानी रखना चाहिए?
6: या हल्का दर्द रहना, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग भी हो सकता है, भी कभी ज्यादा नहीं जा सकता है, सकते हैं। अगर सारे सिम्टम्स लगातार आपको परेशान कर रहे हैं या समय के साथ साथ घट नहीं रह रहे हैं तो फिर उन्हें अंदाज नहीं।
5: अच्छी बात जी डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप चलते चलते हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि मोनोपॉज के बाद महिलाएं रख रखाव करें, क्या कौन सी सावधानी रखें, कुछ उनके लिए संदेश
6: जी। तो ये कोई बीमारी नहीं है, हाँ सिम्टम्स परेशान कर सकती हैं, अगर को परेशान उपलब्ध है आप उन्हें नजरअंदाज न करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, नियमित एक्सरसाइज करें, डाइट पर विशेष ध्यान दें, नियमित हेल्थ चेकअप्स पर जरूर जाइए, लगभग साल में दो बार एक हेल्थ चेकअप करवा लेना अच्छी बात है
5: जी।
6: और एचआरटी भी एक है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ संपर्क जरूर करें और वो आपको सही रास्ता दिखा सकते
5: हैं। बिल्कुल, आशा है जी महिलाएं जो आपको सुन रही हैं वो आपकी बातों से जरूर लाभान्वित हुई होंगी और अपना ख्याल रखेंगी। जो भी चेकअप्स करवाना है या जो भी दवाई खाना है वो बिल्कुल अपने डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं और उनकी देखरेख में ही ले
6: जी।
5: डॉक्टर आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी जानकारी हमारी श्रोताओं को दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
6: थैंक यू।
4: सखियो अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता और आज का विषय था मेनोपॉज लक्षण बदलाव और समाधान। और आज की भेंट वार्ताकार थी डॉक्टर दिबांजलि बनर्जी, उनसे बातें हो रही थी सुभाषिनी की। और सखियो अब बातें तो बहुत सारी हो गई लेकिन अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीदें हमें नई रोशनी योजना से भी मिल रही है सखियो। और इस योजना की शुरुआत 2012-13 में हुई थी, जो कि अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व के विकास के कार्यक्रम के रूप में की गई थी। और इस योजना का लाभ 18 से 65 वर्ष की महिलाएं उठा सकती है।
1: तो इस योजना का लाभ जरूर हमारी बहनें उठाएं। और इसी के साथ हम आपको इस कार्यक्रम की प्रस्तुति के बारे में बता दें कि हमारी आज की प्रस्तुति थी डॉक्टर
0: गौरव कुमार पांडे की। और अब आपकी दो सखियां खुशबू
1: और महजबीन को दे जात, नमस्कार।
2: गृह लक्ष्मी।

अभी आप सुन रहे थे बहनों के लिए कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे पीरियोडिक एफएम अपडेट्स बेस्ड ऑन 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 टू बी हेल्ड इन जापान।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त यहां मौजूद हैं धर्मेंद्र। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए दोपहर के 12:30 बजे के ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट्स एंड क्विकली स्टार्टिंग ऑफ विद क्रिकेट। इंडिया स्टैंडिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ मूविंग ऑन इन टू द फाइनल्स ऑफ द एशियन गेम्स 2026 इन द इंडियन मेन्स T20 क्रिकेट। जी हां, आपको बता दें आज सेमीफाइनल के मुकाबले में भारत और श्रीलंका के बीच में श्रीलंका ने पहले टॉस जीतकर बोलिंग करने का निर्णय लिया। In return, when India was put into bat first, India was able to put on 169 runs on board in 20 overs. As a result, Sri Lanka को मिला 170 run का target जीतने के लिए। और उसके contrast में, when the Sri Lankan batters came down to bat, they in fact just completely piled up and became 45 for the loss of 9 wickets. Yani, there was a total collapse from the Sri Lankan team when it came to chasing down the target. 9.4 overs अभी पूरे हुए हैं और श्रीलंका की पूरी टीम ऑलमोस्ट सिमट चुकी है 45 रनों में। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन मोर विकेट फॉर इंडिया एंड विद दैट इंडिया विल देन मूव ऑन टू सील देयर बर्थ इनटू द फाइनल्स। एंड एज आई से दैट टू ऑल आवर लिसनर्स, इट इज इन फैक्ट ऑल ओवर फॉर श्रीलंका फ्रॉम हियर एंड इंडिया हैज मूव्ड इनटू द फाइनल्स ऑफ द एशियन गेम्स 2026 बाय कंप्लीटली वाइंडिंग ऑफ श्रीलंका इन जस्ट अ पॉल्ट्री टोटल ऑफ 45 रन्स। जी हाँ, श्रीलंका की पूरी टीम 45 रनों में सिमट गई। 10 ओवर भी पूरे नहीं हुए, 9.5 ओवर के अंदर भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए, अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए, वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया, अभिषेक शर्मा ने भी 2 विकेट लिए, रवि बिश्नोई के नाम एक भी विकेट नहीं रहा। लेकिन overall well-rounded team effort, collective effort put out by the Indians today when it comes to bowling. Definitely the batting star for India being Ishan Kishan, who was able to contribute 80 runs from his bat in mere 46 balls with a strike rate of 173.91, and of course the second batter being Vaibhav Suryavanshi, who made 38 runs in 21 balls with a strike rate of 180.95, thereby helping India put on 169 for the loss of 7 wickets in 20 overs. So congratulations to all the fans of cricket, to the Indian men's cricket team, because from here now India is set to meet Pakistan on this coming Sunday in the Asian Games 2026 for the final that will be happening in between India and Pakistan. Dharmendra
2: diya, aur aaj hockey ka bhi to muqabla hona hai Bharat aur Pakistan ke beech mein, wo bhi kafi dilchasp hoga, lekin hum aapko abhi ki ek jankari de dein ki bhartiya purush quadrant team bhi semi final mein pahunch gayi hai spectacular ke आखिरी ग्रुप मैच में। वियतनाम को 2-1 से हराया और स्कोर रहा 10-15, 15-13, 15-7। पहला सेट गंवाने के बाद दूसरे सेट में 4-8 से पीछे थी भारतीय टीम और फिर दूसरा सेट जीता, फिर तीसरा सेट आसानी से जीतकर ग्रुप टॉप किया और सेमीफाइनल में जगह बना ली, यानी पदक यहां पक्का हो गया है।
1: जी, और शूटिंग की दुनिया से आपको बता दें दोस्तों कि शूटिंग का ये इवेंट अब कंप्लीटली समाप्त हो चुका है। इंडिया का एशियन गेम्स में शूटिंग इवेंट के अंदर का सफर भी समाप्त हो गया। अनीश बनवाला हैज बीन एलिमिनेटेड इन द 7th प्लेस इन द मेंस 25 मीटर रैपिड पिस्टल फाइनल। अनीश शॉट अनदर 4x5 टू फिनिश विद 11 हिट्स फ्रॉम 15 शॉट्स, ऑल्दो दैट स्कोर वाज टाइड फॉर द 3rd बेस्ट एट द स्टेज, हिज लोअर क्वालिफिकेशन स्कोर मेंट ही लॉस्ट द टाई ब्रेक एंड वाज रैंक 7th। विद दिस, इंडियाज कैंपेन इन शूटिंग also comes to an end and India finished with a total of 15 medals in shooting, 3 gold, 8 silver, 4 bronze.
2: लेकिन निशाना साधने के एक और खेल तीरंदाजी में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार अच्छा है और जारी है वो प्रदर्शन। कल 3 गोल्ड मेडल जीते थे, आज एक ब्रॉन्ज मेडल आया है और गणेश ने ये ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। 15 में से 14 निशाने उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में परफेक्ट 10 के साधे और गणेश मणिरत्नम ने यह मुकाबला 149-144 के बेहद आसान अंतर से जीत लिया और इस मुकाबले को जीतकर उन्होंने एक और मेडल भारत के लिए पक्का कर दिया है। तो इस तरह से तीरंदाजी में लगातार अच्छी खबर आ रही है और स्क्वाश से भी अच्छी खबर है, जहां भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है। हालांकि सेमीफाइनल में भारतीय टीम को उम्मीदों के विपरीत 1-2 से हार मिली हांगकांग के खिलाफ। पहला मैच अनाहत सिंह ने चान सिन युग के खिलाफ 2-3 से गंवाया। स्कोर 11-9, 11-8, 6-11, 11-13, 10-12 रहा। तन्वी खन्ना ने वर्ल्ड नंबर 33 ली का यी को 3-1 से हराकर टीम को वापसी कराई। तन्वी ने मैच को आसानी से जीता, लेकिन निर्णायक मैच में अनुभवी जोशना चिनप्पा होजे लेक से हार गई और इस तरह से भारत को कांस्य से संतोष करना पड़ा।
1: जी एंड अ क्विक रैप अप ऑन द मेडल टेबल आल्सो एज टू हाउ इंडिया स्टैंड्स इन द मेडल टैली। वी विल नाउ टेल यू दैट इंडिया इज प्रेजेंटली प्लेस्ड एट द 8th पोजीशन विद द टोटल ऑफ 62 मेडल्स, जिसमें 10 गोल्ड है, 21 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज आ चुके हैं। जिसमें आपको बता दें आर्चरी की दुनिया से अभी तक 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज आया, एथलेटिक्स में 1 गोल्ड 9 सिल्वर 14 ब्रॉन्ज, बैडमिंटन में 1 ब्रॉन्ज, बॉक्सिंग में 3 ब्रॉन्ज मेडल्स, क्रिकेट में 1 गोल्ड आया है, कबड्डी में 2 गोल्ड आ चुके हैं, कुराश में 1 ब्रॉन्ज आया है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में 1 ब्रॉन्ज आया है, रोइंग में 1 ब्रॉन्ज आया है, शूटिंग में 3 गोल्ड 8 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज, सॉफ्ट टेनिस में 1 ब्रॉन्ज।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। ये गीत भारतीय सेना को समर्पित।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: फिल्म संगीत में सुनते हैं अगला गाना फिल्म दिलवाले से, आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की है, शब्दों में पिरोया है समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

आइए सुनते हैं फिल्म साजन की बाहों में से ये गाना। आवाजें आशा भोसले और कुमार सानू की है। समीर ने इस गीत को लिखा। संगीत पर किया नदीम श्रवण ने।

आइए सुनते हैं अभिमान से, फिल्म से ये गाना, आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी के, संगीत पर क्या एस टी परवन ने।

अभी आप लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में सुन रहे थे फिल्म अभिमान से ये गाना। इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत पर किया था एसटी परमन ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.5 पर। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जन सेवा के लिए प्रेरित हों।
1: हम ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवो भव है और नागरिकों की सेवा करना सबसे जरूरी है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सशस्त्र बलों के बीच आपसी तालमेल और एकीकरण पर बहुत जोर दे रही है। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर श्री सिंह ने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत कर दिया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर और कुशल हो जाएगा। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने का आग्रह किया।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
0: दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। भारत जापान एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराया। फाइनल शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। एशियाई खेल 2026 में भारत ने नौकायन के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने पुरुषों के स्किफ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। ग्रीको रोमन पहलवान नितेश ने आज मंगोलिया के गंखू यांग गनबातार को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम को सेमीफाइनल में कांस्य पदक मिला। भारत के कुल पदकों की संख्या 62 हो गई है, जिसमें 10 स्वर्ण, 22 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता। गणेश ने कांस्य पदक के प्लेऑफ में वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149-144 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: संकलन भी जारी हुआ है.
1: Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said UPSC has achieved several milestones and added many new dimensions during the last 12 years. Chairman UPSC Dr. Ajay Kumar said, since independence, generations of the nation's youths have come to the Commission's doorstep with dreams of serving the country, and UPSC has ensured that they are judged solely on the touchstone of merit. The program marks the culmination of year-long celebrations that commenced on the 1st of October last year, commemorating 100 years since the establishment of the UPSC in 1926. On the occasion, Prime Minister Modi released a UPSC centenary commemorative coin, a commemorative stamp, and a book titled 100 Landmark Judgments Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India. Prime Minister Modi has said safeguarding forests and wildlife is essential for maintaining nature's balance and securing a valuable legacy for future generations. In his message on the occasion of Wildlife Week 2026, Mr. Modi urged citizens to contribute towards protecting wildlife and their habitat. Prime Minister Modi highlighted India's achievements in wildlife conservation over the past decade, citing the success of Project Cheetah. He also highlighted India's role in promoting global cooperation for big cat conservation through the International Big Cat Alliance. India has cautioned against treating legitimate national measures to protect food security as the weaponization of food. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal made the distinction during a session of the G20 Trade Ministers meeting in Milwaukee, US. Goyal highlighted that the shared objective must be to ensure that food remains a source of security, stability and cooperation. The minister also reviewed progress towards the signing and entry into force of the Inter-European Union Free Trade Agreement. He held talks with the European Commissioner for Trade and Economic Security, Maro Sefcovic, on the sidelines of the G20 Trade Ministers meeting. The two sides also exchanged views on the India-EU Trade and Technology Council, reform of the World Trade Organization, and shared priorities at the G20. Saudi authorities have arrested an Omani co-pilot after he stabbed the captain and attempted to crash a Fly Dubai flight traveling from Dubai to Tel Aviv in Israel. The Omani co-pilot stabbed the captain and caused the aircraft to plunge roughly 17,400 feet in under 2 minutes yesterday. However, passengers and crew members, including off-duty personnel, breached the cockpit, subdued the attacker and helped stabilize the plane. The flight was diverted and landed safely at Tabuk Regional Airport in northwestern Saudi Arabia. Prime Minister Narendra Modi, U.S. President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hailed Captain Smith Machar. At the Asian Games in men's cricket, India trounced Sri Lanka by 124 runs to set up a high-voltage final against Pakistan. And with that, we end this news bulletin.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी. पहले मुख्य समाचार. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सभी विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय बैठक. पूर्व में लिए गए सरकारी निर्णयों के क्रियान्वयन की होगी समीक्षा. जीएसटी घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई. जमशेदपुर के स्क्रैप कारोबारी और उनके बेटे को किया गिरफ्तार. सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से किया इनकार. समय सीमा और संतुलित उपायों के साथ पटाखे जलाने की मिलेगी अनुमति. राज्य से अगले 2 से 3 दिनों में मॉनसून की होगी पूरी तरह विदाई. मौसम विभाग ने धीरे धीरे गुलाबी ठंड की दस्तक शुरू होने की जताई उम्मीद. और झारखंड की सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय महिला हॉकी टीम एशियाई खेलों के फाइनल में पहुंची. राज्य की 4 बेटियां दिखा रही हैं दम. और अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। उन्होंने कहा कि 100 वर्षों में तकनीक और पाठ्यक्रम बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर देश का भरोसा अटूट है। श्री मोदी ने ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जनसेवा के लिए प्रेरित हों।
0: हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
2: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में पूर्व में आयोजित बैठकों में लिए गए सरकारी निर्णयों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 734 करोड़ रुपए के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में जमशेदपुर के स्क्रैप कारोबारी ज्ञानचंद जायसवाल और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी ने इस सिलसिले में जमशेदपुर, देवघर और कोलकाता के विभिन्न ठिकानों पर देर रात तक सघन छापेमारी की। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की खंडपीठ ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, इसलिए समय सीमा तय कर कुछ खास पटाखे जलाने की अनुमति दी जाएगी। जमशेदपुर स्थित सीएसआईआर राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला में 85वां सीएसआईआर स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सीएमडी अनुपम मिश्रा और एनएमएल निदेशक डॉ. संदीप घोष चौधरी ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक नवाचार पर विशेष जोर दिया। समारोह में मेधावी छात्रों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया।
3: CSIR जो 1942 में एस्टेब्लिश हुआ था, आज 2026 में हम लोग 85 जन्मदिन मना रहे हैं उसका। नॉट ओनली डेटा साइंस इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर डेटा, बट देश के लिए भी जो डेटा है, सोच लीजिए हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है उसके लिए भी हमारा दिल्ली में एक लैब है जो ये सब चीज को मरवा देते हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट का जो प्रायोरिटी है विकसित भारत 2047 उसको कैसे आगे लेके जा सकते हैं।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार समेत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने फ्लाई दुबई विमान के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित माछर की बहादुरी की सराहना की है। शीर्ष नेताओं ने कहा कि कैप्टन ने स्वयं घायल होने के बावजूद असाधारण सूझबूझ से सैकड़ों यात्रियों की जान बचाई और बड़ी त्रासदी को टाला। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से सरकार का यह समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज की विशेष श्रृंखला का विषय है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
4: राज्य के सुदूर ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरी बाजारों तक आयुष्मान भारत योजना ने झारखंड के स्वास्थ्य परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। रांची से शुरू हुई इस योजना ने प्रदेश के लाखों गरीब और वंचित परिवारों के इलाज और महंगी स्वास्थ्य सुविधाओं की चिंता को दूर किया है। देश के इन आम नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने के संकल्प पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
0: ये आयुष्मान कार्ड गरीब के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की गारंटी है और ये मोदी की गारंटी है। भाई और बहनों, देश भर में आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों में करीब 5 करोड़ गरीबों का इलाज हो चुका है। अगर आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं होता तो इन गरीबों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके बीमारी का उपचार करना पड़ता।
4: प्रधानमंत्री के इसी विजन को धरातल पर उतार रहा है राज्य का पलामू प्रमंडल, जहां विनायक चाइल्ड हॉस्पिटल में करीब 400 नवजात शिशुओं को क्रिटिकल केयर यूनिट में मुफ्त इलाज देकर नया जीवन दिया गया है। लाभुकों की प्रतिक्रिया है कि अब वे आर्थिक रूप से लाचार नहीं हैं और इस योजना के कारण उनके बच्चों को नई जिंदगी मिली है।
5: मेरा नाम मोहम्मद उमर अंसारी है। आयुष्मान का सिलसिला चल रहा है। मेरा 8 दिन का बच्चा है, वो सांस का प्रॉब्लम था, वो सही मेरा बच्चा है। ट्रीटमेंट यहाँ अच्छा है, व्यवस्था भी अच्छा है। हम लोग गरीब और मंडी से हैं, हम लोग की सरकार 5 हजार का दिया है आयुष्मान का, हम इलाज करा रहे हैं। कार्ड नहीं रहता तो फिर हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग कहाँ से इसका लाभ उठाने पाते। लाभ दे रहा है 5 लाख रुपए। नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हैं कि हमें 5 लाख सुविधा मिला है इलाज के लिए।
6: नाम है अरमान अली। हॉस्पिटल में हम लोग बच्चा का इलाज कराने आए हैं। आयुष्मान भारत से है इलाज हो रहा है। बच्चा का भी ट्रीटमेंट चल रहा है अच्छा से। सांस का दिक्कत था, गरीब के लिए कार्ड की सहारा।
4: पलामू के इन सफल उदाहरणों की तरह ही आज पूरे राज्य में हजारों परिवार स्वास्थ्य लाभ लेकर एक नया जीवन जी रहे हैं। जब जमीनी स्तर पर गरीब परिवार सुरक्षित होते हैं तो पूरे प्रदेश का विकास सुनिश्चित होता है। आकाशवाणी समाचार के लिए पलामू से जसप्रीत सिंह के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
2: पलामू टाइगर रिजर्व का बेतला नेशनल पार्क आज से पर्यटकों के लिए फिर खुल गया है। नए पर्यटन सत्र का उद्घाटन चतरा सांसद कालीचरण सिंह की मौजूदगी में बाघ दीदियों ने किया। इस बार पर्यटकों के लिए नया कमलदह सर्किट, ऑनलाइन सफारी बुकिंग और सुरक्षा के लिए क्विक QR असिस्टेंट जैसी नई सुविधाएं शुरू की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट का रुख देखा गया। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 60 अंक गिरकर 72,420 पर, जबकि निफ्टी 55 अंक की गिरावट के साथ 22,566 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,33,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। राज्य में इस वर्ष सामान्य बारिश दर्ज होने के बाद अब मॉनसून की विदाई का समय आ गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में राज्य से मॉनसून की पूरी तरह विदाई हो जाएगी। इसके साथ ही राज्य में धीरे धीरे गुलाबी ठंड की दस्तक शुरू होने की उम्मीद है।
7: झारखंड के कुछ हिस्से से मॉनसून की विदाई हो सकती है, खासकर जो अगर हम लोग बात करें तो पश्चिमी भाग है झारखंड का, जहां से उम्मीद की जा रही है 2-3 दिन बाद जो स्थितियां बनेंगी जिससे मॉनसून की विदाई हो पाएगी। और अभी एक्चुअल जो रेनफॉल है वो 1,005.7 मिलीमीटर हुआ है, जबकि इस अवधि का जो सामान्य रेनफॉल था 1,022.9 मिलीमीटर है, और जो विचलन है डिपार्चर है -2% है।
2: झारखंड की सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय महिला हॉकी टीम एशियाई खेलों के फाइनल में पहुंच गई है। कल भारत ने दक्षिण कोरिया को 2-0 से हराया। टीम में झारखंड की निक्की प्रधान, दीपिका सोरेंग और ब्यूटी डुंगडुंग भी शामिल हैं। स्वर्ण पदक के लिए भारत और चीन के बीच यह महामुकाबला कल शाम 7 बजे खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सभी विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। पूर्व में लिए गए सरकारी निर्णयों के क्रियान्वयन की होगी समीक्षा। जीएसटी घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, जमशेदपुर के स्क्रैप कारोबारी और उनके बेटे को किया गिरफ्तार। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से किया इनकार। समय सीमा और संतुलित उपायों के साथ पटाखे जलाने की मिलेगी अनुमति। राज्य से अगले 2 से 3 दिनों में मॉनसून की होगी पूरी तरह विदाई। मौसम विभाग ने धीरे धीरे गुलाबी ठंड की दस्तक शुरू होने की जताई उम्मीद। और झारखंड की सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय महिला हॉकी टीम एशियाई खेलों के फाइनल में पहुंची। राज्य की 4 बेटियां दिखा रही हैं दम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.5 पर प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार हैं शोभा गुरुटो। इनसे सुनते हैं मिस्टर पहाड़ी में ठुमरी।

अनुरंजनी का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे एशियन गेम्स अपडेट्स के बाद। थोड़ी देर में आप सुनेंगे एशियन गेम्स अपडेट्स।

0: पार्थ वारिस मिस्टर एंड मिसेस 55 सीआईटी
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: नमस्कार, एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया के अपडेट्स के साथ मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र मणि राजेश और मेरे साथ हैं साक्षी मंडवाल। शुरुआत करते हैं हॉकी से, क्योंकि मुकाबला पुरुष वर्ग में अभी सेमीफाइनल का चल रहा है। भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हैं और जो अभी के हालात हैं, जो स्थिति है, उसमें भारतीय टीम 2-0 से आगे चल रही है और दोनों गोल भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किए हैं। पेनल्टी कॉर्नर पर 5वें और 13वें मिनट में उन्होंने ये गोल किए। हम आपको बताएं कि यहां जीतने वाली टीम न सिर्फ फाइनल में पहुंचेगी बल्कि स्वर्ण पदक जीतकर लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी करेगी। और हम आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि भारत ने पूल ए में अपने सभी 5 मैच जीते हैं। टीम ने इन मुकाबलों में 49 गोल किए और सिर्फ 4 गोल उसके खिलाफ हुए। भारत की ओर से दिलप्रीत सिंह 9 गोल के साथ टॉप स्कोरर हैं। कप्तान हरमनप्रीत सिंह आज के 2 गोल के साथ उनसे आगे जरूर निकल जाएंगे। 8 गोल अभिषेक ने भी किए हैं। भारत की टीम टूर्नामेंट में अब तक अजेय है। महिला वर्ग में भारतीय टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है जहां उसका मैच चीन से होना है। इस मैच की विजेता टीम को भी ओलंपिक में जगह मिले।

0: Gee, and a quick update from the world of cricket now. The big news that the Indian men's cricket team delivered today was to defeat Sri Lanka in the important semi-final clash, which has now put India in a very commanding and a good position of coming up face-to-face against Pakistan in the finals of the Asian Cup, Asian Games 2026. That is all scheduled to happen this Saturday. Well, just to give you a quick update on that, again, India delivered a phenomenal performance in the Asian Games against Sri Lanka, setting a challenging target of 170 runs. Sri Lanka struggled dramatically, getting bowled out for a mere 45 runs thanks to exceptional bowling by Jasprit Bumrah and Akshar Patel. Ishan Kishan's impressive innings of 80 not out underpinned the team's success. India are now geared up to come face to face against Pakistan for the coveted gold medal match, all set to happen this Saturday.
1: Sepak Takra mein men's quadrant event mein medal pakka ho gaya hai. Bharat ne aakhri group match mein Myanmar ko 2-1 se harakar semifinal mein jagah banayi. टीम इंडिया ने ग्रुप के तीनों मैच जीते और अजेय रहते हुए ग्रुप में टॉप किया।
0: जी, और स्क्वाश में को बता दें कि इंडियन मेंस स्क्वाश टीम आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर अ क्रूशियल सेमीफाइनल अगेंस्ट मलेशिया. अभय सिंह विल लीड इंडियाज चैलेंज इन द ओपनिंग मैच अगेंस्ट इयान यो. द मलेशियन हैड बीटन अभय सिंह अर्लियर 3-0 इन द मेंस इंडिविजुअल फाइनल अ कपल ऑफ डेज अगो. अभय के पास अब पूरा मौका है कि इस बार वो शुरुआत जीत के साथ करे अगेंस्ट हिज मलेशियन अपोनेंट, बिकॉज with this match and also in the overall scenario, India stands a chance to defeat Malaysia in the semi-finals in squash today and thereby also secure a medal.
1: और उधर तीरंदाजी में आज भारत ने चौथा मेडल जीता. कल के तीन गोल्ड के बाद आज गणेश मणिरत्नम ने कांस्य पदक अपने नाम किया. पुरुषों के कंपाउंड इंडिविजुअल के ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में उन्होंने वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149-144 के अंतर से हराया. यह एशियन गेम्स में 20 वर्षीय मणि का दूसरा मेडल है.
0: Right, and now let's also talk about how the day so far has been for India overall also in terms of the way. So taekwondo mein aapko bata de that India ka campaign in the women's individual Pumse event in taekwondo ended today as Rupa Bayer bowed out of the semi-final. She finished with 7.6100 points. That was not enough to finish amongst the 8 stars who qualified for the final.
1: शूटिंग में मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल फाइनल में भारत के अनीश भानवाला सातवें स्थान पर रहे. इसके साथ ही एशियन गेम्स में भारत का शूटिंग अभियान खत्म हो गया है. अनीश ने एक सीरीज में 5 में से 4 हिट किए. उनके कुल 15 शॉट में 11 हिट रहे. इस स्कोर के साथ वे उस समय तीसरे स्थान के लिए बराबरी पर थे. हालांकि टाई होने पर क्वालिफिकेशन का स्कोर देखा गया. क्वालिफिकेशन में अनीश का स्कोर कम होने के कारण वे टाई ब्रेकर में पीछे रह गए और सातवें स्थान पर रहे. इसके साथ 3 गोल्ड 8 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 15 पदक जीतकर भारत का शूटिंग अभियान खत्म हो गया. भारत ने पिछले एशियन गेम्स के मुकाबले 4 स्वर्ण समेत 7 कम पदक जीते.
0: जी, कयाक में आपको बता दें कि इंडिया शिखा चौहान फिनिश 7th इन द वुमेन्स कयाक सिंगल फाइनल आफ्टर क्लॉकिंग 193.31 सेकंड्स. शिखा वाज 7th अमंग द 8 फाइनलिस्ट इन द कनू स्लालोम इवेंट.
1: और कुश्ती से खबर यह है कि पुरुषों की ग्रीको रोमन शैली के 97 किलो वर्ग के फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए नितेश सिवाच का सामना जापान के नागा जातो युकी से होगा. इससे पहले नितेश ने सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज कर एशियन गेम्स में भारत के लिए कुश्ती में 1 पदक पक्का कर लिया.
0: Right, and with that we can also tell you that the way the Indians stand right now, we are standing on the 8th position in the medal table, and we are hoping that from here on the India's position on the medal table goes on to increase, but that will only be decided in the coming days and for the time to come. He is hoping that India is able to better that medal tally. So far we are sitting with a total of 61 medals, which includes 10 gold, 21 silver, 30 bronze, and that leaves India on the 8th position in the medal table. For now, this is me, Sakshi Mandwal, and Dharmendra saying goodbye to all our listeners. Lekin aap kahin mat jaiyega. Dopahar ke 3:30 baje mein ek baar fir se aapse karenge mulaqat with all the live updates of the ongoing Asian Games 2026. Thank you so much for tuning in. Goodbye.
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया.
3: अभी यहाँ पे 2026 की अपडेट सुन रहे थे.
4: आप सुन रहे थे एशियन गेम्स अपडेट्स. ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है. आइए सुनते हैं शोभा गोटू को अनुरंजनी में.

अभी आप शोभा गोटू से ठुमरी और दादरा सुन रहे थे। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। कलाकार हैं आशा भोसले। इनसे सुनते हैं चंद गजलें।

हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.5 पर। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार सुनेंगे।

0: and Justice Minister Arjun Ram Meghwal participated in the Swachhata Hi Seva campaign 2026 at Safdarjung Tomb in New Delhi. Addressing the gathering, Mr. Meghwal said cleanliness should not be limited to a one-day campaign but should become a daily responsibility. Union Jal Shakti Minister C.R. Patil participated in a Shram Dan activity at Kalindi Kunj Ghat in New Delhi. Talking to reporters, Mr. Patil said cleanliness and water conservation are inseparable and emphasized the need to keep rivers clean.
1: We cannot separate cleanliness from water. We also need to clean the rivers. If we keep treating rivers as a garbage bins and continue dumping waste into them, the river will never be clean and the adverse consequences will impact human life. Therefore, we need to become aware in order to keep the river clean.
0: This is Akashwani giving you the news.
2: Stay in the know wherever you are. Follow us on X and Threads at AIR News Alerts.
0: Welcome back to the Midday News. India has cautioned against treating legitimate national measures to protect food security as the weaponization of food. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal made the distinction during a session of the G20 Trade Ministers meeting in Milwaukee, the U.S. Goyal highlighted that the shared objective must be to ensure that food remains a source of security, stability and cooperation. The minister also reviewed progress towards the signing and entry into force of the Indo-European Union Free Trade Agreement. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues today. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Today in this special series, we bring you the story on how the completion of Bogibeel Bridge over River Brahmaputra in Upper Assam, connecting the northern bank with the south, has changed people's lives.
3: The inauguration of the Bogibeel Bridge in 2018 by Prime Minister Narendra Modi opened a new horizon of transportation in Assam. The bridge connects Dhemaji districts on the northern bank of Brahmaputra River with Dibrugarh on the southern bank. The Bogibeel Bridge has brought radical transformations to the socio-economic, industrial, public health and educational sphere of Upper Assam. Dibrugarh is a major city in Upper Assam and serves as the educational and medical hub for the region, including the neighboring state of Arunachal Pradesh. The 4.94-kilometer long double-decker rail-cum road bridge is recognized as the longest of its kind in India. Although its foundation was laid in 1997, constructions largely stagnated for years. Under the NDA government, work progressed rapidly, leading to the successful completion of the much-awaited project. While inaugurating the bridge in 2018, Mr. Modi termed it as a lifeline for the people of the region.
4: ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है।
3: Today, people from the northern bank of the region can reach Dibrugarh for medical emergencies, education and other needs in the matter of hours. Previously, a to-and-fro journey would take up to 2 days. With Harendra Nath Sharma from Dhemaji, Rakesh Tole, Akashwani News, Guwahati.
0: An important meeting is being held in New Delhi today under the chairmanship of Union Home Minister Amit Shah to resolve the long-pending Mahanadi water dispute between Chhattisgarh and Odisha. More from our correspondent.
5: The dispute over sharing of Mahanadi waters between Chhattisgarh and Odisha has remained unresolved for several years. Odisha had requested the central government in November 2016 to set up a tribunal to resolve the dispute. After talks failed to resolve the issue, the Mahanadi Water Disputes Tribunal was constituted in March 2018. Odisha says that water projects being built in the upper reaches of the Mahanadi in Chhattisgarh affect the flow of water to Odisha during the non-monsoon season. Chhattisgarh, on the other hand, has maintained that it needs to use its share of water for irrigation, industrial and domestic needs. Both states have given a written assurance to the Central Water Commission that any decision taken by the Commission in the larger interest of both states will be acceptable to them. Vikalp Shukla, Akashwani News, Raipur.
0: At least 9 civilians, including women and children, were killed and 11 others injured in Pakistani airstrikes on civilian homes in Afghanistan's Kunar and Helmand provinces. According to Taliban spokesperson Zabiullah Mujahid, the strikes also destroyed three residences in Sultan district of Kunar and Garmsir district of Helmand. Condemning the latest strikes as an act of aggression, Mujahid accused Pakistan of using attacks on Afghanistan to divert attention from domestic political and economic problems. At the Asian Games 2026, today India opened its sailing medal account as Manu Francis and Prince Kurisinkal Noble secured silver in the men's skiff competition today, finishing behind China after 9 races. Indian compound archer Ganesh Maniratnam Tirumuru produced a commanding performance to win the men's individual bronze medal. Ganesh, who was a part of the gold-winning men's team yesterday, defeated Vietnam's Hong Duc Thanh in the bronze medal playoff after bowling out of individual gold contention with a semi-final loss. In squash, India settled for a bronze medal after losing 1-2 to Hong Kong in the women's team semi-final. India were assured of a medal in the Asian Games SIPAC top row men's quadrant competition after the team entered the semi-finals with a 2-1 win over Myanmar. India's overall tally has reached 63, including 10 gold, 22 silver and 31 bronze. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's 21st century work culture rooted in pro-people, proactive and good governance addresses UPSC centenary celebrations in New Delhi. Government cuts sugar stock holding period of dealers to 15 days to check hoarding and other malpractices. Defence Minister Rajnath Singh emphasises integrated financial systems for defence management and resource utilisation. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal calls for food security and cooperation at G20 Trade Ministers meeting, reviews India-EU FTA progress. And in Asian Games 2026, India bags first sailing silver medal, taking overall tally to 63, including 10 gold. With that, we end the midday news.
6: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी सक्रिय और सुशासन की है उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में खाद्य सुरक्षा तथा सहयोग का आह्वान किया भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में 9 नागरिक मारे गए और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है
7: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो जो जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराए लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
7: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवो भव है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है, उसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक संभव बनाएंगे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से ही युवा देश सेवा करने के सपने लेकर संघ लोक सेवा आयोग के पास आते रहे हैं और यूपीएससी ने यह पक्का किया है कि उन्हें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही परखा जाए। उन्होंने बताया कि अभी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की औसत खुदरा कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट आई है। ये गिरावट सरकार द्वारा चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसकी सुचारू आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का असर दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी लागू की जानी चाहिए। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उन्हें आत्मसात करने तथा देश और दुनिया भर में बदलते मानकों के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया।
8: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरफ फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, ये तभी संभव है।
6: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के जल बंटवारे का विवाद पिछले कई वर्षों से लंबित है। ओडिशा ने नवंबर 2016 में केंद्र सरकार से विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की थी। बातचीत से समाधान नहीं निकलने के बाद मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ओडिशा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे जल संसाधन परियोजनाओं से गैर मानसूनी मौसम में उसके हिस्से में पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष मुख्य रूप से अपने हिस्से के जल के उपयोग और राज्य की सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बातचीत, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
6: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट

0: AIR News Hindi और Public पर @AIR News Alerts को फॉलो करें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि साझा मकसद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भोजन सुरक्षा स्थिरता और सहयोग का जरिया बना रहे। केंद्रीय मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारो सिफकोविच के साथ बातचीत की। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दुबई में कैप्टन स्मिथ मच्छार के परिवार से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजदूत ने सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
1: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। ये भी जांच की जाएगी कि घटना का संबंध किसी आतंकी गतिविधि से था या इसमें पहले से कोई योजना शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबिल पुल ने नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़कर लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाया है।
2: 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोगीबिल पुल के उद्घाटन ने असम में परिवहन के लिए एक नया क्षितिज खोल दिया। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। बोगीबिल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। डिब्रूगढ़ ऊपरी असम का एक प्रमुख शहर है और यह पूरे क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। 4.94 किलोमीटर लंबा यह डबल डेकर रेल कम रोड पुल भारत में अपने तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। हालांकि इसका आधारशिला 1997 में रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्षों तक काफी हद तक रुका रहा। बाद में एनडीए सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 2018 में पुल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने इसे उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा करार दिया था।
1: ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। भाई और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और बीच की दूरी सिमट गई है।
2: आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए कुछ ही घंटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। पहले आने जाने की इस यात्रा में दो दिन तक का समय लग जाता था। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। देश भर में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने बताया कि कल हुए हमलों में कुनार के सुल्तान जिले और हेलमंद के गर्मसे जिले में 3 मकान भी नष्ट हो गए। और अब जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन स्पर्धा में आज अपना पहला पदक जीता। जापान में पुरुषों की स्केफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता और इन खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत पदक तालिका में 62 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है, जिनमें 10 स्वर्ण, 21 रजत और 31 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों की चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 पर प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती। शुरुआत करते हैं भारतीय सेना को समर्पित इस गीत से।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: फौजी भाइयों आइए सुनते हैं फिल्म टैक्सी ड्राइवर से यह गीत। इस गीत को लिखा सबीर ने, संगीतबद्ध किया एसटी परवन ने, आवाज किशोर कुमार और साथियों की।
2: हम बन के जिंदगी के दिन गुजारते
3: हो,

pump.

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: फौजी भाइयों, आइए सुनते हैं शैलेंद्र का लिखा ये गाना फिल्म गाइड से. आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है. धुन बनाई है एसटी परमन ने.

0: फौजी भाइयों कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनते हैं फिल्म शर्मिली से। इस गीत को लिखा नीरज ने, संगीत पर किया एसटी बर्मन ने, आवाज किशोर कुमार की।
1: होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो रांची पर।

0: इसी गीत के साथ फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी आवश्यक सुधारों पर काम करना चाहिए। नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा प्रणाली को समय की निश्चितता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, क्योंकि देरी से युवाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यूपीएससी पर लोगों का भरोसा आज भी कायम है। धनबाद में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा ने सिविल कोर्ट परिसर से चलंत लोक अदालत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले दिन टीम बलियापुर की डोलाबर पंचायत पहुंची और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों तक निःशुल्क कानूनी सहायता पहुंचाना है। लोगों को सरकारी योजनाओं, कानूनी प्रावधानों और विवादों के वैकल्पिक समाधान की जानकारी भी दी जाएगी। धनबाद के पंपू तालाब में भारतीय जनता पार्टी के सेवा संकल्प अभियान के तहत विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। धनबाद विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने तालाब परिसर की सफाई की। विधायक राज सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है।
1: का अभी 17 सितंबर उस दिन से लेकर के 17 अक्टूबर तक एक महीना पूरी पार्टी सेवा संकल्प अभियान चला रही, और उसी के तहत आज हम लोगों ने यह जो पंपू तालाब है, जिसको हम लोको टैंक भी कहते हैं, छठ तालाब, बहुत बड़ा छठ तालाब है, तो इस तालाब की दुर्दशा को देखते हुए हम लोगों ने कहा कि आज इसका सफाई किया जाए। जैसे कल हम लोगों ने ठाना है कि कल अपने धनबाद में जो हमारे महापुरुषों की मूर्तियां हैं उनका सफाई करेंगे।
0: लोहरदगा के बख्शीडीपा मैदान में विकास भारती बिशनपुर की ओर से 40वीं कार्तिक राव साइकिल रेस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं को सामाजिक जागरूकता, नशे के खिलाफ एकजुटता और प्रकृति से जुड़ाव का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने युवाओं से लक्ष्य हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत करने और कार्तिक राव के सपनों को साकार करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग नगर निगम की ओर से स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर आयुक्त ओम प्रकाश गुप्ता और उप महापौर अविनाश कुमार यादव ने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस दौरान पोस्टर और जागरूकता सामग्री के माध्यम से साफ सफाई के महत्व की जानकारी दी गई। नगर आयुक्त ने कहा कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है।
2: स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम जो है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चल रहा है। आज 1 अक्टूबर को पूरे शहर में ओखनी तालाब, झील तालाब, हुरहुर तालाब सभी की सफाई मिशन मोड में किया जा रहा है। मैं सभी लोगों से भी अपील करूंगा कि जो आपके आसपास तालाब या जलाशय है उसको गंदा न करें, ड्रेन में कचरा न फेंकें।
0: सिमडेगा के कोलेबीरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एम्बुलेंस में छिपाकर ले जाया जा रहा नशीला पदार्थ बरामद किया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर रांची जा रहे थे। उनके पास से 27,000 रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पूर्वी सिंहभूम में अवैध बालू ढुलाई के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 7 हाईवा जब्त किया है। उपायुक्त राजीव रंजन के निर्देश पर खनन टास्क फोर्स ने धालभूमगढ़ क्षेत्र में देर रात जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान 7 वाहनों के चालक वैध सरकारी चालान प्रस्तुत नहीं कर सके। मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन में अपना पहला पदक जीता। पुरुषों की स्किफ स्पर्धा में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरीसिंकल नोबल ने रजत पदक हासिल किया। वहीं कंपाउंड तीरंदाजी के पुरुष व्यक्तिगत वर्ग में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने कांस्य पदक जीता। स्क्वॉश में भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। सेपक टकरा में भारत सेमीफाइनल में है। भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी ने। लिखते हैं,
2: रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
0: वाह क्या बात है, रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, लेकिन
2: रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुंदर विचार के लिए। तो आइए सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: आर्य नगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी लिखते हैं,
0: छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार भोजली हमें माटी की खुशबू, प्रकृति से प्रेम करना और अपनी लोक परंपराओं को सहेजना सिखाती है। भोजली की हरियाली और संस्कृति का मान, यही हमारी छत्तीसगढ़ी पहचान है।
2: गाँव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत अवाना जी लिखते हैं,
0: 25 अगस्त 2026 के कार्यक्रम में नागालैंड के लांगवा गाँव और कोन्याक जनजाति के बारे में दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक, रोचक और दिलचस्प लगी। विशेष रूप से भारत म्यांमार सीमा पर बसे इस अनोखे गांव की स्थिति को, कोन्याक जनजाति की संस्कृति के बारे में जानना बेहद रोचक लगा।
2: ये भारत की विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। अनोखे तथ्यों से परिचित करा रहा है। हमारा पूरा परिवार इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करता है और हर बार कुछ नया जानने की उत्सुकता बनी रहती है। इस शानदार और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए आप दोनों का हृदय से धन्यवाद और साधुवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखा है,
2: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, सादर नमस्कार। हमारी संस्कृति, संस्कार, त्योहार, जाति, बोली, रहन सहन, भाषा और इन्हीं में हमारी मातृभाषा हिंदी प्रेरक प्रसंग में हमने जंगल, शैम्पू, पजामा शब्दों की उत्पत्ति के बारे में सुना। इतनी रोचक जानकारी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ।
0: आपके संदेश के लिए अगला संदेश हमें मिला है श्रोताओं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा और संजय अंशु वर्मा। साथ ही हमें संदेश मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से विकास कुमार मौर्य जी का।
2: बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा।
0: आप सबके संदेशों के लिए श्रोताओं एक बार फिर से हमारा बहुत बहुत आभार। तो श्रोताओं, भारत के बहादुर बच्चों की श्रृंखला में आज एक बार फिर से चलते हैं, आइए भारत के खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की ओर।
2: मेघालय, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, झरने और नदियां प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं।
0: श्रोताओं, मेघालय यानी मेघों का घर।
2: जी,
0: यह राज्य भारी वर्षा के लिए जाना जाता है और जब भारी वर्षा होती है तो प्रकृति भी कभी कभी चुनौती बन जाती है, खासकर तब जब बारिश हो और नदियों का बहाव बहुत तेज हो जाए।
2: जी हाँ श्रोताओं, ऐसी ही एक चुनौती आ खड़ी हुई मेघालय के एक 15 वर्षीय बालक के सामने। उसका नाम है किसेन वानियांग।
0: किसेन वानियांग, एक ऐसा नाम जिसने अपनी बहादुरी से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। दिन था 25 मई 2024। मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले के माओ लांगवीर गांव में भारी बारिश हो रही थी।
2: बारिश के कारण गांव की पहाड़ी नदी में धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था।
0: पहाड़ी नदियों में श्रोताओं अचानक ही पानी इतना बढ़ जाता है कि संकट की स्थिति अक्सर उत्पन्न हो जाती है।
2: जी।
0: उस समय बालक किसेन नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। पानी बढ़ता देखकर उसने वहां से हटने का विचार किया, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ बच्चों की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ।
2: श्रोताओं कल्पना कीजिए, बारिश का मौसम, तेज बहती नदी और अचानक मदद के लिए बच्चों की चीख पुकार। किसेन ने देखा कि चार बच्चे जिनकी उम्र लगभग 9 से 12 वर्ष थी नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। ये वो क्षण था जब किसेन के सामने दो रास्ते थे, एक अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना और दूसरा संकट में फंसे बच्चों की सहायता करना।
0: और किसेन ने श्रोताओं दूसरा रास्ता चुना। नदी में उतरना स्वयं एक बहुत बड़ा जोखिम था।
2: जी।
0: फिर भी किसेन ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और बच्चों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया।
2: एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा
0: और अंततः चौथा बच्चा भी किसेन ने चारों बच्चों को पानी के तेज बहाव से खींचकर किनारे पर लगा दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने चार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
2: इतने में गांव के लोग भी वहां आ गए और सबने किसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। दूसरे दिन इस घटना की चर्चा संचार माध्यमों द्वारा पूरे देश भर में फैल गई।
0: किसेन की इस बहादुरी को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया
2: जी।
0: और फिर दिन आया 26 दिसंबर 2024 का, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के वीरता वर्ग में सम्मानित किया।
2: सोचिए श्रोताओं, केवल 15 वर्ष की उम्र और ऐसा साहस कि चार बच्चों का जीवन बच गया।
0: श्रोताओं, किसेन की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन साहस और समर्पण हो तो बहुत असंभव लगने वाला कार्य भी किया जा सकता है
2: जी।
0: यहाँ हम उमंग कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और सभी श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि
2: यदि कभी आपके सामने कोई व्यक्ति नदी, तालाब या किसी अन्य खतरनाक स्थान पर संकट में हो तो बिना सोचे समझे स्वयं खतरे में न कूदें।
0: बिल्कुल, तुरंत आसपास अपने बड़ों को बुलाएं, स्थानीय बचाव दल या आपातकालीन सेवाओं से सहायता लें, असुरक्षित तरीके से मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि बहादुरी का अर्थ केवल जोखिम उठाना नहीं है
2: बल्कि समझदारी के साथ साथ सही समय पर सही कदम उठाना ही बहादुरी है।
0: बहादुर बालक किसेन वानियांग ने चार बच्चों की जान बचाकर ये संदेश दिया कि मानवता की भावना किसी उम्र की मोहताज नहीं होती,
2: और सारी दुनिया के बच्चों के लिए उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। दूसरों की मदद कीजिए, संकट में धैर्य रखिए और हमेशा अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखिए।
0: तो श्रोताओ, आज की कहानी से हम तीन बातों को जरूर याद रखें
2: जी।
0: तो पहली बात,
2: संकट में घबराएं नहीं।
0: दूसरी बात,
2: जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करें।
0: और तीसरी बात,
2: साहस के साथ साथ समझदारी और सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
0: तो बहादुर बालक किसेन बानियांग को उमंग कार्यक्रम की ओर से सलाम
2: जी, और भारत के उन सभी बच्चों को भी सलाम जो कठिन परिस्थितियों में मानवता और साहस का परिचय देते हैं।
0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुनी किसेन बानियांग की कहानी
2: जी,
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से है। हमारा प्रश्न है, मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।

0: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता को इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि चींटी कितनी परिश्रमी और उद्यमी है। हमें अपने जीवन में चींटी से सीखने की आवश्यकता है।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम चीटी, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के पराक्रमी योद्धा मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन और युद्ध के मैदान में उनके असाधारण शौर्य के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया।
2: विद्यालय में प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की जा रही है।
3: मेरा देश महान भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पांचवी कक्षा की छात्रा मेघा ने।
4: बहुत ही बढ़िया बोला, बहुत ही बढ़िया
5: बोला।
6: अरे वाह मेघा, मजा आ गया। आओ देखिए क्या मिला है पुरस्कार में।
7: ना नहीं,
6: अरे
7: इसे तो मैं नंदिनी मैडम के सामने ही खोलूंगी। पता है इस भाषण प्रतियोगिता की तैयारी उन्होंने ही करवाई थी।
8: अरे मोहित तुम ही बोलो ना, मेघा तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, बोलो ना।
6: हाँ मेघा, दिखा देना नंदिनी मैडम को भी, पर हम भी तो देखें इसमें है क्या।
7: प्लीज
8: दिखा दो।
6: अरे चुप चुप, देखो मैडम आ रही हैं। चलो चलो सब क्लास में चलो, अगर देर हो गई तो मैडम फिर गुस्सा हो जाएंगी।
9: गुड मॉर्निंग मैडम।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, आज की भाषण प्रतियोगिता कैसी लगी?
10: बहुत अच्छी
11: मैडम, मेघा ने बहुत अच्छा बोला।
3: हाँ केतकी, मेघा इधर आओ।
12: जी मैडम।
3: शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा लगा तुम्हें मंच पर इतना अच्छा बोलते देखकर।
12: धन्यवाद मैडम।
3: क्या मिला पुरस्कार में?
12: जी
6: मैडम, आप ही कहते इंतजार कर रही थी।
3: अच्छा,
6: कह रही थी मैडम के सामने ही खोलूंगी।
3: मेघा दिखाओ तो अपना पुरस्कार।
12: लीजिए मैडम।
3: हाँ इसको खोलते हैं। अरे वाह, ये तो एक किताब है।
6: अरे किताब ही नहीं है।
3: हाँ शीर्षक है हमारे परमवीर चक्र विजेता। वाह
12: मैडम, किस विषय पर है ये किताब?
3: मेघा ये किताब हमारे देश के उन वीर सैनिकों के बारे में है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
6: सैनिकों के बारे में?
12: सैनिकों के बारे में है।
6: अच्छा अच्छा, अब्दुल हमीद के बारे में है। इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, वही है ना मैडम?
3: हाँ मोहित, पर अब्दुल हमीद के साथ साथ इसमें और भी वीर सैनिकों के बारे में लिखा है जिन्हें परमवीर चक्र से सुशोभित किया जा चुका है।
12: हाँ मैडम, मेरी कॉलोनी में एक लड़का रहता है। वो कहता है कि उसके दादाजी के एक दोस्त हैं, उन्हें भी परमवीर चक्र मिला था।
3: अच्छा।
12: उन्होंने भारत पाक युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे।
3: वाह,
11: क्या परमवीर चक्र उसी को मिलता है जिसने युद्ध में लड़ाई लड़ी हो?
3: हाँ केतकी, परमवीर चक्र उनको मिलता है जो युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति के समय अपनी आन बान जान को देश पर न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं।
12: बहादुर है हमारे सैनिक।
6: अरे वाह, इस किताब में तो बहुत सी वीरता की कहानियाँ पढ़ने को मिल सकती हैं। मेघा मुझे भी ये किताब पढ़ने के लिए दे देना प्लीज।
13: मुझे भी।
6: इसके बाद मैं। नहीं पहले मैंने कहा था, पहले मैं।
7: हाँ हाँ, हम सब पढ़ेंगे एक एक करके।
6: पर मेघा इस तरह तो काफी समय लग जाएगा।
3: मोहित एक मिनट, एक रास्ता है।
6: रास्ता है?
3: मेघा क्यों ना तुम इस किताब को पढ़कर हम सबको उन शूरवीर योद्धाओं के बारे में बताओ, कैसा रहेगा? अच्छा ना। अच्छा देखो, कल रविवार है, कोशिश करना कि पूरा दिन बैठकर ये किताब पढ़ सको।
12: जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
3: ठीक है, तो बच्चों सोमवार को नंदिनी मैडम की जगह मेघा मैडम से पढ़ेंगे।
12: जी मैडम।
10: गुड मॉर्निंग मैडम।
3: गुड मॉर्निंग। हाँ तो मेघा, आज तैयार हो सबको पढ़ाने के लिए?
12: जी मैडम।
3: अच्छा पहले ये बताओ कैसी लगी किताब?
12: मैडम बहुत ही अच्छी किताब है। उन बहादुर सैनिकों की वीरता का वर्णन पढ़कर ऐसा लगा कि मैं भी सेना में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करूं।
3: क्या बात है।
6: अच्छा मेघा ये परमवीर चक्र कब और किसको मिलता है?
12: बताती हूँ सुनो। परमवीर चक्र हमारे देश का सर्वोच्च वीरता पदक है। ये चक्र युद्ध में प्रदर्शित असाधारण वीरता और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ये पदक सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों तथा जवानों को प्रदान किया जाता है।
3: वाह। अच्छा मेघा क्या तुम बता सकती हो पहला परमवीर चक्र किसे और क्यों मिला था?
12: जी मैडम, पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था।
3: शाबाश।
12: उन्होंने 1947-48 में हुए भारत पाक युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था।
6: मेघा ऐसा क्या किया था उन्होंने?
12: हाँ, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। कहाँ से शुरू करूँ?
5: ओ मैडम जी।
3: जी मोहन भैया क्या बात है, आ जाइए।
5: मैडम जी आपसे कोई मिलने आए, कहते हैं आप ही ने बुलाया उनको।
3: हाँ। मोहन भैया आप उन्हें बिठाइए, मैं भी आती हूँ।
5: ठीक है जी।
3: बच्चों मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, शोर मत मचाना।
12: जी मैडम।
3: मेरा देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
6: मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि उन्हें परमवीर चक्र जैसा सम्मान मिला।
10: काश मुझे भी अपने देश की सेवा करने का मौका मिले, बहुत ही अफसरों का साथ हो और सामने दुश्मन। वाह
13: देखो नंदिनी मैडम के साथ कोई फौजी अफसर आ रहे हैं।
14: मोहित लगता है आज तुम्हें अफसर मिल ही जाएगा। काश मिल जाए।
3: ये है मेजर अशोक।
15: नमस्ते सर।
16: नमस्ते बच्चों।
3: ये भारतीय सेना में अफसर हैं। आजकल छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। क्यों मेजर? आज इन्हें मैंने खास तौर से तुम लोगों से मिलने के लिए बुलाया है। क्यों, ठीक किया ना मेघा?
12: जी मैडम।
16: भाई आप लोगों की क्लास तो बहुत अच्छी लग रही है। आपको देखकर लग रहा है कि आप सभी बहुत अनुशासन प्रिय हैं।
12: धन्यवाद सर।
14: धन्यवाद सर।
16: सबसे पहले तो मेघा मैं तुम्हें और तुम्हारी कक्षा को बधाई देना चाहूंगा। मैंने सुना है कि तुमने मंच पर बहुत अच्छा बोला।
12: धन्यवाद सर।
16: हाँ तो बताओ कि कहाँ से शुरू करें?
12: सर मेजर सोमनाथ शर्मा ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें परमवीर चक्र मिला?
16: बिल्कुल ठीक। बच्चों मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को डाढ़ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। मेजर सोमनाथ शर्मा एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे। ये बात सन 1947 की है जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था। बहुत ही भावुक और नाजुक समय था वो। बच्चों परिवार बिछड़ रहे थे, दोस्त बिछड़ रहे थे और सबसे बड़ा दुख था अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से बिछड़ने का।
3: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा मेजर।
16: कुछ रियासतें पाकिस्तान से जा मिली तो कुछ भारत से, और कुछ असमंजस में थे, यहां जाएं कि वहां जाएं। अभी तो सब एक ही था, एक हिंदुस्तान। क्या था बच्चों?
15: एक हिंदुस्तान।
16: उनमें से एक थे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। उन्होंने कुछ समय मांगा जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा और मत जानने के लिए। भारत को यह मंजूर था, पर पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर की जमीन को अपनी जमीन में मिलाने को आतुर था, उसे यह बात मंजूर नहीं थी। पाकिस्तान ने आक्रमण कर जम्मू कश्मीर को अपने वश में करने की ठान ली। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर हमला 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ। हमले के लिए 20,000 कबायलियों के लगभग 20 लश्करों का संगठन बनाया था पाकिस्तानी सैनिकों ने, और उन्हें काम सौंपा गया था जम्मू कश्मीर की जमीन पर कब्जा करने का। महाराजा हरि सिंह को यह नागवार गुजरा और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान के साथ अपनी रियासत के विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था और उसकी रक्षा करना भारतीय सेना का कर्तव्य। हमारी फौज ने जरा भी देर नहीं लगाई। हिंदुस्तानी फौज की टुकड़ियां एक एक कर जम्मू कश्मीर पहुंचनी शुरू हुई। ऐसी ही एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा।
17: मेजर सोमनाथ शर्मा, एक डॉक्टर की तो यही सलाह है कि आप आराम करें। आपके हाथ पर प्लास्टर बंधा है, इस हालत में श्रीनगर जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है।
16: सर, मेरी कंपनी श्रीनगर जा रही है और मेरा उनके साथ जाना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे मौके पर अपनी कंपनी का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं आपकी राय का सम्मान करता हूँ किंतु मुझे जाना ही होगा। जय जय। दुश्मन की संख्या लगभग 700 थी और हम 100, यानी हमारा एक सैनिक 7 हमलावरों से लड़ रहा था। मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए वो कठिन परीक्षा का समय था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक ओर तो अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे।
18: शाबाश शाबाश, एक एक को नहीं छोड़ेंगे, ये चाहे तादाद में ज्यादा है लेकिन हम इनसे कम नहीं। डटे रहो, फायर फायर।
16: और दूसरी ओर आला अफसरों को स्थिति की जानकारी देते रहे।
18: सर सर, दुश्मन हमसे तादाद में 7 गुना ज्यादा है लेकिन हमने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी है। हम यहाँ पे अगली सांस तक अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आप फौरन हवाई कवर भेजिए।
16: उन्हें बताया गया कि लड़ाकू विमानों को उनकी मदद के लिए भेजा जा रहा है।
18: सर, हम लड़ाकू विमानों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास एम्युनिशन खत्म होता जा रहा है लेकिन हम हौसले से दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। हम चार चार दुश्मनों को अकेले मार रहे हैं। ओवर एंड आउट।
16: मेजर शर्मा ने स्वयं हवाई हमले के लिए धरती पर पहचान फीतियां लगाकर टारगेट बनाया। शीघ्र ही 2 लड़ाकू विमान आए, हमला भी हुआ, पर दुश्मन संख्या में ज्यादा थे और इस हमले का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। मेजर शर्मा जानते थे कि दुश्मन का असली मकसद श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करना है। उन्होंने निश्चय किया कि जैसे तैसे वो दुश्मन को वहां रोके रखेंगे। वायरलेस पर मेजर शर्मा अभी अफसरों से बात कर ही रहे थे।
18: सर, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। हम दुश्मन की भारी तादाद के कारण घिर गए हैं, पर मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। सर, हम आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ते रहेंगे। फायर फायर। कोई ना बचने पाए।
16: तभी एक जोरदार धमाका हुआ। वायरलेस सेट ने भी उनका साथ छोड़ दिया, पर मेजर शर्मा बड़ी मुस्तैदी से एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर भागते रहे और जवानों को निर्देश देते रहे। उन्हें दुश्मन की गोलियों से बेखौफ एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक भागते देख भारतीय सैनिकों में भी खूब जोश भराया। उन्होंने सैनिकों को गोलियां भर भर कर मैगजीन दी जिससे दुश्मन पर किए जा रहे जवाबी फायर की गति धीमी न पड़े। मेजर शर्मा एक जगह मैगजीन में गोलियां भर ही रहे थे कि दुश्मन का एक बम उनके बगल में पड़े एम्यूनिशन के भंडार पर आ गिरा। और इस इस योद्धा ने वीर गति पाई।

0: लगभग 6 घंटे तक हमारे 100 सैनिकों ने 700 की संख्या वाले दुश्मन को रोके रखा। और बच्चों, उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे को दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचा लिया। मेजर शर्मा अंतिम सांस तक अपने जवानों का नेतृत्व करते रहे और इस तरह उन्होंने उत्कृष्ट वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें मरणोपरांत ये चक्र दिया गया था।
1: मेघा, मेघा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू?
0: मेघा, इस कहानी को सुनकर आंसू नहीं, जोश आना चाहिए। अपने देश के लिए कुछ करने का जोश। क्यों बच्चों?
2: यस सर, शाबाश।
1: हाँ तो बच्चों, ये थी मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता और बलिदान की कहानी।

0: ऐसी और भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे।
1: नंदिनी जी,
0: जी
1: मैं आपका और खासतौर से इन बच्चों का धन्यवाद करना चाहूंगा, इसलिए नहीं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ध्यान से सुना, बल्कि इसलिए कि इन बच्चों ने इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की।
0: जी
1: वीरों की कक्षा है और इनमें भी कहीं कहीं कोई परम वीर छिपा है, क्यों बच्चों, ठीक कहा ना?
2: यस सर।
1: अच्छा अब मैं चलता हूं।
0: जी
1: अच्छा बच्चों, जय हिंद
2: जय हिंद।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या,
1: प्रसून
0: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
1: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: अभी आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा।
3: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 14वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, व्यवस्था में बड़े बदलाव, कानून और संस्थान। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आशीष कुमार पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
4: लोकतंत्र में जनसेवा का अर्थ केवल शासन करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करना भी है जो नागरिकों के जीवन को सरल बनाए, आसान बनाए, आर्थिक विकास को गति दें, न्याय सुनिश्चित हो और संस्थानों को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाया जाए। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सार्वजनिक सेवा यात्रा शुरू करने से लेकर साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने तक और उसके बाद लगातार 12 सालों तक राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी निभा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। इस दौरान शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कानून और संस्थागत ढांचे में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव हुए। भारतीय न्याय संहिता, श्रम संहिताएं, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC, GST परिषद, रेरा, नीति आयोग, सहकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जन विश्वास अधिनियम, वाणिज्यिक न्यायालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जैसे कानूनों एवं संस्थानों ने देश की शासन व्यवस्था और आर्थिक ढांचे में नई भूमिकाएं निभाई हैं, और इन सब में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन और नेतृत्व का अहम योगदान रहा है। तो इन कानूनों में बदलाव से क्या व्यापक असर पड़ा है, आइए सुनते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट।
5: आपराधिक न्याय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के साथ आया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने आपराधिक कानूनों का स्थान लिया। ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए। नए प्रावधानों में अपराधों की बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संगठित अपराध और आतंकवाद जैसे मामलों के लिए प्रावधान किए गए हैं, और कुछ अपराधों में सामुदायिक सेवा का विकल्प भी रखा गया है। श्रम व्यवस्था में भी व्यापक बदलाव हुए हैं। 29 पुराने श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है। इनमें वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। ये संहिताएं नवंबर 2025 से लागू हैं। इनमें न्यूनतम वेतन, समय पर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को एक व्यापक ढांचे में रखा गया है। कर व्यवस्था में GST एक बड़ा संस्थागत बदलाव रहा। केंद्र और राज्यों के बीच कर संबंधी फैसलों के लिए GST परिषद को साझा मंच बनाया गया। रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए रेरा की व्यवस्था की गई। कारोबार और वित्तीय व्यवस्था में दिवाला समाधान के लिए IBC ने समयबद्ध प्रक्रिया उपलब्ध कराई। वहीं छोटे और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की दिशा में जन विश्वास कानून महत्वपूर्ण कदम रहा। कारोबारी विवादों में तेजी से समाधान के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों और मुकदमे से पहले मध्यस्थता की व्यवस्था को भी मजबूत किया गया। नीति निर्माण में भी संस्थागत बदलाव हुआ। वर्ष 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया जो केंद्र और राज्यों को नीतिगत और तकनीकी सलाह देने के साथ सहकारी संघवाद के लिए मंच उपलब्ध कराता है। सहकारिता क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के लिए प्रशासनिक और नीतिगत ढांचे को मजबूत करना तथा उनके आधुनिकीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आयोग पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की निगरानी करता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने चिकित्सा शिक्षा और नियमन के लिए नया संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराया है। इन सभी बदलावों का दायरा अलग अलग क्षेत्रों में है, लेकिन व्यापक उद्देश्य एक ही है, बदलती जरूरतों के अनुरूप कानूनों और संस्थानों को विकसित करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नागरिकों तथा कारोबार के लिए अधिक स्पष्ट और जवाबदेह व्यवस्था तैयार करना। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: इन सुधारों का उद्देश्य क्या रहा? इनसे आम नागरिक, श्रमिक, उद्यमी, निवेशक, किसान और विभिन्न सामाजिक वर्ग किस तरीके से सकारात्मक तरीके से प्रभावित हुए? क्या इन बदलावों ने भारत की संस्थागत क्षमता और कारोबारी माहौल को नया स्वरूप दिया? और क्या इनके क्रियान्वयन में अभी भी चुनौतियां बाकी हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम पेश कर रहे हैं जनसेवा से देश सेवा, और हमारे साथ मौजूद हैं दो महत्वपूर्ण मेहमान। प्रफुल्ल केतकर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका।
6: धन्यवाद।
4: और आशीष कुमार पांडे जी भी हमारे साथ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। आशीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
7: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक सेवा की शुरुआत से लेकर केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल तक शासन की प्राथमिकताओं और प्रशासनिक दृष्टिकोण में क्या कुछ बहुत प्रमुख बदलाव देखने को मिले और इन बदलावों के प्रमुख आयाम क्या हैं? इस चर्चा की शुरुआत हम केतकर जी आपके साथ करना चाह रहे हैं।
6: देखिए, शासन प्रशासन जो भी होता है उसको तो लोकाभिमुख होना ही पड़ता है और उसके आधार पर नीतियां भी बनती हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जब थे तो उस समय से एक विशेष रूप से ये दिखता है, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से वो आते थे उन्होंने उसको केवल लोकाभिमुख नहीं बनाया, बल्कि जो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थी उसको फेडरलाइज किया। मुझे ध्यान में है 2002 में 3 में जब पहली बार उन्होंने प्रयोग शुरू किया तो शासन आपके द्वार इस नाम से गुजरात में हर जिले में पूरा सेक्रेटरिएट जाता था, तो साल भर में ये राउंड पूरा होता था, तो ये अपने आप में एक अलग प्रयोग था। दूसरा, मैंने देखा कि सीएम के रूप में उनके कार्यालय में डैशबोर्ड, हर स्कीम का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, तो इसमें तरफ टेक्नोलॉजी के साथ उसका इंटीग्रेशन। मुझे लगता है कि जो किसी भी सुशासन के चार स्तंभ माने जाते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा होता है अकाउंटेबिलिटी, तीसरा होता है डिलीवरी और चौथा होता है जस्टिस, इन चारों को उन्होंने जिस तरीके से इंटीग्रेट किया पूरे ही शासन प्रणाली में और एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी को जो भी डिलीवर कर रहा है उसको उसके लिए अकाउंटेबल बनाया, क्योंकि नंबर रोज दिख रहा है, कोई भी सामान्य व्यक्ति भी आज देख सकता है कि पिछले 10-12 साल में भारत में कितने घरों तक बिजली पहुंची या हर घर जल मिशन में कितने लोगों को एक्चुअली टैप का पानी मिला। नहीं मिला है तो भाई आपका डेटा ये कह रहा है, आप ये ग्राउंड पर एज ए मीडिया में तो देख ही सकता हूं। फिर उसके कारण क्या है कि एक नैतिक दबाव उस ग्राउंड पर डिलीवरी करने वाले पर बनता है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अप्रोच का बदलाव है। तीसरा, इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है लेकिन महत्वपूर्ण है, कि इन सबको भारत की वास्तविकता के कुछ चीजें तो हमको अडॉप्ट करनी पड़ती है, चाहे वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट हो, चाहे इंटरनेशनल मानकों पर आधारित प्रोजेक्ट हो, लेकिन उसका इंडियनाइजेशन, भारत की वास्तविकता को, भारत के सांस्कृतिक सामाजिक धरातल को ध्यान में रखते हुए, और उसमें मैं फिर नीति आयोग को देखता हूं कि जो सेंट्रलाइज प्लानिंग कमीशन था वो नीति आयोग बनना या इंसॉल्वेंसी कोड के आधार पर, तो मुझे लगता है कि भारत की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, उसकी सांस्कृतिक रूट्स को बनाए रखते हुए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर फॉरेन स्कीम्स हो या टेक्नोलॉजी हो उनका एक इंटीग्रेशन करते हुए जो गवर्नेंस का एक मॉडल खड़ा रहा, वो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी एज अ पर्सोना का एक बहुत बड़ा योगदान है।
4: और यही गवर्नेंस का मॉडल जो है भारत को विकसित भारत 2047 की तरफ ले जाने में काफी

0: भी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अभी प्रफुल्ल साहब ने चार अनिवार्य अंग बताए और आखिरी उसका जो अंग बताया वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बताया, क्योंकि उसका कारण यह है कि अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो आपकी व्यवस्था को पूर्ण व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। हम गवर्नेंस की बात कर रहे थे, जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली तो उनका एक मोटो था, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। अब इसको किस तरीके से धरातल पर इम्प्लीमेंट किया जाए और उसका खासकर जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसी के साथ एक वास्तविकता का रिकॉग्निशन भी था कि जो हमारे दंड संहिता से रिलेटेड कानून थे वो सदियों पुराने हो चुके थे, क्या आने वाला भारत उन कानूनों के आधार पर आगे चल सकता है या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न था, यक्ष प्रश्न था। इन सारी चीजों को देखते हुए ही ये नए तीन कानून लाए और जो हमारी न्यायिक प्रणाली के तीन महत्वपूर्ण अंग थे, जैसा आपने कहा आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट, तीनों को चेंज किया है। अब आपका सवाल इस विषय को टच करता है कि क्या इससे परिवर्तन क्या आया है। अब देखिए, परिवर्तनों को अगर हम डिस्कस करेंगे तो शायद हो सकता है पूरा दिन निकल जाए। मैं कुछ ऐसे परिवर्तन बताता हूं जिसकी डायरेक्ट बेयरिंग है, जिसने कि समाज की सीढ़ी पर अंतिम स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी टच किया है। अब अगर आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो सबसे पहला आपका क्या कंसर्न होता है, पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट कैसे दिखाना है। देश की आज भी एक बहुत बड़ी जनता का वर्ग ऐसा है जिसको कि थानों में जाने में डर लगता है, पुलिस का नाम आते ही छोड़ो इसमें क्या पढ़ना है यार, जो भी हमारे साथ घटना घटित हो गई है अगर अवॉइड की जा सकती है अवॉइड की जा सकती है। लेकिन आज की डेट में जब जीरो एफआईआर जैसे प्रोविजंस लाए जा सकते हैं, आज की डेट में जहां डिजिटल माध्यम से आप पुलिस के पास कंप्लेंट कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा बैरियर जो था पुलिस और जनता के बीच में और जो एक हिचक थी उसको कहीं ना कहीं पाटने का प्रयास किया गया है। क्योंकि किसी भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का सबसे पहला अंग होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कैसे होंगी, तो मैं यहीं से शुरू करता हूं। अब एक बार एफआईआर रजिस्टर हो जाती है उसके बाद बहुत सारे चरण होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट फाइल होती है, ट्रायल होता है, जजमेंट्स आता है। इन कानूनों ने इस प्रक्रिया के हर एक चरण को कहीं ना कहीं टच किया है। अगर आप देखें इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स हैं, किस तरीके से आपको साक्ष्यों को कलेक्ट करना है, कई स्तरों पर वीडियोग्राफी को मैंडेटरी किया गया है, कई जगह फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी किया गया है, और आखिरी स्तर पर अगर हम जाकर कहें तो कहीं ना कहीं कितने समय में किसी जजमेंट को डिलीवर करना है, इवन कोर्ट्स के लिए भी एक गाइडलाइन बनाई गई है, एक रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि अगर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं तो आपको इतने दिनों के भीतर अपना जजमेंट पास करना है। तो इन तीनों कानूनों के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हर एक चरण को टच करने का प्रयास किया गया है और जिसके बहुत ही प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं।
1: जब आशीष जी ये कानून लाए गए थे तब एक बात हो रही थी कि पुलिस को थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्योंकि वो पुराने सिस्टम के आदि हो चुके हैं, तो एक उनकी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू की गई, शायद वो अभी भी चल रही है। साथ ही नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस अभियोजन, न्यायपालिका और फॉरेंसिक संस्थानों की क्षमता भी बढ़ानी थी। तो आज हम 2 साल बाद कहां पर खड़े हैं?
0: आपके पहले ही बिंदु से शुरू करते हैं। देखिए, इन कानूनों के पीछे उद्देश्य क्या था? जब ये कानून पुराने कानून थे उस समय देश में अंग्रेजों का शासन होता था, या एक सीआरपीसी थोड़ा बाद में भी आया, लेकिन जो उसकी मूल भावना थी वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल तरह से जुड़ी हुई थी। अब सरकार का उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से जो दंड पर आधारित कानून है, जो कहीं ना कहीं पनिशमेंट की बात करते हैं, उसको किसी तरीके से हम विक्टिम सेंट्रिक बना सकें, उसको किसी तरीके से रिफॉर्मेशन का एक एलिमेंट डाल सकें। अब अगर मंशा पुलिस की केवल इतनी हो कि इस व्यक्ति के ऊपर ये एलिगेशन है और थाना ही जब कोर्ट बन जाता है और वहां से ही दंड स्टार्ट हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं से वहां से निकालकर अगर कहीं रिफॉर्म करने की उस व्यक्ति को संभावना दिखाई पड़ रही है, तो कम्युनिटी सर्विस जैसे जो प्रोविजंस हैं उसको भी इन कानूनों में लाया गया है। और पुलिस की मानसिकता किस तरीके से चेंज हो, इसको लेकर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ही बीपीआरडी इंस्टीट्यूशन आता है और बहुत ही नेशन वाइड प्रोग्राम इसके लिए ऑर्गेनाइज कराए गए हैं। बहुत सारे सेशंस हुए हैं और कुछ सेशंस का पार्ट बनने का मुझको भी मौका मिला है, जहां पर पुलिस ऑफिसर्स को नए कानूनों के बारे में समझाया गया है। दूसरी चीज आपने कही महत्वपूर्ण बात कि क्योंकि इन कानूनों को, खासकर एविडेंस से रिलेटेड प्रोविजंस को सुधार करने के लिए फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन और इस तरीके की चीजें भी आई हैं, तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उस पर भी सतत रूप से काम हुआ है, ये हम

0: कल पर भी काम हुआ देख रहे हैं।
1: प्रफुल्ल जी, जो हम चर्चा कर रहे थे इन बदलावों की, तो आप तो जुड़े रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते रहे हैं। जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से विभिन्न कानूनों में छोटे अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधानों को कम करने और अनुपालन को और सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इसका आम नागरिक, खासकर छोटे कारोबारियों और उद्यमियों पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आप अपना अनुभव क्या कहता है?
2: देखिए, 1860 में ये सारे प्रावधान जब बने थे तो उसके पीछे सोच कॉलोनियल सोच थी। भारतीयों को दंडित करना, भारतीयों को हर चीज में फंसा के रखना, बहुत सारे कानून तो ऐसे थे, हजारों कानून जिनका उपयोग ही नहीं होता था। तो दंड देना है या न्याय देना है? दंडित करना है तो शासन की भूमिका बदल जाती है, न्याय देना है तो भूमिका बदल जाती है। तो ये केवल नाम का बदलाव नहीं है, सोच का बदलाव है। वही जनविश्वास में है। पहले ये होता था कि यदि स्पेशली टैक्सेशन रिलेटेड रूल्स में कि वो अधिकारी मान के चलता था कि इसने टैक्स चुराया तो जैसे मेरा पैसा चुराया है, तो उसके ऊपर मान ले किसी के ऊपर रेड होती है, किसी को नोटिस चली जाती है, तो वो चर्चा का विषय उसके मोहल्ले में बन जाता था। और फिर उस व्यक्ति की जो उसमें वास्तविक रूप में क्या निकलेगा नहीं निकलेगा बात की, तो उसका इन्वेस्टिगेशन फेसलेस हो गया है। तो अधिकारी को पता नहीं है मैं किसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, जिसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको पता नहीं है कि कौन अधिकारी है। तो फर्स्ट फेज में तो वो फेसलेस है। इसने क्या किया है, उसको नोटिस अभी भी जाएगी, लेकिन वो किसने भेजी है, कौन अधिकारी, इसके बारे में तो इंटरफेस इसमें जो ट्रांसपेरेंसी वाला और अकाउंटेबिलिटी वाला इशू है गवर्नेंस का, वो अपने आप ही एड्रेस होने लगा, क्योंकि ये मैकेनाइज हो गया। तो मान लो 500 रुपए की मेरे टैक्स कैलकुलेशन में मुझसे या मेरे सीए से कुछ गलती हो गई है तो उसका अभी भी मुझे आता है, आएगा, हजारों लोगों का आता है, लेकिन उसको इमीडिएट रिड्रेसल करने का उसमें उपाय भी दिया हुआ है, तो मैं उसको एड्रेस करूंगा तो अगले रिटर्न में मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन उसके कारण मुझे इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने हैं, या जीएसटी ने उसको और भी अलग कर दिया है क्योंकि शुरू के टेक्निकल ग्लिचेस थे, उसको मैंने भी रिपोर्ट किया बहुत बार। लेकिन क्या हुआ कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ टैक्सेस थे, उनका इंटीग्रेशन हो गया। तो स्टेट लेवल के सेल्स टैक्स से रिलेटेड हो या वैट से रिलेटेड टैक्सेस हो, उनका इंटीग्रेशन होने के कारण अब वही व्यापारी जो शुरू में इसके बारे में कतराता था, वो कहता है यार हर 3 महीने के बाद ये करना पड़ता है, लेकिन प्रोसेसेस बहुत आसान हो गए, हर बार हमको जो हमारा माल जा रहा है, क्योंकि हर स्टेट का टैक्सेशन का ये अलग होता था, सेल्स टैक्स के रूल्स अलग होते थे, तो उसके बारे में हमको ये नहीं करना पड़ता। दूसरी बात है कि एक बार हमने ये प्रोसेस कर दिया तो हमको हर बार किसी न किसी ऑफिसर के सामने जाकर नहीं बैठना पड़ता। तो ये इस प्रोसेस पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उस ये बिजनेस कर रहा है मतलब चोरी कर रहा है, ये जो मानसिकता हमारी सोशलिस्ट माइंडसेट ने बन गई थी, प्लानिंग कमीशन भी उसी का प्रतीक था
1: जी,
2: इसलिए वो नीति आयोग करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि इस सारी प्रोसेस ने सरकार की इस सारी व्यवस्था पर, टैक्स देने पर लोगों का विश्वास बढ़ाया, बिजनेसमैन को अपने जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसको एक सिंगल विंडो, सिंगल क्लिक, सिंगल वेबसाइट, इसके आधार पर मैनेज करने की व्यवस्था आई, और इसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंकिंग बहुत बड़ा इम्प्रूव हुआ,
1: बहुत बड़ा इम्प्रूव हुआ। और साथ में जो आप बता रहे हैं कि अधिकारियों का जो एक डर था, टैक्स अधिकारियों का, वो डर मन से समाप्त हुआ।
2: उसे एक शब्द प्रयोग होता था मोदी जी की गवर्नमेंट आने से पहले, मीडिया में भी हम उसको उपयोग करने लगे थे, टैक्स टेररिज्म
1: जी।
2: तो ये 1970 से एक शब्दावली रूढ़ हो गई थी, टैक्स टेररिज्म, कि टेररिज्म की तरह डर हो गया था। तो उससे निश्चित रूप से
1: इनकम टैक्स ऑफिस से किसी के घर एक चिट्ठी पहुंच जाए, उस दिन उस घर में खाना भी नहीं होता था, लोग सही ढंग से खा नहीं पाते डर के, ये देखा है। लेकिन आज जीवन में सुकून आया है, खास करके मध्यम छोटे कारोबारियों के बीच में। आर्थिक सुधार, श्रम और कारोबारी माहौल भी परिवर्तित हुआ है। 4 श्रम संहिताओं के जरिए 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित इंटीग्रेट करने का प्रयास किया गया। इनका उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल बनाना और श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों का विस्तार करना है। इन संहिताओं से संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेषकर गिग वर्कर्स जो हैं और प्रवासी मजदूरों को काफी लाभ मिला है। इस बारे में भी आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि वो क्या हुआ।
2: देखिए, अब जब 2025 में, क्योंकि 2016-17 के बाद ये 29 अलग अलग लेबर लॉज बने हुए थे, और ये समस्या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए भी थी क्योंकि उनको उसका कंप्लायंस करना था, दूसरी तरफ जो उसका जिसके लिए ये बनाए गए हैं उसके लिए भी ये 29 अलग अलग कानूनी प्रावधानों के आधार पर अपने अधिकारों के लिए लड़ना ये किसी भी व्यक्ति के लिए या इवन यूनियंस के लिए पॉसिबल नहीं था। अब ये जो चार कानून आए, फोर लेबर कोड्स, जिसमें एक तो वेजेस से रिलेटेड है, एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस से जुड़ा हुआ है, एक जो है वो सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, और चौथा जो है वो सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस से जुड़ा हुआ है। अब इन चारों कोड्स के आने के कारण क्या हुआ, इस पर एक लंबी चर्चा जब भारत में G20 आया था तो उस समय भी हुई थी। L20 के नाम से, लेबर 20 नाम से वहां पे एक फोरम बना था, और उस फोरम ने भी इन चार कोड्स की सराहना की कि इतना सिंप्लीफाइड और इतना वर्कर फ्रेंडली। तो हमने क्या किया था कि ये कानून बनाते हुए वर्कर्स के इंटरेस्ट के बारे में तो सोचते थे, लेकिन ये मानकर चल रहे थे कि बेसिकली इंडस्ट्री और वर्कर्स ये एक दूसरे के दुश्मन है। अब पहली बार एक कॉन्सेप्ट, उद्योग परिवार एज अ फैमिली, इंडस्ट्रियल यूनिट एज अ फैमिली, जिसमें सरकार, उद्योगपति और वहां पे काम करने वाले वर्कर्स, ये तीनों जो है एक परिवार है जो देश के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहा है। तो इन चार कोड्स ने सबसे बड़ी बात जो की है, तो एक तो सिंप्लीफिकेशन किया, दूसरी तरफ कंप्लायंसेस को स्ट्रीमलाइन किया। तो इंडस्ट्री के जो भी कंप्लायंसेस थे, जो आउटडेटेड प्रोविजंस थे वो बाहर हो गए। अब इतना ज्यादा मैकेनाइजेशन हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी बदल गई, तो वो जो पुराने इंडस्ट्रियल लॉस थे उसमें से तो कुछ तो एप्लीकेबल ही नहीं थे। लेकिन इसके साथ साथ इसने एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जिसमें वर्कर्स के राइट्स और वेलफेयर की प्रोटेक्ट हो, और दूसरी तरफ इंडस्ट्री को भी अपने उद्योगों को बढ़ाने में सहायता मिले।
1: ये जो चार लेबर कोड्स हैं आशीष जी, इसने भी सोच में बदलाव का काम किया है, जो आप भारतीय न्याय संहिता के संबंध में अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। आशीष कुमार पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट में आप एडवोकेट हैं, आपसे ये जानना है कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC, इसने कंपनियों के दिवालियापन और ऋण समाधान की प्रक्रिया के लिए एक बिल्कुल नया ढांचा पेश किया। इस कानून ने बैंकों की जो NPAs हैं, ऋण वसूली है, निवेशकों के विश्वास और कारोबारी अनुशासन को किस हद तक प्रभावित किया है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे।
3: इस पूरे कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कुछ कानूनी रूप से जो बदलाव हुए हैं, उसमें से एक वकील होने के नाते मैं जिस तरीके से देखता हूँ, उसमें IBC की आपने बात करी, ये बहुत ही जिसने व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन किया है, और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आप दो चीजों से जोड़ सकते हैं। प्रफुल्ल साहब ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करी, और दूसरा जो सरकार का एक मोटो रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। देखिए 2014 के पहले हो क्या रहा था, ऐसा नहीं है कि कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन जहां भी ऋण से रिलेटेड डिफॉल्ट्स होते थे, और बैंकों का उसमें बहुत सारा पैसा फंसा हुआ था, इंस्टीट्यूशंस का बहुत पैसा फंसा हुआ था, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रोथ को भी हैम्पर कर रहा था। अब उसके रिकवरी कैसे करी जाए, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल था, और उसके लिए बहुत सारे कानून थे, मल्टीपल प्रोसीडिंग थी, मल्टीपल फोरम्स थी। अब बैंकों को अपना पैसा पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर बहुत सारी फोरम नहीं निकल पाता था, तो एक जनरल टेंडेंसी बन जाती थी कि आप लोन लीजिए, डिफॉल्ट करिए, कानूनी प्रक्रिया में चीजों को डाल दीजिए। और चूंकि उस उद्यम का, उस कंपनी का, उस व्यवसायिक प्रतिष्ठान का कंट्रोल उसके प्रमोटर के पास ही रहता था, तो अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव होता था कि मैं जाकर बाद में वन टाइम सेटलमेंट टाइप की कोई एक चीज कर लूंगा और उससे मुनाफे के साथ निकल जाऊंगा, जो कि कहीं ना कहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा था। आईबीसी के आने के साथ क्या हुआ है, देखिए एक तो बहुत मल्टीपल कैटेगरी है क्रेडिटर्स की। आज की डेट में अगर कंपनी आपसे कुछ भी पैसा लेती है, सपोज करिए आप सर्विस प्रोवाइडर, मैं बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करता हूं, आपने और कंपनी ने आपको पेमेंट नहीं किया हुआ है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, आप उनको भी आईबीसी कोड के तहत बाध्य कर सकते हैं या उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर अगर पेमेंट नहीं होता है तो एक बेसिक मैकेनिज्म बनाई गई है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की, और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की एक पूरी संस्था खड़ी करी गई है। प्रमोटर्स के हाथ से कंट्रोल निकल जाता है उस कंपनी का, और उस कंपनी का कंट्रोल कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास में आ जाता है। तो प्रमोटर्स के सामने सबसे बड़ी एक चुनौती ये हो गई है कि अगर मैंने किसी भी ऋण का समयबद्ध तरीके से भुगतान नहीं किया तो मेरी कंपनी का कंट्रोल मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक डिटरेंस क्रिएट हो चुका है। फिर दूसरी सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इसमें यह है कि किसी भी कंपनी में अगर वो स्ट्रेस्ड कंपनी है और अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पा रही है तो पहला प्रयास ये होता है कि किसी तरीके से चीजों को रिजोल्व कर लिया जाए। अगर कंपनी ऑफ क्रेडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद उस कंपनी के फंक्शंस प्रॉपरली चल सकते हैं और उस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है तो किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे प्रतिष्ठान को उसको बाद में बेचा जा सकता है, एसेट्स को प्रिजर्व किया जा सकता है और जो भी क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा जिस हद तक भी संभव है वहां तक लौटाया जा सके। अल्टीमेटली जो उसका डिसोल्यूशन है कंपनी का, इंसॉल्वेंसी है, वो सबसे लास्ट स्टेप के रूप में आया गया है। तो इस पूरी व्यवस्था ने कई स्तरों पर जो समस्याएं थी उसका समाधान किया है। सबसे पहला डेटरेंस, अगर आपने कोई लोन लिया है आपको समयबद्ध तरीके से चुकाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कंपनी का कंट्रोल आपके हाथ से चला जाएगा। दूसरा, अगर कंट्रोल जाता है तो ऐसा नहीं है कंपनी की देखभाल नहीं होगी, एक प्रोफेशनल बॉडीज होगी जो कि खुद क्रेडिटर्स की है, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है उस कंपनी को चलाने में, वो पैसे की रिकवरी के लिए उस कंपनी को चलाने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज एक शेड्यूल्ड क्रेडिटर्स की है। अगर ये संभव नहीं हो पाता है तो लिक्विडेशन के बाद जो एसेट्स होंगी वो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है।
1: बिल्कुल, और साथ ही अगर जीएसटी की बात करें, जीएसटी ने भी कारोबारियों का जो जीवन है वो बहुत आसान कर दिया है। और साथ ही जीएसटी परिषद जो है ये सहकारी संघवाद का एक महत्वपूर्ण संस्थागत उदाहरण है, जहां केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक संबंधी निर्णय लेते हैं। जीएसटी ने देश के साझा बाजार, कर अनुपालन और व्यापारिक गतिविधियों को बेहद ही सकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है। आज कहां आप खड़ा पाते हैं जीएसटी पर, आप क्या कहना चाहेंगे?
3: अगर आज मुझको लगता है देश की अर्थव्यवस्था उन्नति कर रही है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा अहम योगदान जो जीएसटी रिजीम, न्यू जीएसटी रिजीम है, उसका रहा है। देखिए, जीएसटी रिजीम आया क्यों, जरूरत क्यों पड़ी हमको? इनडायरेक्ट टैक्सेशन के नाम पर हमने एक टैक्स टेररिज्म की बात करी थी। टैक्स टेररिज्म केवल डायरेक्ट टैक्सेस में नहीं होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी होता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जब टैक्स टेररिज्म की बात होती है तो उसकी कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो पूरी अर्थव्यवस्था पर उसके असर होते हैं। जो कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको कंसोलिडेट कर एक सेंट्रलाइज एक जीएसटी रिजीम हमने इंट्रोड्यूस किया। उसकी वजह से देखिए हुआ क्या, जो मल्टीपल टैक्सेस पे करने पड़ते थे छोटे छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बिजनेसेस तक को, वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम एक हमारे पास है। अब चूंकि देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे राज्य हैं और राज्यों के पास भी चूंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस कई सारे होते थे, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चीजों का मूवमेंट होता था गुड्स या सर्विसेज का, तो जो भौगोलिक बॉर्डर्स होती थी वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बॉर्डर्स बन जाती थी। और उसके वजह से आप देखते थे हर स्टेट बॉर्डर पर ट्रकों की एक लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना पड़ रहा है। जीएसटी के आने के बाद से पूरे देश को एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट के रूप में कन्वर्ट किया गया है, और इसके असर से ये हुआ है कि जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें मल्टीफोल्ड एक तरीके से इजाफा हुआ है, और इसका असर आज हमको आज की इकोनॉमी में दिखाई पड़ रहा है। आज जो अगर आप जीएसटी कलेक्शन को देखिए, जीएसटी कलेक्शन कई गुना बढ़ चुका है, और जीएसटी कलेक्शन के साथ साथ आप इसका एक अलाइड एक पार्ट इसका ये भी है कि इसने कहीं ना कहीं इकोनॉमी की फॉर्मलाइजेशन की तरफ भी गए हैं हम, क्योंकि ई इनवॉइसिंग जैसे बहुत सारे प्रोविजंस जीएसटी में आए हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर हम बात करते हैं तो जो छोटे दुकानदार हैं जो पहले शायद कैश में डील करते थे, एक लार्जर स्कीम के पार्ट में देखिए तो अब चूंकि वो इनवॉइसिंग के थ्रू काम हो रहा है तो इकोनॉमी का भी फॉर्मलाइजेशन हुआ।
1: बिल्कुल,
3: और इस पूरी व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसमें ऐड किया गया है। कॉपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, जैसा प्रफुल्ल साहब ने भी कहा कि पहले क्या व्यवस्थाएं जो हमारी पॉलिटी का स्ट्रक्चर था कि सेंटर पर स्कीम बनती थी और नीचे स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल दिया जाता था, लेकिन अब जीएसटी काउंसिल के थ्रू स्टेट्स और सेंटर साथ में बैठते हैं, खुद तय करते हैं किसी चीज पर क्या जीएसटी लगना है, वो किस लेव में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, और इससे कहीं ना कहीं कॉपरेटिव जो फेडरलिज्म की बात करते हैं वो ढांचा मजबूत हुआ है, जो संवैधानिक व्यवस्था थी वो मजबूत हुई है। जी
1: बिल्कुल, और प्रफुल्ल जी हम ये भी देखते हैं कि पहले कारोबारी कैश लेने में कोई हिचक नहीं रखते थे, बल्कि उनकी चेष्टा रहती थी, चाहते थे कि कैश मिल जाए। अब क्या है कि देखिए क्या सोच का बदलाव है जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, आज छोटे से छोटा कारोबारी बड़े से बड़ा कारोबारी कैश नहीं ले रहा है। अगर कैश आप देते भी हैं तो या तो वो बोलेगा कि नहीं जी खुले नहीं है, आप यूपीआई पेमेंट कर दीजिए या कार्ड से दे दीजिए। ये एक जो सोच का बदलाव हुआ है, ये और आगे कहां तक जाना है इस सोच को?
2: मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये 100% खत्म हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन ने तीन चीजें की। एक, सोशल इंक्लूजन। मजाक उड़ाया जा रहा था जब पहली बार भीम और यूपीआई की बात आ रही थी, आज ये चर्चा हो रही है कि 0.2 से 0.4% हो जाएगा तो कितने लोग इससे हटेंगे, और उसका असर जमीन पर नहीं हो रहा है क्योंकि अब लोगों को उसकी आदत भी पड़ गई और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता, तो जो हायर कैटेगरी वाले ट्रेड लेवल के पेमेंट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ चार्जेबल करना पड़ेगा, और वो भी क्रेडिट कार्ड वगैरह बाकी लोग यूज करते तो उसके चार्जेस है ही। तो सबसे पहला जो हुआ कि गांव का सामान्य आदमी भी जो छोटी सी दुकान रेडी पटरी पर काम कर अपना ये लगा रहा है वो भी इससे पेमेंट, तो उनका बैंकिंग में इंक्लूजन होना ये बहुत बड़ा बदलाव था। दूसरा फास्ट एंड एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन, मतलब आप एक्चुअल 221.39 रुपया है तो उतना ही पेमेंट आप कर सकते हो। तो जब वो ट्रेड के बड़े इसमें होता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये सब लोग 99 रुपीज 299 रुपीज क्यों छापते हैं, तो वो एक रुपया जो था वो बेसिकली वही था, वो कैश में हो ना हो लेकिन वो एडिशनल ही था, वो कभी भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता था। आज आपके पास वो ऑप्शन खुला है तो इसके कारण ट्रांजैक्शनल ट्रांसपेरेंसी आ गई है, एग्जैक्टनेस एक्यूरेटनेस आ गया है। तीसरा इसके कारण उसके लिए भी ये लगने लगा है कि यार फिर ये जब सब मेरा पूरे मेरे डैशबोर्ड मेरी कुंडली मेरी जन्म पत्रिका सब बनी हुई है, मैं कहीं से भी करूंगा तो वो दिखने ही वाला है, तो मैं फालतू चीजों में 2 पैसे के लिए मैं और अपने जनरेट क्यों पालू। तो ट्रेडर 1970 से जब शुरू हुआ तो लोगों के टैक्स चुराने की मानसिकता बढ़ गई क्योंकि लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक जमाना था जब इमरजेंसी के समय उसके आसपास 80-90% तक सारा कुल मिलाकर टैक्स देना पड़ता था, तो जब मैं ये सारी मेहनत कर रहा हूँ उसमें 80-90% सरकार को देने पड़ रहे तो मैं क्यों करूं, और उस पर से भी कोटा भी है परमिट भी है, तो रिलक्टेंस खत्म हो गया। जब डिलीवरी मिलने लगती है तो लोगों की टैक्स देने की मानसिकता बदल जाती है, तो उसके कारण टैक्स ब्रैकेट भी चेंज हो गया। तो मुझे लगता है ये तीनों तरीके के बदलाव उसके कारण
1: है। और साथ ही एक चलते चलते अब समय बहुत कम बचा है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम जिसे रेरा के नाम से हम जानते हैं, ये आने से भी घर खरीदने वालों का बड़ा फायदा हुआ है, लोगों में कॉन्फिडेंस।
2: नहीं, मुझे लगता है ये बिल्डर्स के लिए भी अच्छा हुआ है। कुल मिलाकर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए रेरा आना, क्योंकि किसको क्या जमीन एलोकेट हुई है, ज्यादातर होता क्या था इसमें, क्योंकि उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है तो वो आधी प्रोजेक्ट करता था, क्रेडिटर्स के रूप में उसके ऊपर ये प्रेशर बढ़ जाता था, उसके आए हुए एडवांस के पैसे वो दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देता था। और इसमें कहीं पे भी जिसको यूएस में 2008 में प्रसिद्ध रूप से कहा गया सब प्राइम क्राइसिस, तो सब प्राइम बेसिकली क्या था?
1: यही था,
2: तो क्रेडिट के ऊपर क्रेडिट लिया हुआ है तो उसका वो कहीं ना कहीं तो वो चेन ब्रेक होनी है, तो वो चेन ब्रेक होती थी और वो प्रोजेक्ट खटाई में पड़ जाता था। लेकिन जिसने उसमें घर बुक किया हुआ है वो सामान्य खरीददार, उसका क्या? अब उसके पास ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, तो रेरा एक ऐसी अथॉरिटी है जिसने लैंड अलॉटमेंट से लेकर फाइनल डिलीवरी तक उस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करने का एक डिजिटाइज मैकेनिज्म भी बनाया है, और इसमें कहीं पे कुछ डिलीवरी में गड़बड़ी होती है तो वो जो घर खरीदने वाले हैं उनके लिए उसका एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी दिया है। 2-3 प्रोजेक्ट आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर में ही, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बड़े बड़े बिल्डर्स के जो आधे अधूरे पड़े हुए थे वो दूसरे बिल्डर को हैंड ओवर करके कंप्लीशन करने के ऑर्डर्स हुए हैं। ये कितनी बड़ी राहत है जो सामान्य व्यक्ति जीवन भर की पूंजी इकट्ठा करके 40-50 लाख जो भी है उसको इकट्ठा करके कोई घर बुक कर लेता है, एडवांस पहला 10-20 लाख का कर देता है और उसके बाद उसको लगता है 5 साल हो गए यार घर ही नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग जो है वो भी उसके कारण बड़ा है,
1: और साथ ही टाइम लाइन आ जाने से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि तब तक तो हमारा घर मिल ही जाएगा। जन सेवा से देश सेवा, आज के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे व्यवस्था में बड़े बदलावों को लेकर, खासकर कानून और संस्थानों को लेकर। और आज की चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि किसी भी देश की प्रगति में कानूनों का आधुनिकीकरण, संस्थानों की मजबूती और प्रशासनिक सुधार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हमने शासन, अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था और संस्थागत बदलावों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की अपने 2 बेहद खास मेहमानों के साथ, प्रफुल्ल केतकर पॉलिटिकल एनालिस्ट और आशीष कुमार पांडे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 14वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, व्यवस्था में बड़े बदलाव, कानून और संस्थान। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आशीष कुमार पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
5: अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला देश सेवा से देश, जन सेवा से देश सेवा। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान जगत। वाचन एवं सहयोग वसंत कुमार, प्रस्तुति प्रभु शरण की।

0: नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह फिर से हम उपस्थित हैं ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करेंगे और क्या नई जानकारी देंगे इसके बारे में। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे बच्चों को मोबाइल की लत से हमें क्यों बचाना चाहिए इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं खान पान की चीजों में पोषक तत्व का ध्यान हमें कैसे रखना है और क्यों रखना है इसके बारे में। इसके बाद बारी होती है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं वैज्ञानिक CNR राव के बारे में। इसके बाद बारी होती है खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम जानकारी देंगे आपको माइक्रो ओवन के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या नई जानकारी आपको देने वाले हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं आज कि बच्चों को मोबाइल की लत से हमें क्यों बचाना है इसके बारे में। बच्चे जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल ढूंढते हैं और मोबाइल की लत जो है उनको इस तरह से लग चुकी है कि वो नाश्ता करने से लेकर पढ़ाई करने तक के बीच में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। और ये छोटा सा मोबाइल बच्चों को किस तरीके से अपनी लत में फंसा रहा है ये हमें सोचना होगा। और कई बार माता पिता भी मजबूरी में बच्चों को संभालने के लिए या फिर उन्हें शांत रखने के लिए, चुप करने के लिए मोबाइल का सहारा ले लेते हैं, जो कि काफी गलत और काफी बुरा भी साबित हो सकता है। बच्चा रो रहा है तो भी मोबाइल दे देते हैं, बच्चा खाना नहीं खा रहा तो मोबाइल पर उन्हें कार्टून दिखा देते हैं, बच्चा परेशान कर रहा है तो उसे शांत बिठाने के लिए मोबाइल में गेम लगाकर दे देते हैं। कुछ समय के लिए बच्चा शांत हो जाता है और माता पिता को भी थोड़ी सी राहत मिल जाती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या लंबे समय तक के लिए अच्छा साबित हो सकता है। हमें एक बात समझने की जरूरत है कि मोबाइल खुद दुश्मन नहीं है, बल्कि इसका गलत और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना परेशानी बन सकता है। बच्चों के लिए मोबाइल और डिजिटल तकनीक सीखने का माध्यम भी हो सकती है, लेकिन अगर स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ता जाए और बच्चा खेलना, पढ़ना, परिवार से बात करना बंद कर दे या फिर दूसरी गतिविधियां करना छोड़ दे तो सावधान होने की जरूरत है। मोबाइल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की नींद, शारीरिक गतिविधियां, पढ़ाई, एकाग्रता और सामाजिक व्यवहार पर काफी बुरा असर डालता है। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि बच्चा धीरे धीरे वास्तविक दुनिया की गतिविधियों से दूर होने लगता है और स्क्रीन की दुनिया में ज्यादा रुचि लेने लगता है। फिर माता पिता कहते हैं कि बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, लेकिन कभी कभी हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या हम बच्चे को पर्याप्त समय दे रहे हैं। अगर समय दे रहे हैं तो किस तरीके से दे रहे हैं और किस रूप में दे रहे हैं, ये भी ध्यान देने की बात है। एक बच्चे के हाथ में मोबाइल देने से आसान है उसके साथ 10 मिनट बैठकर बात करना, लेकिन बच्चे के साथ बैठना, उसकी बातें सुनना, उसके सवालों का जवाब देना, इन चीजों के लिए हमें अपना समय निकालना पड़ता है। इसलिए सबसे पहला उपाय ये है कि बच्चों को समय दीजिए, नहीं कि मोबाइल। घर में मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर कुछ आसान नियम भी अपना सकते हैं। खाना खाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। पढ़ाई के दौरान बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए उन्हें जागरूक कर मनोरंजन के लिए मोबाइल का इस्तेमाल समय के साथ तय करें। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि नियम केवल बच्चों के लिए नहीं हो। अगर माता पिता खुद हर समय फोन पर लगे हैं और बच्चे से कहेंगे कि तुम मोबाइल पर मत खेलो या मोबाइल मत चलाओ, तो बच्चा यही सोचेगा कि जब बड़े चला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। इसलिए माता पिता को भी खुद पर ध्यान देना होगा और बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनना होगा। तो मोबाइल को बच्चों से दूर क्यों रखना है इस पर हमने बातचीत की। तो अब बारी है भेंटवार्ता की, और भेंटवार्ता में आज हम बात करने वाले हैं खान पान की चीजों में पोषक तत्व का ध्यान हमें क्यों रखना है और कैसे रखना है इसके बारे में। तो आज इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ में है चीफ डाइटिशियन डॉक्टर विजय श्री प्रसाद, जो कि भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल रांची में कार्यरत हैं। सबसे पहले तो मैडम आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: तो आज हम लोग जिस विषय पर बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है मैम, वो बहुत जरूरी है। और शरीर हमारा जितना स्वस्थ रहेगा हम उतना अच्छा जीवन में आगे तरक्की कर सकते हैं और सेहतमंद बने रहेंगे। सेहत हमारी अच्छी रहे इसके लिए हम हर एक चीज करने के लिए हमेशा तैयार है। तो खान पान की चीजों को अगर हम देखें तो खान पान की चीजों में हमें कैसा रूटीन रखना चाहिए कि हमारा जो शरीर है वो बढ़िया रहे, स्वस्थ रहे और पोषण भी हमें पूरा अच्छा से मिल जाए।
1: देखिए, सबसे पहले ये बता रही हूँ कि हमारे देश में क्या पूरे झारखंड में हर जगह अभी हम देख रहे हैं कि हर इंसान डायबिटीज से पीड़ित हो रहा है, किसी को थायराइड हो रहा है, किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है। और पहले हम देखते थे कि एक उम्र होता था तो हम लोग समझते थे कि चलो भाई अब 50 के पार हो गए हैं तो ये सब बीमारियां हैं, घेर रही हैं। क्या है कि अभी उम्र का कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं रह गया, अभी किसी भी उम्र में ये सब बीमारियां लोगों को हो रही हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी जीवन शैली और हमारा भोजन का जो इनटेक होता है, जो हम खाते हैं वो, क्योंकि हम जैसा खाएंगे वैसा हम बनेंगे। तो अभी के समय में हम देख रहे हैं कि फास्ट फूड लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कर रहे हैं। मैं हॉस्पिटल में हूँ तो मैं देखती हूँ कम उम्र में ही लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर और स्टोन्स हो जा रहे हैं। तो ये सब जो है ये हमारा लाइफ स्टाइल जो हमारा गलत है उसके वजह से हो रहा है। पूरे साल हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं और इससे हमें कौन सा पोषण मिल रहा है, कौन सा न्यूट्रिएंट मिल रहा है। जैसे हमारे थाली में जो हम खाना लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, फाइबर, ये सब कुछ हमारा बैलेंस के रूप में होना चाहिए ताकि हम स्वस्थ जीवन जी सके। मैं अगर किसी को कहती हूँ कि थोड़ा आप एक्सरसाइज करो या घर का खाना खाओ, आज सबके पास है कि टाइम नहीं है मैडम, कहाँ टाइम ही फुर्सत नहीं है ये खाने का वो खाने का। लेकिन मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़े, महंगी दवाइयाँ ना खानी पड़े, इससे अच्छा है कि आप इसके पहले ही सतर्क हो जाएं और सही भोज्य पदार्थों का चयन करें और सही मात्रा में खाएं ताकि आप बीमार ना पड़े।
0: आपने सही भोजन लेने की बात की है और सही चीजों को खाने के लिए लोगों को जानकारी होनी बहुत
1: जी,
0: जरूरी
1: बिल्कुल।
0: तो अगर हम बात करें कि एक पूरे दिन का जो एक आम आदमी चाहे जैसा भी हो, उनकी रूटीन चाहे जैसे भी हो, तो सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक किस तरीके का भोजन होना चाहिए और कैसे लोगों को भोजन लेना चाहिए कि ना वो ज्यादा परेशान हो ना ही उनको किसी तरह का कोई कमी महसूस। चूंकि आप एक सीनियर डाइटिशियन के तौर पर काम भी कर रही हैं आप इस क्षेत्र में, तो आप एक अच्छा रूटीन कैसा हो ये बता सकती हैं।
1: बिल्कुल, सबसे पहले ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है कि आप रात भर जो फास्टिंग में रहते हैं उसको ब्रेक करना, ठीक है। आज के समय में हम देखते हैं कि बच्चों में भी, युवाओं में नाश्ता करने का कोई समय नहीं है, 11 बजे 12 बजे वो नाश्ता कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। आपको ब्रेकफास्ट जो है वो सुबह का 8 से 9 के बीच में आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप अंकुरित चना जो होता है वो आप घर में आराम से कर सकते हैं, चना को फुला करके कपड़े में बांध करके उसमें अंकुरित निकल जाता है, उसमें आपके पैसे भी नहीं खर्च होते हैं और अंकुरित होने के बाद वो मिनरल्स और विटामिन से भरपूर हो जाता है, प्रोटीन और फाइबर तो उसमें रहता ही है। तो ये आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। दूसरा है केला, आप ऐड कर सकते हैं, आप बॉयल अंडे ले सकते हैं अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो, और इसके अलावा सत्तू पी सकते हैं। अगर आप चना भी अंकुरित करके नहीं खा सकते हैं तो सुबह नाश्ता में आप कुछ ना कुछ खा करके ही निकलिए। और दूसरा है कि लंच का टाइम एक होता है, उसका भी एक टाइम होता है कि आप 1 से 2 के बीच में कुछ खाएं। जैसे कि ठीक है आप काम में बिजी हैं तो कुछ भी आप फ्रूट्स रख सकते हैं, लिक्विड्स रख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि आप जो बोलते हो कि नहीं टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये खुद को धोखा देना होता है असल में। अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप आगे चल के काम भी नहीं कर सकते हैं। और आज के डेट में हम देखते हैं कि जो जंक फूड से वो मैदा का बना हुआ होता है, तो हम पहले जो खाते थे मड़ुआ का रोटी वो इतना महंगा नहीं होता है, वो कैल्शियम से भरपूर होता है, तो मड़ुआ अपने खाने में ऐड करिए आप बजाय कि मैदे की चीजें। तो सिलेक्शन ऑफ फूड सही रखिए ताकि आप जो खा रहे हैं उसके लिए अवेयर रहे कि हमारे बॉडी के अंदर क्या जा रहा है। बहुत
0: खास करके अगर हम देखें तो अभी फास्ट फूड का जो ट्रेंड चल पड़ा है, लोग सुबह में तो नाश्ता जैसे तैसे कर लेते हैं, दोपहर में भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खा लेते हैं, लेकिन जब शाम का जो समय होता है उस समय लोग बाहर निकलते हैं और फास्ट फूड बहुत खुलकर खाते हैं, यहाँ तक कि बच्चों को भी लेकर के खिलाते हैं। तो फास्ट फूड खाना सेहत के लिए कितना फायदेमंद है या फिर वो खाना ही नहीं चाहिए?
1: फास्ट फूड, वो जो फास्ट होता है ना, वो उसको हम लोग जंक फूड कहते हैं। तो फास्ट फूड अगर आप खा रहे हैं वो हमारे शरीर में जंग लगाता है और कुछ नहीं। इससे अभी आप देख रहे रहे हैं कि कैंसर की जो बीमारियां हैं बहुत बढ़ रही हैं, किसी को पता भी नहीं चल रहा है, कम उम्र में लोगों को पता चल रहा है कि उसको कैंसर हो गया। अब वो कहते हैं कि पता नहीं कैसे हो गया, किसी को नहीं था, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप जो जंक फूड्स खा रहे हैं मुंह में आपको स्वाद लग रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, केमिकल्स डले हुए रहते हैं जो कि आपको मुंह में केवल स्वाद देते हैं, हमें उससे न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ कैलोरी मिलती है और ट्रांस फैट मिलता है जो कि हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं होता है, हमारे लीवर के लिए भी अच्छा नहीं होता है, हमारे किडनी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। और कोल्ड ड्रिंक साथ में लेते हैं वो हमारा आज के डेट में देखेंगे तो वो स्टोन बनने का एक बहुत बड़ा कारण है।
0: ये जो बीमारियां इनको बढ़ाने में फास्ट फूड का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, एक बात यहाँ पर समझने की है, जैसे आमतौर पर क्या है कि जो दफ्तर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, वो निकल जा रहे हैं अपने घर से नाश्ता करके या जैसे भी, लेकिन खास करके अगर हम बात करें महिलाओं के बारे में तो वो सुबह से लेकर के करीबन 11 बजे तक उनका जो काम करने का जो टाइम होता है वो काफी बिजी होता है।
1: बिल्कुल।
0: और उस टाइम के ड्यूरेशन में वो कुछ खा नहीं पाती है, ना ही ठीक से वो नाश्ता कर पाती है। तो ऐसी महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों जरूरी है सुबह सुबह उनको अपने ऊपर ध्यान देना?
1: हाँ, ये ऐसी जो महिलाएं हैं हमारे हॉस्पिटल में भी आती हैं और इनको सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक का इशू रहता है, गैस बन रहा है। तो मैं पूछती हूँ कि गैस क्यों बनता है? तो नहीं, कुछ भी खाती हूँ तो गैस बनता है। बोले आपका ब्रेकफास्ट का टाइम सबसे पहला मेरा सवाल यही रहता है उनसे। तो वो खाते हैं सारा काम करके, सबको घर में जितनी भी है सबको खाना खिलाने के बाद, नाश्ता करवाने के बाद, पूजा करने के बाद, तब वो ब्रेकफास्ट करती हैं 12 बजे। और ये रूटीन उनका लगभग 10 साल से चलता आ रहा होता है। ऐसे गाँव के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप अगर खुद को स्वस्थ नहीं रखेंगी तो आप दूसरे को भी स्वस्थ नहीं रख पाएंगी। तो इसमें आपको थोड़ा सा स्वार्थी बनने की जरूरत है और ये बहुत ही ज्यादा जरूरत है क्योंकि आपको इसके लिए जागरूक होना चाहिए। मैं भी एक महिला हूँ और मैं कुछ ना कुछ खाकर निकलती हूँ, या फिर आप उसके लिए स्प्राउट खाकर निकलिए या सत्तू पी करके निकलिए, फ्रूट खाकर के निकलिए, लेकिन भगवान भी उतने ही कहते हैं कि आप उतने ही पूजा करिए जितने से आप स्वस्थ रहते हैं। तो मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगी कि ज्यादा आगे चल करके आपको दवाइयां ना खानी पड़े इसके लिए आप नाश्ता 9 से 10 के बीच में बिल्कुल जो भी आप खाना चाहती हैं वो आप खाइए, भूखे मत रहिए।
0: सभी को पता है कि इन सभी चीजों से नुकसान होता है और फ्रूट्स खा रहे हैं या फिर अच्छा डाइट ले रहे हैं तो हमें फायदा होगा, लेकिन बावजूद उसके लोग इन चीजों को नहीं अपनाते। अब अगर बात करें कि लोग चाहते हैं कि एक अच्छा जीवन जिए, लंबी उम्र हो, हम दिखे भी अच्छा, हमारा शरीर भी अच्छा रहे और रूटीन को फॉलो नहीं करते, तो आप एक अच्छा रूटीन कैसा होना चाहिए जो एक आम से आम व्यक्ति भी अपना सके और बहुत ज्यादा खर्च नहीं करते हुए भी वो खुद को फिट रख सके?
1: खाने में खाना तो सभी खाते हैं पेट भरने के लिए, लेकिन अगर हम लोकल फूड्स की बात करें, रांची में हमारे झारखंड में सहजन की जो पत्तियां मिलती हैं या उनका फल मिलता है या उसके फूल मिलते हैं, वो अपने आप में जो ये एक पेड़ है सहजन का, इसका बहुत सारे इसके नाम है, वो अपने आप में एक मेडिसिनल प्लांट कहलाता है। और इसके पत्ते में, इसके फल में, इसके फूल में इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब विटामिन सी, विटामिन ए, प्रोटीन, फाइबर, मतलब हर तरह का जितनी भी न्यूट्रिएंट्स है सब कुछ इसमें पाया जाता है। उसकी पत्तियां आप दाल में डाल सकते हैं, उसका सूप बना करके पी सकते हैं, ये बीपी, शुगर सब कुछ में ये फायदा करता है। जैसे किडनी पेशेंट है तो उनको हम लोग से मना करते हैं, अदरवाइज बाकी सारे लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा, ये सर्वगुण संपन्न एक भोजन है, ये हो सकता है। तो हम इसे अपने भोजन में हर दिन के भोजन में शामिल कर सकते हैं। और मड़वा की रोटी हो गई या रागी की रोटी हो गई, ये सब कैल्शियम से भरपूर होता है। इसमें रागी में जो है कैल्शियम इसमें 3 गुना अधिक होता है दूध से, तो इसे आप आराम से अपने भोजन में ऐड कर सकते हैं और ये बहुत ही सस्ता रहता है। को मतलब सस्ते में भी आप न्यूट्रिएंट्स काफी आप ले सकते हैं। हमारे यहाँ दही चूड़ा एक होता है, तो दही चूड़ा भी अपने आप में एक बहुत ही फुल डाइट होता है, ये इसमें भी भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अगर आपको कुछ और नहीं लगता है तो आप दही चूड़ा आराम से खा सकते हैं, इसमें ज्यादा आपको ना कुछ पकाना है या कुछ टाइम भी नहीं लगता। तो इन सब चीजों को आप अपने डाइट में ऐड करिए ताकि आप जो एक न्यूट्रिएंट्स होता है वो आपके शरीर को मिल सके और आप स्वस्थ रह सके।
0: यानी कि इन सब चीजों से सतर्क रहना।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सतर्क रहना।
0: आज हमने ढेर सारी जानकारी आपसे ली और खान पान की चीजों में पोषक तत्व का हमें ध्यान क्यों रखना है, कैसे रखना है, इस पर भी आपने जानकारी दी। और ये सारी चीजें जो है एक अच्छे जीवन को बनाने के लिए, एक अच्छा शरीर, एक अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है।
0: और खान पान की जो चीजें हैं वो हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा असर डालती हैं। तो लोग इन सभी चीजों पर ध्यान देंगे और एक अच्छी जीवन शैली को अपनाएंगे। तो आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, आपको भी धन्यवाद।
0: तो अभी हम सुन रहे थे भेंटवार्ता, खान पान की चीजों में पोषक तत्व का ध्यान कैसे रखना है और क्यों रखना है इसके बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में थी चीफ डाइटिशियन डॉक्टर विजय श्री प्रसाद। तो इस भेंटवार्ता के बाद क्यों ना आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना दिया जाए। तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत। इस गीत के बाद हम लौट कर आएंगे तो अपनी बातों को आगे जारी रखेंगे।

तो इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विज्ञान जगत कार्यक्रम में। और अब बारी है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की। आज हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिक CNR राव के बारे में। एक ऐसे वैज्ञानिक जिनका नाम भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जुड़ा है। आज हम बात कर रहे हैं महान वैज्ञानिक और रसायन शास्त्री प्रोफेसर चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव के बारे में, जिन्हें दुनिया CNR राव के नाम से जानती है। CNR राव का जन्म 30 जून 1934 को बेंगलुरु में हुआ। इनके पिता का नाम एच नागेश राव था, जो तत्कालीन मैसूर राज्य के शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। राव के जीवन में इनकी माँ का विशेष प्रभाव देखा जाता है। बचपन में इनकी माँ ने घर पर ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही वो समय था जब एक छोटे से बच्चे के भीतर पढ़ने, सीखने और सवाल पूछने की आदत विकसित हुई। यही आदत आगे चलकर इन्हें दुनिया के महान वैज्ञानिकों की कतार में ले गई। CNR राव ने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया। इन्होंने 1951 में मैसूर विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद 1953 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में MSc की डिग्री हासिल की। लेकिन इनकी वैज्ञानिक यात्रा यहीं रुकने वाली नहीं थी। इन्होंने उच्च शिक्षा और शोध के लिए अमेरिका का रुख किया, जहाँ पर 1958 में PhD की डिग्री प्राप्त की। ये वो दौर था जब विज्ञान की दुनिया तेजी से बदल रही थी और पदार्थों की संरचना और उनके गुणों को समझना वैज्ञानिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय बन चुका था। राव ने इसी क्षेत्र को अपने शोध का प्रमुख आधार बनाने का काम किया। PhD पूरी करने के बाद CNR राव भारत लौट गए और 1959 में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु में लेक्चरर के रूप में अपने अकादमिक जीवन की शुरुआत की। इसके बाद सन 1963 में ये IIT कानपुर से जुड़े। IIT कानपुर में इन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और शोध एवं शिक्षा के वातावरण को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन राव का लक्ष्य सिर्फ खुद शोध करना नहीं था, बल्कि ये चाहते थे कि भारत में ऐसी वैज्ञानिक संस्थाएं विकसित हो जहां युवा वैज्ञानिकों को विश्व स्तरीय शोध का अवसर मिले। इनके शोध का महत्व केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं था, बल्कि आधुनिक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो विज्ञान और नई तकनीकों के विकास में उन्नत पदार्थों का बहुत महत्व रहा। किसी वैज्ञानिक की महानता केवल उसके शोध पत्रों की संख्या से नहीं मापी जा सकती। कई बार महान वैज्ञानिक वो होता है जो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ जाए जिससे आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ सके। CNR राव ने भी यही किया। सन 1984 से सन 1994 तक भारतीय विज्ञान संस्थान के निदेशक भी रहे। इनका नेतृत्व भारतीय विज्ञान संस्थान के विकास के महत्वपूर्ण दौर से जुड़ा रहा। CNR राव केवल प्रयोगशाला तक सीमित वैज्ञानिक नहीं थे, इन्होंने विद्यार्थियों और युवाओं के बीच विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने को लेकर काफी महत्वपूर्ण काम भी किया और इसे काफी महत्वपूर्ण मानते भी थे। इन्होंने वैज्ञानिक विषयों पर अनेक पुस्तकें भी लिखी और हजारों शोध पत्र प्रकाशित किए। इनके नाम लगभग 1750 से अधिक शोध पत्र और लगभग 53 पुस्तकें दर्ज हैं। इन्हें दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट भी प्राप्त हुए हैं। जब किसी वैज्ञानिक का काम दुनिया में पहचान बनता है तो सम्मान अपने आप उसके पीछे चले आते हैं। प्रोफेसर CNR राव को देश विदेश में अनेक प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए। इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण, रॉयल मेडल और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले। और फिर सन 2013 में भारत सरकार ने CNR राव को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया। 4 फरवरी 2014 को राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इन्हें भारत रत्न देकर सम्मानित किया। यह सम्मान इनके वैज्ञानिक योगदान के साथ साथ भारतीय विज्ञान के विकास में इनकी दीर्घकालीन भूमिका की राष्ट्रीय मान्यता की थी। प्रोफेसर CNR राव का जीवन हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देता है कि बड़ा सपना देखने के लिए किसी बड़े शहर या बड़े परिवार में पैदा होना जरूरी नहीं है। जरूरी है जिज्ञासा, मेहनत, लगातार सीखने की इच्छा और अपने काम के प्रति ईमानदारी। तो प्रोफेसर CNR राव कौन थे, इन्होंने देश के लिए क्या किया और विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, ये हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खोज और आविष्कार में आज माइक्रो ओवन के बारे में। तो आज तकनीक का युग है और हम
किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले तकनीक का सहारा लेते हैं। तो माइक्रो ओवन भी एक ऐसा ही यंत्र है, एक ऐसा ही आविष्कार है जिसका इस्तेमाल हम चीजों को गर्म करने के लिए करते हैं, और ये माइक्रो ओवन हमें बहुत कम समय में चीजों को गर्म करके दे देता है। माइक्रो ओवन एक ऐसा विद्युत उपकरण है जिसमें माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल करके भोजन को गर्म किया जाता है। ये सामान्य गैस या इलेक्ट्रिक हीटर की तरह बाहर से बर्तन को गर्म करके खाना गर्म नहीं करता, बल्कि माइक्रोवेव ऊर्जा भोजन के अंदर मौजूद पानी के अणुओं को तेजी से गति करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस गति से ऊर्जा ऊष्मा में बदलती है और भोजन गर्म होने लगता है। यही वजह है कि माइक्रोवेव ओवन में खाना अपेक्षाकृत कम समय में गर्म किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि माइक्रोवेव आया कहाँ से? तो हम आपको बता दें कि माइक्रोवेव ओवन की कहानी काफी दिलचस्प। इसके पीछे एक वैज्ञानिक का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, जो कि पर्सी स्पेंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्पेंसर रडार तकनीक में इस्तेमाल होने वाली मैग्नेट्रॉन नामक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब पर काम कर रहे थे। एक दिन प्रयोग के दौरान उन्होंने महसूस किया कि उनकी जेब में रखा चॉकलेट पिघल गया। स्पेंसर ने अंदाजा लगाया कि इसका संबंध माइक्रोवेव ऊर्जा से हो सकता है। उन्होंने इसके बाद अलग अलग खाद्य पदार्थों पर प्रयोग करना शुरू किया। यहीं से इसकी तकनीक की जो दिशा है वो साफ हुई, जिसने आगे चलकर आधुनिक माइक्रोवेव ओवन के रूप में विकसित होकर आज दुनिया के सामने प्रचलन में है। विज्ञान की दुनिया में कई महत्वपूर्ण खोजें कभी कभी किसी छोटी सी घटना से नई दिशा पकड़ लेती हैं। यहाँ भी एक पिघलता हुआ चॉकलेट बार ही एक नए आविष्कार को जन्म देने का काम करता है। हालांकि शुरुआती माइक्रोवेव उपकरण आज के घरेलू माइक्रोवेव से काफी अलग थे, बहुत महंगे थे और बहुत भारी भी थे। समय के साथ तकनीक विकसित हुई और माइक्रोवेव ओवन धीरे धीरे घरों तक पहुंचने लगा। आज तो ये रसोई के आम उपकरणों में शामिल हो चुका है। तो आज हमने ढेर सारी जानकारी आपके साथ साझा की और ढेर सारी बातें भी आपसे की। तो हमारी स्टूडियो की घड़ी जो है वो अब आपसे विदा लेने का इशारा कर रही है, लेकिन जाने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जीवन में जिस भी चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो फोन हो या फिर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल कर रहे हो, तो पूरी सुरक्षा और संयम में रहकर इस्तेमाल करें, क्योंकि हर एक चीज का फायदा है तो उसका नुकसान भी है। और खुद को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें और हमेशा सेहतमंद बने रहें। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब आपसे लेते हैं विदा। अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त राधा। आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की कुछ जानकारियाँ इस प्रकार से है। अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम वोकल फॉर लोकल 4:35 में।

5 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मुख्य समाचार प्रादेशिक समाचार। 5:02 पर समय होगा कार्यक्रम युवाणी का। प्रस्तुतकरण होगी गौरव कुमार पांडे की।

5:30 पर समय होगा श्रमिक लोक का। 6 बजे आप सुन पाएंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 पर समय होगा कार्यक्रम किसान वाणी का। हमारी दुनिया का समय होगा 6:32 पर। चर्चा होगी छोटी छोटी बचत और बड़े फायदे। सूत्रधार होंगे जुगनी खलको और मनोज कुमार, और प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की।

7 बजे समय होगा प्रादेशिक समाचार का। 7:06 पर आप फिर से सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार। 7:11 पर कार्यक्रम होगा जिले में आज।

0: नमस्कार। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कामिनी। श्रोताओं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और सेवा व सुशासन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन ढाई दशकों की लंबी यात्रा में अगर किसी एक मंत्र ने देश के सुदूर गांवों, आदिवासियों और गरीब शिल्पकारों के जीवन की दिशा बदली है तो वो है वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत। आज का हमारा यह विशेष पैकेज केंद्रित है झारखंड की पावन धरती पर, वो धरती जहाँ की जादू पटिया पेंटिंग, डोकरा क्राफ्ट, मयूराक्षी सिल्क और खूंटी की दीदियों का मड़वा केक आज स्थानीय हाट बाजारों से निकलकर देश दुनिया के बड़े मॉल्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स तक पहुँच चुका है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संदेश जिसने देश के इस पारंपरिक हुनर की तकदीर बदल दी है।
1: आज 140 करोड़ देशवासियों का एक ही मंत्र होना चाहिए, समृद्ध भारत। तो कोटि कोटि लोगों के संकल्प से, पुरुषार्थ से, आत्मनिर्भर बनने से, वोकल फॉर लोकल की बात करने से, स्वदेशी का मंत्र को जापने से समृद्ध भारत भी बन सकता है। भारत हम सबका है। हम मिलकर के वोकल फॉर लोकल उस मंत्र को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएं।
2: साथियों, ये काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जब भी हमने संकल्प लिया है तब तब हमने करके दिखाया है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ खादी का। खादी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी थी, कोई पूछने वाला नहीं था। आपने जब मुझे सेवा का मौका दिया, मैंने देश को आह्वान किया, देते संकल्प लिया और इसका नतीजा भी दिखा। एक दशक में खादी की बिक्री करीब करीब 7 गुना बढ़ी।

0: है। दुमका के जगुडी और जबरदाहा गांव में सुबह से शाम तक गूंजती हथौड़ों की थाप इसका जीवंत उदाहरण है। कभी यहाँ के डोकरा शिल्पी सिर्फ स्थानीय साप्ताहिक हाट बाजारों तक सीमित थे, जहाँ उनके हुनर का सही मोल नहीं मिल पाता था। पर आज पीएम विश्वकर्मा योजना के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से इनकी कला सात समंदर पार तक पहुंच रही है। आइए सीधे सुनते हैं जगुडी गांव से डोकरा कलाकार मकबूल को, जिनकी जिंदगी में इस अभियान ने एक नया सवेरा लाया है।
1: जोहार, मेरा नाम मकबूल जादूपटिया, ग्राम जगुडी, जिला दुमका से हैं और हम लोग डोकरा का काम करते हैं। और ये काम जो है हम लोग का गुरु शिक्षा परंपरा है, जैसे कि मेरा पिताजी भी यही कर रहे थे, दादाजी भी यही कर रहे थे और अभी हम भी यही कर रहे हैं। और पहले तो हम लोग मेला वाला जाते थे तो उतना अच्छा हम लोग का सामान वामान बिक्री होता था। जब से हम लोग का मोदी सरकार ने वोकल फॉर लोकल का ये किया है, उससे हम लोग का और ज्यादा लाभ मिलता है।
0: मकबूल की तरह ही दुमका के अनगिनत शिल्पकारों की कहानी अब बदल चुकी है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जबरदाहा गांव के हरेज भी बताते हैं कि कैसे उनके पुरखों की इस अनमोल धरोहर को सरकार के प्रयासों से एक नया आसमान मिला है। आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षण ने ना सिर्फ उनकी मेहनत को कम किया है, बल्कि उनके उत्पादों में फिनिशिंग और आकर्षण को भी बढ़ाया है, जिससे अब बड़े खरीदार सीधे उनके गांव तक पहुंच रहे हैं।
1: हम शिकारीपाड़ा गांव के हैं, दुमका डिस्ट्रिक्ट। गांव का नाम है जबरदा। मैं डोकरा शिल्प आर्टिस्ट हूँ। पहले हम लोग का पाइपा बनाते थे, उसके बाद धीरे धीरे डिजाइनर कल्चर बढ़ाया। उसके बाद प्रधानमंत्री कोई पीएम विश्वकर्मा योजना का हम लोग का कुछ मिला टेनर ऐसा आता है डिजाइनर। जब से ये लाभ मिला मैंने लोकल या और इथेनॉल पर, इसमें हम लोग थोड़ा ज्यादा कुछ कर पाए हैं। कुछ पूंजी वूंजी भी पहले से आज इस बार अभी इस जमाने में अभी थोड़ा नया नया डिजाइन भी चल रहा है, इसी के लिए हम लोग आगे भी बढ़ पाए।
0: दुमका का यह सकारात्मक बदलाव सिर्फ डोकरा शिल्प तक ही सीमित नहीं है, संथाल परगना की लोक संस्कृति को समेटे जादू पटिया पेंटिंग को भी अब नया जीवन मिला है। इस पारंपरिक चित्रकला से जुड़ी कलाकार नीलम जैसी अनगिनत आदिवासी महिलाओं के कदम आज दीवारों पर नहीं बल्कि कैनवास, कपड़ों और कागजों पर अपनी कला उकेर कर उसे आत्मनिर्भर चलिए।
2: पेंटिंग की कलाकार हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि जादूपटिया पेंटिंग एक लुप्त होती चित्रकला थी, मैं वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। आज इसे जीआई टैग मिला है। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान का बड़ा योगदान है। आज इसकी वजह से हमारी पेंटिंग को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और बड़ा बाजार मिला है। इस प्रोत्साहन और सरकार के सहयोग का मुझे बड़ा लाभ मिला है। मैं जादूपटिया पेंटिंग की संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ इसके व्यापक बाजार का निर्माण करने और उसका लाभ लेने में सक्षम हुई हूँ।
0: कला और हुनर के इस सफर में दुमका के सिल्क उद्योग को कैसे भुलाया जा सकता है? तसर और कोकून उत्पादन के मामले में झारखंड का देश भर में डंका बजता है। इसी सिल्क उत्पादन के क्षेत्र में जिला प्रशासन के सहयोग से शुरू हुए मयूराक्षी सिल्क ब्रांड ने एक नई आर्थिक क्रांति ला दी है। इस पूरे बदलाव पर हस्तशिल्प विशेषज्ञ अमित सिंह और उद्योग विभाग के पूर्व उपनिदेशक सुधीर सिंह का कहना है कि वोकल फॉर लोकल ने केवल हुनर को बाजार नहीं दिया, बल्कि पूरे संथाल परगना के ग्रामीण और जनजातीय परिदृश्य का आर्थिक भूगोल बदल कर रख दिया है। अब बिचौलियों का दौर खत्म हो चुका है और सीधे शिल्पकारों के बैंक खातों तक समृद्धि पहुंच रही है।
3: संथाल परगना क्षेत्र में हस्तशिल्प और पारंपरिक कला हमारी सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ बड़ी संख्या में छोटे उद्यमी, कारीगर और शिल्पकार अपनी पारंपरिक कला और स्थानीय संसाधनों के आधार पर रोजगार और आजीविका से जुड़े हुए हैं। कुछ समय पहले बाजार और बड़े उत्पादों की प्रतिस्पर्धा के कारण इन छोटे शिल्पकारों और उद्यमियों के सामने काफी चुनौतियां थी, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के आह्वान से इस क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।
4: लोकल फॉर वोकल के क्षेत्र में संथाल परगना प्रमंडल बहुत आगे निकल चुका है। जिसमें दुमका जिला का कुछ अपना ही पहचान और महत्व है। बॉम्बो क्राफ्ट हो, जादू पटिया हो, आपका पत्थर उद्योग हो, द्वाकड़ा हो, इन

सारे चीजों के हस्तशिल्पी अब यहाँ पे उपलब्ध हैं और कार्य भी कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी उपलब्धि दुमका जिला का है कि पूरे देश का लगभग 70% तसर कोकून का उत्पादन दुमका में झारखंड प्रदेश करता है, जिसका 50% केवल दुमका जिला तसर कोकून करता है। अब ये पहले क्या था कि इसकी बाजार नहीं थी, उत्पादन होता था, बिक्री नहीं हो पाती थी, लेकिन अब लोकल फॉर वोकल में आज तसर के द्वारा वैल्यू एडिशन करते हुए मयूराक्षी स्थल एक ब्रांड बन चुका है, जो अपने राज्य और देश में इसको बहुत ज्यादा ऊपर तक ले जा चुका है।

0: श्रोताओं, दुमका के इन अद्भुत शिल्पों और कलाकृतियों से आगे बढ़कर अगर हम भगवान बिरसा मुंडा की पावन और ऐतिहासिक भूमि खूंटी का रुख करें तो यहाँ की ग्रामीण महिलाओं का एक अलग ही बुलंद हौसला दिखाई देता है। यहाँ की दीदियों ने प्लासमार्ट के माध्यम से स्थानीय और प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल किया है जिसने व्यापार के पुराने तौर तरीकों को ही बदल कर रख दिया है। खूंटी के ग्रामीण अंचलों में अब बाहरी फैक्ट्रियों के मिलावटी बिस्कुट या ब्रेड नहीं बल्कि स्थानीय महिलाओं द्वारा पूरी शुद्धता से संचालित दीदी बेकरी यूनिट के उत्पाद धूम मचा रहे हैं। पोषण से भरपूर मड़ुआ यानी रागी का केक, नमकीन और ठेकुआ आज हर घर और हर थाली की पहली पसंद बन चुके हैं। आइए इस बेकरी को कामयाबी के शिखर पर ले जाने वाली प्रियंका कुमारी से जानते हैं उनकी सफलता और संघर्ष की यह अनूठी कहानी।
1: प्रियंका कुमारी है और ये जो हम लोग का दीदी बेकरी है इसमें हम लोग अलग अलग प्रकार का बनाते हैं, जैसे कि पहला हम लोग का मफिन्स बनता है, केक जो कि ऐसे मैदा से भी बनाते हैं और रागी आटा से भी बनाते हैं और अलग अलग फ्लेवर में बनाते हैं, जैसे चॉकलेट मफिन्स हो गया, फ्रूट केक हो गया, उसके बाद ऐसे पाइनएप्पल फ्लेवर में, अलग अलग फ्लेवर में हम लोग केक आइटम बनाते हैं। ये हम लोग का काफ़ी अच्छा सेल है, हम लोग का खासकर इस दीदी बेकरी में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ यही है, जो हम लोग इसका रेट भी बहुत कम है और बनाना भी काफ़ी आसान है। जैसे इसको हम लोग केजी में बेचते हैं तो 100 रुपया केजी बेचते हैं और ऐसा पीस में हम लोग 2 रुपया करके बेचते हैं। और हमारा ये लंबा वाला पापड़ है, आज के डेट में ये भी काफ़ी अच्छा डिमांडिंग है, इसलिए हम लोग इस तरह से भी पापड़ को बनाते हैं।
0: ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के लिए आधुनिक मशीनों को संभालना शुरुआत में एक चुनौती जरूर था, लेकिन आधुनिक तकनीकों को अपनाकर और इलेक्ट्रॉनिक ओवन का सही इस्तेमाल सीखकर आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़ी कमली कुमारी और गुड़िया कुमारी जैसी अन्य दीदियों का आत्मविश्वास भी अब देखते ही बनता है। अब वे न केवल समय पर बड़े ऑर्डर्स पूरे कर रही हैं बल्कि शादी ब्याह और स्थानीय त्योहारों में भी कस्टमाइज्ड केक और स्नैक्स की ससमय डिलीवरी देकर वोकल फॉर लोकल की एक बेहतरीन और प्रेरणादायक मिसाल पेश कर रही हैं।
2: कमली कुमारी, केक बना रहे हैं और ब्रेड बना रहे हैं, पापड़ सब बना रहे हैं और हमको यहाँ काम करना अच्छा लगता है और इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, बाजार सब में, मेला सब में बहुत ज़्यादा ही बिक्री होता है। और इसको ये है केक, मड़ुआ का केक है, इससे मड़ुआ से बनता है और ये 5-10 रुपये में बिकता है और बच्चा इसे बहुत अच्छा से चाव से खाते हैं।
3: गुड़िया कुमारी, यहाँ केक भी बनता है तो केक को हम लोग 180-160 आंच करते हैं और मिनट इसमें 15 मिनट में पकाते हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ और मतलब ताज़ा बनाते हैं यहाँ डेली, मतलब कस्टमर सब आके खरीद के ले जाते हैं, डिमांड करते हैं और मतलब 200-250-300 तक का केक का ऑर्डर रहता है तो हम लोग देते हैं बना के और बहुत सा मतलब बहुत बिकता है, बहुत अच्छा लगता है।

तो श्रोताओं, दुमका के शिल्पकारों की उंगलियों का जादू और उनकी अनूठी कला हो या खूंटी की इन कर्मठ दीदियों का यह आत्मनिर्भर बेकरी प्रयास स्थानीय हुनर को जब प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी दूरदर्शी सरकारी नीतियों का संबल मिला तो सुदूर जंगलों, पहाड़ों और गांवों में समृद्धि की एक और अमित इबारत लिख दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन के इन 25 वर्षों की लोक कल्याणकारी यात्रा का सबसे बड़ा और अनमोल उपहार यही ग्रामीण आत्मनिर्भरता है। आकाशवाणी रांची के लिए दुमका से आर के नीरद और खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ समाचार कक्ष से मैं नंदन कुमार वर्मा।

0: अभी आप सुन रहे थे वोकल फॉर लोकल के तहत झारखंड आ रहे ग्राउंड रिपोर्ट। यह 25 वर्षों का सेवाकाल इस बात का जीता जागता गवाह है कि जब नीति साफ हो और नियत सुदृढ़ तो एक छोटा सा स्थानीय विचार भी करोड़ जीवनों की आवाजें गर्व से कह रही हैं, हमारा लोकल ही हमारा गौरव है। समाचार कक्ष की इस विशेष प्रस्तुति की संपादक महविश रहमान और प्रवक्ता तथा आलेखकार कुंदन कुमार वर्मा के साथ मुझे यानी अपनी दोस्त कामिनी को दीजिए अनुमति। कल फिर इसी वक्त एक नई कहानी और एक नए विषय के साथ होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार।
1: आकाशवाणी के रांची केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वोकल फॉर लोकल।

दोस्तों सांझ सरगम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कहते हैं जीवन में कुछ ऐसी भी घटना हमारे साथ खूबसूरत घटती है जो हमेशा याद बनकर हमारे दिल में छुपी होती है, और जब भी हम दिल के दरवाजे को खोलते हैं तो आहिस्ता से वो याद बाहर आने को मचलती है।

وقت تھمسا گیا جب تم سامنے آئے، بھولے سے رشتے پھر سے یاد آئے۔

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार को रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित एक्सपो उत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने झारखंड के स्थानीय उत्पादों को बेहतर गुणवत्ता, डिजाइन, आधुनिक तकनीक और प्रभावी ब्रांडिंग के जरिए देश दुनिया में पहचान दिलाने पर जोर दिया। रांची में झारखंड राज्य खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के आउटसोर्सिंग कर्मियों ने आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखीं। कर्मियों ने बताया कि उन्हें पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म करने, 2017 के स्थापना पुनर्गठन प्रस्ताव को लागू करने और बुनकरों की लंबित मजदूरी के भुगतान की मांग की। रांची एसीबी ने आज सिल्ली अंचल कार्यालय में पदस्थापित अमीन विनोद लोहरा को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पीड़ित ने जमीन मापी के लिए आवेदन दिया था, जिसके बदले अमीन ने 2,00,000 रुपए नकद और 4 डिसमिल जमीन की मांग की थी, जिसके बाद पीड़ित ने एसीबी से शिकायत की। एसीबी ने ट्रैप बिछाकर पहली किस्त लेते ही गिरफ्तार कर लिया। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर कतरास बचाओ संघर्ष मोर्चा ने भू धसान और कथित अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मोर्चा के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कतरास को विस्थापन से बचाने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के अवसर पर मेरा युवा भारत साहिबगंज की ओर से धोबी झरना स्थित स्नेहा स्पर्श आश्रम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला युवा अधिकारी सौरभ पांडे ने युवाओं से वरिष्ठ जनों का सम्मान करने और जरूरत के समय उनकी सहायता करने की अपील की। और गुमला जिले के कामडारा प्रखंड की हॉकी खिलाड़ी पार्वती टोपनो ने जूनियर महिला एशिया कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले पार्वती जूनियर महिला विश्व कप 2025 में भी भारतीय टीम का हिस्सा रह चुकी हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। शांतिकालीन सभा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, मैं हूँ छवि। श्रोताओं, अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में हम बता देते हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद यानी संध्या के 5:05 पर आप गुलदस्ता कार्यक्रम सुनेंगे चंद युगल नगमे। संध्या के 5:30 से 6 तक आप सुनेंगे फिल्म संगीत। संध्या के 6 आपको ले चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मुख्य समाचार। संध्या के 6:02 से 6:30 पर होगा बंगला कार्यक्रम सात रंग। संध्या के 6:30 से 6:55 पर आप सुनेंगे संथाली कार्यक्रम। 6:55 से 7:15 तक आप हमारे रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल सुनेंगे। 7:15 से 7:30 तक आप सुनेंगे श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत।

है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, जिसमें मनोरंजन होगा, हो लोकगीत से चर्चा सुनेंगे आप। आज के मेहमान के अंतर्गत भेंट वार्ता सुनेंगे, मौसम की जानकारी दी जाएगी और साथ ही बाजार भाव भी बतलाया जाएगा। संथाली लोकगीत आप सुनेंगे। रात्रि के 8 बजे से 8:45 पर होगा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीकंधा। रात्रि के 8:45 पर आपको लिए चलेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि के 9 बजे से 9:15 पर होगा अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। रात्रि के 9:15 से 10 बजे तक आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। रात्रि के 10 बजे से 10:20 पर आप सुनेंगे डेली कैप्सूल हाइलाइट्स बेस्ड ऑन 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 टू बी हेल्ड इन जापान। 10:20 से 10:30 तक आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि के 10:30 से 11 बजे तक आपको हम सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11 बजे से 11:05 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 से 11:10 तक आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। रात्रि के 11:11 पर सभा समापन की उद्घोषणा की जाएगी।

श्रोताओं, आप जानकारी ले रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम के बारे में। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में चंद युगल फिल्में की। कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, सबसे पहले पेश कर रहे हैं गुलदस्ता कार्यक्रम में फिल्म गरीबों का दाता। इस फिल्म से अलीशा चिनॉय और सुदेश भोसले की आवाजें हैं। तो चलिए इस युगल गीत का आनंद लेते हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में चंद युगलनक में। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म गजनी का ये नगमा बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: श्रोताओं, गुलदस्ता कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता छवि के साथ, जिसमें आपको हम आज फिल्मी युगल गीत सुनवा रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म गोपी किशन का ये नगमा कुमार शानू और पूर्णिमा की आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म हम आपके हैं कौन का ये गीत लता मंगेशकर और एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाजों में।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कुछ फिल्में नवे फिर से आपको हम सुनवाते हैं। सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए। लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम की आवाज़ें हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म एक था राजा का ये गीत, अभिजीत और साधना सरगम की आवाज़ों में। समीर के बोल थे और संगीत था आनंद मिलिंद का। अब आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म फकीरा का ये नगमा, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में रविंद्र जैन का संगीत है।

0: श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आप अभी सुन रहे थे हमराही फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज में अनजान के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। श्रोताओं, आप छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अब आपको लिए चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहाँ से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मुख्य समाचार।
1: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। ईडी के तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ एससी एसटी अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की एकल पीठ ने जवाब दाखिल करने के लिए 6 सप्ताह का समय मांगने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 10,000 रूपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सेवा ही संकल्प अभियान के तहत नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी आज साहिबगंज के बरहेट और भोगनाडीह पहुंचे। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके वंशजों के परिवारों से मिलकर सम्मान किया। उन्होंने सकरी गली मल्टी मॉडल टर्मिनल, गंगा पुल और एनएच कनेक्टिविटी को क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने नामकुम में स्वच्छता ही सेवा के तहत श्रम दान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सरकार के साथ हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसे रोजमर्रा के व्यवहार में शामिल करना होगा। मंत्री ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक छोड़कर कपड़े के थैले अपनाने की अपील की। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर सीआरपीएफ की 134वीं वाहिनी में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। कमांडेंट त्रिलोक नाथ सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों और जवानों ने रक्तदान किया। रांची में आयोजित डिजी हेल्थ कॉन्क्लेव में झारखंड की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। सरायकेला छऊ के कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और संगीत की प्रस्तुति दी। तपन कुमार पटनायक के नेतृत्व में कलाकारों ने हर पार्वती, राधा कृष्ण और आरती नृत्य प्रस्तुत किए। और जामताड़ा पुलिस ने कर्माटांड थाना क्षेत्र के रिंगो चिंगो और अमडीहा गांव से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 8 मोबाइल और 8 फर्जी सिम बरामद किए गए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवाते हैं बंगला कार्यक्रम 7 रंग।

0: ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱭᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱱᱩᱨᱟᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱵᱮᱭᱟᱢ ᱥᱤᱠᱚ ᱛᱮᱞᱟᱵᱚᱱ ᱱᱤᱛ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ
1: उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं, याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: गरीबों के लिए विधिक सेवा इदी कतेर मन भुक्तु माडी आर मन बढ़ा हसदा थिकना गपल मराबोन आंजोमा।
0: गोंके अविना परिचय कटिन लेवे
4: अलीन युतुम दो भुक्तु माडी हुकना आतु दो तलिन सोनंकुस पोस्ट ऑफिस डगजा राज नगर जिला सरायकेला वर्कर्स।
0: अच्छा अबिन मानवा जिला विधिक सेवा पर अधिकारी बिन जुड़ो होगना नुआ तो चीट करना नुआ बारो कठिन जानकारी बिन एम जो
4: नुआ जिला विधिक सेवा प्राधिकार नुआ अधिनियम 1996 के तहत पूरे झारखंड रे बोल झारखंड रे प्रत्येक जिला रे नुआ जिला विधिक सेवा कर बिना होगना और नवा जिला विधिक सेवा प्राधिकारी के माध्यम से जहाँ आर्थिक कमी ते जहाँ न्याय बाको जामी है उना न्याय सेटर लगे अलग को डिपुट कर लिया
0: आड़ी ना तो नवा न्याय न्याय तो उकाल कन न्याय को ना आड़ी के पुष्टो धरलिंग बढ़ाया
4: जहाँ लेका घरेलू हिंसा से संबंधित चाहे जमीन वाला मामला से संबंधित
0: अच्छा
4: चाहे नवा गाड़ी मोटर से संबंधित एक्सीडेंट से संबंधित अनुवा प्रत्येक ब्लॉक रे लीगल एड क्लिनिक खुलो होना जहाँ से जहाँ कोर्ट बाको सेटर दड़ा इनखान लीगल एड क्लिनिक हजते समस्या को आंजम लेखान आले चेतन कोर्ट से ले एप्लाय इनखान नोटिस करते नोड़े समझौता हो।
0: अच्छा नपाय अब जहाँ रेगेज इनखान रेगेज एप्लाई
4: दें रेगेज जहाँ इनकम 2 लाख खो कम गया
0: अच्छा
4: उनको के नोडे नोआ लाभ को जाम दड़े और न्याय को जाम दड़े चिकाते जे किसुल होड़ दो पुइसे के बदला तो उनको तो न्याय को जाम दड़े और रेंगे होड़ दो आर्थिक तंगी के कारण न्याय को जाम दड़े
0: हां सारी कथा कर गया कोर्ट कचेरी चला रहे अब मा रेंगे होड़ कोर्ट कचेरी चला हो होड़ को बतरवा और न्याय रे प्रक्रिया हो बखो बड़ा है अदो जहां की मिट होड़ न्याय जाम से नहीं करना नोआ अबिन ठे ऑफिस रे हेकते आवेदन एमा चे ओका माध्यम ते आज चला लो कन मारे प्रक्रिया ए
4: होय अलिया ऑफिस रे नोडे कते नो आवेदन एम दड़े या यदि चला रना सक्षम ता गना तो कोर्ट में एम दड़े अले उनका तो बीच बीच रे फील्ड में चला अले रे साहब जाए जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरकार ने सचिव उन्हीं फील्ड विजिट है और लोगो बोले होड़ को बोले जागरूक हुआ चे नोआ माध्यम ते नोआ लाभ को जाम दड़े न्याय को जाम दड़े अलिया मध्यम।

0: ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱨᱚᱠᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱢᱤᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱥᱟᱹᱢᱤᱞ ᱠᱚᱣᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱵᱚᱨᱛᱚᱢᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱚᱝᱥᱛᱷᱟᱜᱚᱛ ᱫᱮᱠᱷᱨᱮᱠ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱵᱟᱛᱥᱟᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱛᱚᱨᱜᱟᱛ ᱯᱷᱚᱥᱴᱟᱨ ᱠᱮᱭᱟᱨ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱞᱚᱱ ᱯᱚᱥᱚᱱ ᱫᱮᱠᱷᱨᱮᱠ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱮᱠᱷᱨᱮᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱵᱚᱥᱚᱠᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱥᱚᱠᱛᱟ ᱚᱱᱩᱥᱟᱨ 18 ᱵᱚᱨᱚᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱯᱟᱞᱚᱱ ᱯᱚᱥᱚᱱ ᱫᱮᱠᱷᱨᱮᱠ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱳᱫ ᱤᱫᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱨᱚᱠᱨᱤᱭᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱼᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱥᱛᱷᱟᱭᱤ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ, ᱥᱩᱨᱚᱪᱪᱷᱟ ᱟᱨ ᱜᱟᱹᱨᱤᱢᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟᱭ ᱟᱜᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱯᱟᱞᱚᱠ ᱢᱟᱛᱟ ᱯᱤᱛᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱳᱜᱽᱫᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱹᱵᱤ ᱢᱟ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱳᱲ ᱫᱚ 115 ᱵᱚᱨᱚᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱰᱷᱮᱨ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱨ ᱟᱜᱟᱨ ᱮᱠᱞᱟ ᱜᱮᱭᱟᱭ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱥᱟᱱᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱟᱭᱟᱜ ᱟᱭᱩ ᱫᱚ 35 ᱵᱚᱨᱚᱥ ᱟᱨ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ 115 ᱵᱚᱨᱚᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱰᱷᱮᱨ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱮᱠᱞᱟ ᱯᱩᱨᱩᱥ ᱫᱚ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱜᱟᱨ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱥᱤᱝᱵᱷᱩᱢ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱱᱤᱵᱟᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟᱵᱤᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱴᱷᱮᱱ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱨ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱᱤᱛ ᱟᱭ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱯᱚᱛᱨᱚ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱵᱷᱮᱨᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱥᱚᱱ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱤᱪᱪᱷᱩᱠ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ 4,000 ᱴᱟᱠᱟ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱷᱮᱨ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱤᱞᱟ ᱵᱟᱞ ᱥᱚᱝᱨᱚᱠᱷᱚᱱ ᱤᱠᱟᱭ 9955131364 9090700400 ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱥᱚᱢᱯᱚᱨᱠ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱞᱟ ᱵᱟᱞ ᱥᱚᱝᱨᱚᱠᱷᱚᱱ ᱤᱠᱟᱭ ᱡᱤᱞᱟ ᱩᱯᱟᱭᱩᱠᱛ ᱠᱟᱨᱭᱟᱞᱚᱭ ᱛᱤᱥᱨᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱪᱟᱭᱵᱟᱥᱟᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱞᱟᱭᱤᱠ ᱠᱟᱨᱱᱮ ᱠᱮ ᱯᱮᱥᱮ ᱢᱤᱞᱮᱝᱜᱮ ᱥᱚ ᱤᱡᱤ
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए
4: बोयमसी को दिला तेहेन आखड़ा मुचर रे मैं दोंग सरिंग तेबन रस्कन जुगा सपड़ावा का आको मोदन सोरेन आर सांतन को

श्रोताओं, आप सुन रहे थे संथाली कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको लिए चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल बस कुछ ही पलों में।

0: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
1: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
0: अरे बहन, परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर, जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
1: बहन, पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
0: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
2: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
5: बात कर मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
6: कंडोम,
5: गर्भ निरोधक गोलियाँ,
7: खुशी का मंजर रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड हाई कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन पर लगाया 10,000 रुपए का जुर्माना। ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी मामले में 4 सप्ताह में जवाब का निर्देश। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने एक्सपो उत्सव का किया उद्घाटन, कहा तसर सिल्क समेत स्थानीय उत्पादों में व्यापक संभावनाएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दोहराया, एसआईआर में नोटिस वाले मतदाताओं की घर पर होगी सुनवाई। दिव्यांग, वृद्ध और बेघर के लिए लगेंगे विशेष शिविर। रांची मंडल में त्योहारों को लेकर विशेष यात्री सुविधाओं की तैयारी। दशहरा और दीपावली पर स्पेशल ट्रेनों के साथ बढ़ेंगी यात्री सुविधाएं, अतिरिक्त कोच की होगी व्यवस्था। और एशियाई खेलों में भारत ने हॉकी के फाइनल में बनाई जगह, पाकिस्तान को 4-3 से दी शिकस्त। और अब समाचार विस्तार से। ईडी के तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ SC ST अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की एकल पीठ ने जवाब दाखिल करने के लिए 6 सप्ताह का समय मांगने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि अदालत ने 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 2 नवम्बर को होगी।
1: ईडी के अधिकारियों पर SC ST केस से जुड़े मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से समय की मांग की गई, जिसे 10,000 रुपए जुर्माने के साथ 2 नवंबर को अगली सुनवाई का समय निर्धारित किया।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक्सपो उत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने झारखंड के स्थानीय उत्पादों को बेहतर गुणवत्ता, डिजाइन, आधुनिक तकनीक और प्रभावी ब्रांडिंग के जरिए देश विदेश में पहचान दिलाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि तसर सिल्क सहित राज्य के स्थानीय उत्पादों में व्यापक संभावनाएं हैं।
2: 2026 के आयोजन के लिए JCI रांची को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक्सपो केवल उत्पादों की प्रदर्शनी नहीं, यहां पर विचारों, प्रतिभाओं और संभावनाओं को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है। आज के समय में उद्यमिता केवल व्यवसाय शुरू करने का माध्यम नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता, रोजगार और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार है।
0: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने नामकुम में स्वच्छता ही सेवा के तहत श्रमदान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सरकार के साथ हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसे रोजमर्रा के व्यवहार में शामिल करना होगा। मंत्री ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक छोड़कर कपड़े के थैले अपनाने की अपील की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नोटिस मिले मतदाताओं को सुनवाई के लिए निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर आवश्यक दस्तावेज लेंगे और ऑनलाइन दर्ज करेंगे। उन्होंने आदिम जनजाति, दिव्यांग, वृद्ध, श्रमिक और बेघर मतदाताओं के लिए विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया। नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन में रेजिडेंट कमिश्नर अरवा राजकमल ने गृह मंत्रालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार चतुर्वेदी के साथ बैठक की। बैठक में झारखंड सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और सरकारी वाहनों के प्रवेश, वाहन पास जारी करने और नवीनीकरण समेत सुरक्षा प्रक्रिया को सुगम बनाने पर चर्चा हुई। झारखंड की DGP तदाशा मिश्रा ने जमशेदपुर में सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने अपराध और विधि व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कैनरा बैंक लूटकांड और मरीन ड्राइव रेस्टोरेंट गोलीबारी मामले में पुलिस कार्रवाई, जांच की प्रगति और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चल रहे अभियानों की जानकारी ली। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। इस श्रृंखला में आयुष्मान भारत से लोगों के जीवन में आए बदलाव पर नजर डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत के बारे में कहा कि आज सरकार ने लोगों को इलाज के लिए 5 लाख तक की गारंटी दी है।
3: ये आयुष्मान कार्ड गरीब के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की गारंटी है। भाई और बहनों, देश भर में आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों में करीब 5 करोड़ गरीबों का इलाज हो चुका है। अगर आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं होता तो इन गरीबों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके बीमारी का उपचार करना पड़ता।
0: इधर गढ़वा के लाभार्थी बताते हैं कि 50 हजार की रकम देकर इलाज कराना असंभव था, लेकिन आयुष्मान आरोग्य कार्ड से निःशुल्क उपचार हो रहा है।
4: इस वर्ष जो है लास्ट ईयर की जो ट्रेनें थी, स्पेशल ट्रेन थी, वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो गई है परमानेंट ट्रेन। तो भारत के जितने प्रमुख शहर हैं उन सबको हमने स्पेशल ट्रेन दिया है। रांची से बेंगलुरु, रांची से कलकत्ता, रांची से अजमेर, रांची से बॉम्बे और रांची से अजमेर। ये दुर्गा पूजा के समय से स्टार्ट हो जाएंगे, चलेगी अभी नवम्बर के बीच तक। छठ और दिवाली का जो क्राउड के लिए हम लोग और एड करेंगे अभी, आरा के लिए, गोरखपुर के लिए और बनारस के लिए।
0: दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल ने दशहरा और दीपावली के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए कई जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। रांची मंडल के डीआरएम करुणा निधि सिंह ने बताया कि ट्रेनों में जरूरत के अनुसार अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रांची और हटिया स्टेशनों पर अतिरिक्त बुकिंग काउंटर, मोबाइल टिकटिंग और भीड़ प्रबंधन की विशेष व्यवस्था होगी।
4: इस वर्ष जो है लास्ट ईयर की जो ट्रेनें थी, स्पेशल ट्रेन थी, वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो गई है परमानेंट ट्रेन। तो भारत के जितने प्रमुख शहर हैं उन सबको हमने स्पेशल ट्रेन दिया है। रांची से बेंगलुरु, रांची से कलकत्ता, रांची से अजमेर, रांची से बॉम्बे और रांची से अजमेर। ये दुर्गा पूजा के समय से स्टार्ट हो जाएंगे, चलेगी अभी नवम्बर के बीच तक। छठ और दिवाली का जो क्राउड के लिए हम लोग और एड करेंगे अभी, आरा के लिए, गोरखपुर के लिए और बनारस के लिए।
0: रांची भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सिल्ली अंचल कार्यालय में पदस्थापित अमीन विनोद लोहरा को 50 हजार रूपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित ने जमीन मापी के लिए आवेदन दिया था। आरोप है कि इसके बदले अमीन ने 2 लाख रूपए नकद और 4 डिसमिल जमीन की मांग की थी। शिकायत के सत्यापन के बाद ब्यूरो ने अमीन को गिरफ्तार कर लिया। जामताड़ा पुलिस ने कर्माटाड़ थाना क्षेत्र के रिंगो चिंगो गांव से एक और अमडीहा गांव से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन और 8 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। एशियाई खेलों में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने पहले हाफ में 3 गोल कर बढ़त बनाई। दूसरे हाफ में पाकिस्तान ने 3 गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। आखिरी मिनट में अभिषेक के गोल ने भारत को जीत दिला दी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन पर लगाया 10 हजार रूपये का जुर्माना। ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी मामले में 4 सप्ताह में जवाब का निर्देश। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने एक्सपो उत्सव का किया उद्घाटन। कहा तसर सिल्क समेत स्थानीय उत्पादों में व्यापक संभावनाएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दोहराया एसआईआर में नोटिस वाले मतदाताओं की घर पर होगी सुनवाई। दिव्यांग, वृद्ध और बेघरों के लिए लगेंगे विशेष शिविर। रांची मंडल में त्योहारों को लेकर विशेष यात्री सुविधाओं की तैयारी। दशहरा और दीपावली पर स्पेशल ट्रेनों के साथ बढ़ेंगी यात्री सुविधाएं। अतिरिक्त कोच की होगी व्यवस्था। और एशियाई खेलों में भारत ने हॉकी के फाइनल में बनाई जगह, पाकिस्तान को 4-3 से दी शिकस्त। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।
6: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
7: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: मारियां उसे घेर लेती हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूं, किससे सलाह लूं।
1: अरे बहन, 104 नंबर डायल कर, जहां पर तुझे बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों से उचित सलाह मिलेगी।
0: 104 नंबर, वो क्या है बहन?
1: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन।
2: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: मुझे भी सब्जी दाल दो ना।
5: नहीं, तू ऐसे ही खा, इसे भैया को खाने दे।
6: अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं?
7: बढ़ती बच्ची, किशोरियों के साथ खान पान में भेदभाव ना करें।
6: किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है,
7: उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं,
6: माहवारी प्रारंभ होती है,
7: उन्हें अच्छा और उचित पोषक आहार की आवश्यकता होती है।
6: याद रखें, स्वस्थ बालिका ही भविष्य में स्वस्थ माँ बन सकती है।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे रांची संवाददाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को रांची में लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ रांची में मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री के इस लोकप्रिय मासिक कार्यक्रम को सुनने के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बातें भी की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प को देश और दुनिया देख रही है।
2: क्योंकि वास्तव में उस समय देश 2014 के पहले देश के अंदर में जगह जगह बम ब्लास्ट आए दिन होते रहते। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, इन जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाए और कहा भी था कि अगर पाकिस्तान से कोई आतंकवादी यहाँ आएंगे तो घुस करके मारेंगे।
1: आयुर्वेद दिवस के मौके पर रांची के डोरंडा स्थित पलाश भवन में झारखंड प्रदेश आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में आयुष मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम किया जा रहा है।
3: इससे पहले जब मैं भारत सरकार के जो मंत्री है MOS प्रकाश राव यादव साहब से मिला था, मैं तो एक बार दो बार तीन बार तो वो भी बोले कि इतना जिद्दी मंत्री तो पहली बार मैं देख रहा हूँ, उनको ला के टाल देंगे तो चल जाएगा, लेकिन मैं जो जो मांगे हम देते गए। तो पूरी रिपोर्ट मैंने दिया है, लगभग 900 करोड़ की लागत से राज्य को एक आयुष मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगा। मेरा जो फोकस है स्वास्थ्य को बेहतर करके ही लेंगे, हम तो जिद्दी भी है।
1: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और विवेकानंद विद्या मंदिर विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में रांची में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और विद्यालय की ओर से सेवा सप्ताह के तहत विकसित भारत के तहत आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसके तहत विकसित भारत के रंग कला के संग पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कुमार संजय झा ने कहा कि चित्रकला के माध्यम से बच्चों ने विकसित भारत के संबंध में अपनी भावनाओं को कैनवास पर उकेरने का काम किया।
4: निश्चित रूप से ये बड़ा सुखद प्रयास है, भव्य प्रयास है। चित्रकला के माध्यम से जो हमारे छात्र हैं छात्राएं हैं वो अपनी भावनाओं को किस तरह प्रदर्शित करती हैं, देश का जो 2047 का जो हमारा एक ब्लूप्रिंट है, एक लक्ष्य है विकसित भारत का, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रभावी संदेश है कि पूरे देश को किस तरह हम इसको विकसित भारत के रूप में अपने लक्ष्य की ओर हम बढ़ें। और जीवन के अनेक क्षेत्र में बच्चे जो हैं, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, या फिर जो है वो जो पर्यावरणीय संतुलन की बात हो, हर मामले में हम आगे बढ़ें और हमें एक विश्व बंधुत्व की भावना जागृत हो।
1: रांची में अखिल भारतीय नेत्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में शोध और कैरियर विषयों पर सत्र आयोजित किए गए। सम्मेलन के ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन भारती कश्यप ने कहा कि सम्मेलन के दौरान चिकित्सकों को नई नई तकनीक को सीखने का अवसर मिला, जिसका फायदा आने वाले दिनों में चिकित्सा जगत और लोगों को मिलेगा।
5: ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी की 5वीं मिड टर्म कॉन्फ्रेंस जिसका आज रांची में समापन हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक वैज्ञानिक आयोजन नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, शोध और वैज्ञानिक अवसरों में झारखंड जैसे मिड टायर 2 सिटीज में उनके अवसरों को आगे बढ़ाना, इसके अलावा जो यहाँ की जो अपनी हिडन वैज्ञानिक प्रतिभा है उसको एक्सप्लोर करना।
1: देश के अलग अलग हिस्सों से आए चिकित्सकों ने भी राष्ट्रीय सम्मेलन को काफी लाभप्रद बताया। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: अभी आप सुन रहे थे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:15 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद लेकर मैं उपस्थित हूँ। श्रोताओं, मेरा नाम छवि है। आपको पता है, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं फिल्म 10 का ये नगमा। केके और शान की आवाजों में पंछी जालौन के बोल हैं, विशाल ददलानी का संगीत है, साथ में विशाल शेखर। इस गीत को सुनना चाहते हैं मोल्डिया सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधा मणि महतो, रविवारी, वंदनी, दीपक संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गीतेश, अनु, तनु, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो। मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, देवाशीष नायक, कुलशन नायक, पिनाक प्रधान, तनुश्री प्रधान और नीलपानी प्रधान। बड़ा निमड़ी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और शुभम कुमार। बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और असमा नाज अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर आदिबा, सारिमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुरफराज भागलपुरी। चलिए, इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म 10 का ये नगमा।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है डुप्लीकेट। कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू की आवाजें ही, अनु मलिक का संगीत है और इस गीत को सुनना चाहते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दंतरेगी से भागवत वर्मा, लेवी से गुलाब दास मानिकपुरी, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू, बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबेहा दिगवादा, नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांचल राय, सिरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय, कोटवा नारायणपुर से बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृषि श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवली श्रीवास्तव। चलिए इन सबकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म डुप्लीकेट का ये गीत।

0: उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, फिल्म के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपको सुनवाते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को आशा मनिकूप का जोहार। कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। किसान भाई बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा से, किचन गार्डन से होने वाले लाभ। किसान भाई बहनों, हरी साग सब्जियां हमारे दैनिक आहार का महत्वपूर्ण स्रोत है और अपने दैनिक आहार में हमें प्रतिदिन हरी साग सब्जियों को शामिल करना चाहिए। किचन गार्डन यानी गृह वाटिका के बहुत से लाभ हैं। आप अपने घर के आसपास हरी साग सब्जियों की खेती कर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन हरी साग सब्जियों को लगाने से पहले स्थान का चुनाव करना बहुत ही जरूरी है। आप किस स्थान में इन सबको लगाने वाले हैं, इसके लिए जहां उन्हें पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश, हवा, ये सब मिल सके, साथ ही सिंचाई की भी सुविधा होनी चाहिए। जिस स्थान में आप इन सबको लगाने वाले हैं, उसके लिए सबसे पहले मिट्टी की तैयारी बहुत ही जरूरी है। उस स्थान को खरपतवारों से मुक्त रखें, तो सबसे पहले खरपतवारों को हटाना बहुत ही जरूरी है। मिट्टी की तैयारी के बाद इसे आप कुछ दिनों के लिए, 3 से 4 दिनों के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ दें, फिर पुनः मिट्टी की तैयारी करें। मिट्टी तैयारी के बाद गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें। किसान भाई बहनों, हरी साग सब्जियों में आप पालक, मेथी, धनिया, मिर्च, टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, सेम, कुंदरू, ये सब लगा सकते हैं। लगाने से पहले आप यह भी ध्यान रखें कि इनके बीज स्वस्थ होने चाहिए। स्वस्थ बीजों का ही प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। इससे जो पौधों का विकास है वो भी काफी अच्छा होता है और जो सब्जियों में रोग है वो ज्यादा नहीं लगता है। किसान भाई बहनों, आप इनसे कम समय में अच्छी तरह से हरी साग सब्जियों की खेती कर सकते हैं। आप इनके लिए छोटी छोटी क्यारियां भी बना सकते हैं। साथ ही यह ध्यान रखिए कि सिंचाई समय के अनुसार करें, अत्यधिक नमी भी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाई बहनों, हम देखते हैं कि ये हरी साग सब्जियां लगभग 1 से 2 माह के अंदर आप प्राप्त कर सकते हैं। देखा जाए तो कम समय में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और समय और धन दोनों की बचत होती है। यह काफी आसान तरीका है और आप अपने घर के आसपास हरियाली का भी आनंद उठा सकते हैं और ताजी और स्वस्थ सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस तरह का किचन गार्डन करते हैं तो हमारे घर के छोटे बच्चों में भी उत्सुकता आता है और वो भी खाने में अपना रुचि दिखाते हैं। किसान भाई बहनों, इसके अलावा कम स्थान घेरने वाले पौधों को भी आप लगा सकते हैं। इसमें नींबू, पपीता, तुलसी, एलोवेरा, अमरूद, आप इन सबको लगा सकते हैं, क्योंकि इन सब का उपयोग आप औषधीय रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है और इसे फल के रूप में भी आप ग्रहण करते हैं। किसान भाई बहनों, इस चर्चा के बाद कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और अब हम आनंद लेते हैं हो लोकगीत का, लक्ष्मी हिस्सा और साथियों के स्वर में।

0: किसान भाई बहनों, अभी हम आनंद ले रहे थे हो लोकगीत का लक्ष्मी हिस्सा और साथियों के स्वर में। आइए अब हम सुनते हैं यह संदेश।
1: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है। यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है। तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
3: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
2: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
4: हमने 1800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
2: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
5: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
2: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों

0: एपीओ का डायरेक्टर हूँ। मेरा एपीओ पूरा हो गया है, 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है, उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ।
1: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
2: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
1: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।
3: कार्यक्रम किसानवाणी में आप सबका पुनः स्वागत है। किसान भाई बहनों, अब हम जानकारी लेते हैं जाड़े के मौसम में पशुओं की देखभाल। इस विषय में जानकारी दे रहे हैं सालू काबारी और उनसे बातचीत कर रहे हैं डोबरो बुड़ियोली।
4: तिसिंग अबेना हतो तांतनगर पीढ़ी जुम्बलाय रची प्रखंड रे मेना तिया शिणी हतो रेलिंग बिटायना चासाग्याकिंग अबेन लो तगे जपगर लगे एंद दो चासाग्याकिंग मार जोवार जोवार
5: जोवार गे
4: अबेन लो ते जगर लगे चासा गया कि अलिंग बेटा है ना ने अचका गलिंग बेटा है ना मैं दो अमिन लोग जगह लगे गलिंग बेटा है ना अंते जपगर दो चासा गया कि निना था ना अच्छा चासा गया कि निन विषय रेलंग जपगर आयर ते आबे ना ओ पुरुम हुनांग बन जगर तर दो भोगी हो
5: अच्छा अच्छा सो रास रह का जी हिंदी
4: या या
5: जगर ने अब ना अटकर दे ये बात
4: या या या
5: कबिन चिर के लिए अच्छा
4: या या
5: तेरी जगर ना था
4: अबे ना पुरुम
5: को अलिंग है नुमु तो सालू के बारी कम ताली आतो रे
4: या
5: ते हाथो दो ताली से नहीं आतो गे
4: या
5: ते पोस्ट ऑफिस दो कोकचो ब्लॉक दो तांतनगर एंदे जिले दो पाचम में सिम होई गे
4: या अच्छा सलका बारी तक आवे ना उपरम को बन जगर कडा नेन वर्षिन चिना को बन पैटी बात ना
5: एंदे ना वर्षिन दो आलिन दो एंटा के ने अब ए गामा को चबायन के बाद ने ओते करे के जुका जुका पैटी बात चला ओतन
4: या या या
5: बाबा को जाना को जुका तारा ता दो बुगी होबे तारा दो का इना को जुका लेका सब भाई तो बहुत ना मियर बारी या
4: या या या या एसो ना सरे खजी अब दो पार्टी बिगर दो अब कबूटाई दिए हां अब दो अत्याचार रे पार्टी तन चासी आ गया को एन दो चासी आ गया कि तिसिंग जगर दो अबेन लो तेना गे रबंग असड़ा रे उरी मेरों को मेंडी केड़ा को चिली के नेल जुगाव को तिया दोर करा मीना बिसाय रे हिंदी हयम तो कोना मनिया झाड़े की मौसम में फसलों की देखभाल कैसे करें मिंतिया विषय रे एंते चिरगल अटकर उबायना छी आबेनो मियन एसु उड़ु दई जगर दई अंडो अटकर तन चास गया किंत नबेन इनमनते ओल अले आकाशवाणी चाय वसा कार्यक्रम किसान बाणी पेते अलिंग अबेन ता अलिंग बिटा एना नेन भी सर जगर लगे एंदो सालू के बारे तकिन मार कजी बेन अबेन गे ची रबंग असलर ची रबंग चंडू रे उरी मेरों को मिंडी को कीड़ा को चिली के जोगाव को तिया दूर करा
5: या या चली जगर नता
4: या
5: दो ना दो अब दो तो समर दो इस पूरे बिजली से जाना तो कवर के दिए
4: या
5: तो अब दो सान सकम को सोला लिया तो समर
4: या या
5: सान सकम को हुंडी के ते आको कोंता को गीती एको दुबे को इंता जोकालिका चिने बुची के तो वो सिंगल को मो आए तो वो
4: अच्छा अच्छा अच्छा
5: जाटा को जाना के तिंबा के ते
4: या या
5: उर्ग में लगिन
4: या
5: ते इंता रे जो का हेक बहर बाता
4: या
5: इनाते तरो एक बहर बाता इनाते चाचा जाटी लेकिन को तुम सो नामो
4: या या तो
5: इना को चाचा बोरा लेकिन को बोरा को सो दुनिया रे तब ने दिसो रे पेरे रंगा
4: इना या या
5: तो इन बोरा को बिलवा के तब इन पर वो गीते रे को उर्गुम रे को
4: या
5: दो आको एसो बुगले को तयु
4: अच्छा एसो बढ़िया इना को जुगाव कर दो एसो बुगी गे
5: हां
4: अच्छा गुवा को उरी को जुगावतिया मेरों को जुगावतिया गुवा को चिलके बाईतिया दोर करा आको

0: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
1: अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
2: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
1: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।
3: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
5: मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाए
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराए।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जलवायु परिवर्तन क्या है, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही है, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है।
4: किसान भाई बहनों, कार्यक्रम के अंत में अब हम आनंद लेते हैं कुरमाली लोकगीत का, मालावती महतो और साथियों के स्वर में।
5: मैथिली झुमर बैठी रहली आसे।

किसान भाई बहनों, इसी कुरमाली लोकगीत के साथ कार्यक्रम किसानवाणी अब यहीं संपन्न होता है। आपसे पुनः मुलाकात होगी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आशा मिनी गोप को दीजिए विदा। जोहार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम रजनीगंधा को लेकर मैं उपस्थित हूँ आप सबकी छवि। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, रजनीगंधा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पेश है फिल्म का नाम है, सबसे पहले जो आपको सुनवाने जा रहे हैं, दो आंखें बारह हाथ। कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं न्यू कॉलोनी निमडी से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, खुशबू खुशी, अभिषेक अनिश, अंश और अमित और मुन्ना। सेंटोला चाईबासा से भोला राम मधुर, बेबी देवी, नताशा। बड़ी बाजार चाईबासा से विनोद कुमार पवन, मीना पवन। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। महुलडिया सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, वंदनी संतोषी, दीपक संतोष, राहुल, अनु, तनु, भाई नंदू महतो, गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, कौशल नायक और किशोर महतो। चलिए आप सबकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दो आंखें बारह हाथ का ये नगमा।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनी कंथा छवि के साथ। अगला गीत आपको हम सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजें हैं, आनंद पक्षी के बोल हैं और संगीत है जतिन ललित का। इस गीत को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जेतेंग बीरक, मीका बीरक, बड़ा निम्बी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीला देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और अमृत कुमार। ग्राम पुंडा काटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय महली, साजीव महली, बिरसा मुर्मू और कमलेश मुर्मू। चलें, इन सबकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है दिल चले। अजय देवगन और पूर्णिमा की आवाजें हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झवेंद्र कुमार वर्मा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, लेतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार, प्रदीप अंचर वाडकर, आसिफ पेंटर। चलिए, इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल चले का ये गीत।
1: राख के ढेर में चलते हुए शोलों को हाथ मत लगा, चल जाएगी।
2: नाम मेरा शबनम है, पर आग तो मैं भी हूं शाखा।
3: दिल जले, दिल जले, और लाले यहां तो सभी दिल जले हैं।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीकंधा छवि के साथ। अगला गीत आपको हम सुनवाते हैं फिल्म 1947 अर्थ से साधना सरगम की आवाज़ है। इस गीत को सुनना चाहते हैं बेडी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, आरती करमकर, प्राची करमकर, तनु करमकर, मॉडल टाउन पानीपत से संदीप गुगलानी, आक्षा गुगलानी, पूजा आनिया, अनाया, नेहा, सागर गुम्बर, हिंसा, हिमांशु गुगलानी, इम्मू कुरैशी, सुधीर नूतन, बेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवेनकर, धीरज सवासेरे, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, इन सब की फरमाइश पर आइए सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है चाइना गेट। अलका याग्निक और सपना अवस्थी का आवाज़ है, अनूप मलिक का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहते हैं महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य, नीतू वैद्य। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, सत्या साहू और प्रतीक कुमार। गांव लोहड़गढ़ ठाकरावाला फिरोजपुर से स्वर्ण सिंह, जलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरमान सिंह, गुरनूर सिंह। पुणे से पंकज बोड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी बोड़ोदे और चंद्रप्रभा बोड़ोदे। इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चाइना गेट का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम इनकी पसंद पर गीत सुनवाते हैं। चांडिल ग्राम हरुडी से तुलसीदास महतो, मनोरमा महतो, कल्पना महतो, मनमोहिनी महतो, दीन बंधु महतो। तूरी टोला चाईबासा से बदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडो हरी, खुशी कुमारी, रिया कुमारी, अर्पिता कुमारी। सरायकेला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम, शिवाजी मुंडरी, सुरुमानी मुंडरी, हीरामानी मुंडरी, हिमांति मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानुम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू सोना और FM शिवा मुंडरी। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजू भाई तड़वी, परु मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर। भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी। जिला बुरहानपुर से मुशरफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, रोजमीन तड़वी।

श्रोताओं, समय की कमी के कारण पूरा गीत नहीं सुनवा सके, इसका मैं खेद है। अब इसी के साथ आज का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जनसेवा के लिए युवाओं को सरकारी नौकरियों में लाने पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमरीका ने ईरान सैन्य खरीद मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी पर लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है।

0: 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो बल दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए। यह तभी संभव है।
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति को नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पहुंच और बेहतर परिणामों में बदलने के सामूहिक दायित्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को एक क्षेत्र के साथ मानवीय गरिमा का एक अनिवार्य स्तंभ माना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। एक रिपोर्ट।
4: दिशा निर्देशों के अंतर्गत शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहनों तथा दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी किए जाएंगे। यह सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर प्रदान की जाएगी। संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करना और उसके नवीनीकरण में अधिक एकरूपता लाना है। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
0: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है।
5: वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ द ब्रेवरी एंड द करेज।
6: कैप्टन स्मिथ की बहादुरी और साहस पर पूरे देश को गर्व है। कठिन परिस्थिति में जान के खतरे के बावजूद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए साहस दिखाया। उनका यह अदम्य साहस हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री ने भी उनके परिवार से बात की है। पूरा देश कैप्टन स्मिथ और उनके परिवार के साथ खड़ा है।
5: वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड वी आर रियली रियली एक्सट्रीमली प्राउड।
1: गुजरात के प्रमुख तीर्थस्थलों पर फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य होने और दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
7: अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 174 यात्रियों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के जांबाज कैप्टन और मूल रूप से गुजरात के रहने वाले स्मिथ मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों सोमनाथ और अंबाजी में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया है। अंबाजी मंदिर के पवित्र चांचर चौक में आज विशेष प्रार्थना की गई, तो वही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अखंड महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन स्मिथ के और अदम्य साहस को नमन करते हुए उन्हें गुजरात सरकार के प्रतिष्ठित विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कैप्टन स्मिथ को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और भारतीय दूतावास यूएई के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
8: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जैसे स्मारकों के निर्माण के द्वारा इस दृष्टिकोण को साकार किया गया है।
9: राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना जनवरी 2019 में इंडिया गेट के पास की गई थी। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने आजादी के बाद हुए युद्धों और संघर्षों में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्य स्मारक के अलावा यहाँ 21 वीर सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए एक विशेष समर्पित क्षेत्र भी है जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2019 में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह स्मारक देश के बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस की भावना को दर्शाता है।
10: दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहाँ लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यहाँ उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके।
9: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र आदित्य ने कहा कि यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं।
11: यह विचार
3: बहुत ही महान है, यह हमें उन निरंतर बलिदानों की याद दिलाता है जो हमें अपने देश को अनगिनत दुश्मनों से बचाने के लिए देने पड़ते हैं। इसके साथ यह केवल शहादत और मृत्यु को नमन करने की जगह नहीं है, बल्कि यह चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधों और हरियाली से घिरा हुआ है।
9: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। इस स्मारक की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। ये स्मारक सिर्फ इमारतें नहीं है, बल्कि ये उन सैनिकों और पुलिस कर्मियों

0: जैसे आज से 10 साल पहले 15 साल पहले लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत कम बात करते थे, अब बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने कहा मैं भी परेशान था या मैं भी परेशान थी, तो लोगों ने बात करना शुरू किया। वैसे ही अब जब नशे के ऊपर जब बात शुरू हो रही है तो ये वातावरण निर्माण हो रहा है, और उस वातावरण निर्माण में से प्राइम मिनिस्टर ने 2 अगस्त को एक नेशनल कॉल दिया था यंग लोगों के लिए, तो अलग अलग लोगों ने जो कॉल दिया, बट ये वातावरण का निर्माण हो रहा है, मगर इसमें कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने की जरूरत है, इसमें वो स्टेप लेने की जरूरत है जो साइंस मतलब विज्ञान और साक्ष्य के आधार पे होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो अच्छे ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं उसमें ट्रेंड मैन पावर नहीं है, उसमें वो डॉक्टर्स नहीं है जो समझ सकते हैं कि अब नए प्रकार की दवाइयां बाजार में है उसको यूज किया जाए, तो इन तमाम चीजों पे भी ध्यान देना होगा अपार्ट फ्रॉम ये जो वातावरण निर्माण की जो आप बात कर रहे हो।
1: तो जो आप चुनौती बता रहे हैं कि ट्रेंड जो मैन पावर है उसकी जो संख्या है वो और भी बढ़ाई जानी चाहिए, इनफैक्ट इसके बारे में बात भी हुई है कि ये स्किलिंग जो है कि कैसे ट्रीटमेंट जो वहां पे जो केयर गिवर्स हैं वो कैसे उनको डील करें, तो इस डीलिंग में जैसे आपने विज्ञान की बात कही, विज्ञान के साथ साथ आपको लगता है कि एक सेंसिटिव अप्रोच भी बहुत जरूरी है।
0: समझिए मैंने पहले जो स्टिग्मा वर्ड किया था वो यही है, दुनिया में एकमात्र बीमारी है जिस बीमारी के लिए व्यक्ति को जेल जाना होता है या मजिस्ट्रेट के सामने जाना होता है, ट्रीटमेंट सेंटर में नहीं जाना होता है। तो समाज और देश और सरकार को समझना होगा कि यह व्यक्ति जो नशे के गिरफ्त में है उसको इलाज की जरूरत है, अच्छे क्वालिटी इलाज की जरूरत है, उसको अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के जो प्रोफेशनल्स हैं उसके सपोर्ट की जरूरत है।
1: तो जैसा आपने कहा कि अभी जो दायरा है ऑलरेडी बहुत बड़ा है जो भारत के स्तर पे जो अभियान चल रहा है, लेकिन इसके विस्तार की और भी जरूरत है। आप हमें बता सकते हैं कि अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें या जो महिलाएं यूजुअली जो पूरे परिवार है उसको एक तरह से उसकी नर्चर करती हैं, ऐसे जो पेरिफेरल ग्रुप्स हैं या कम्युनिटी है उनको किस तरह से उनको इसमें शामिल किया जा सकता है इस मुहिम में?
0: देखिए मैंने आपसे बताया स्कूल बेस्ड जो प्रोग्राम है और नवचेतना है उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। नवचेतना में एक चैप्टर है जो सिर्फ पेरेंट्स के लिए है। इसके अलावा दो बड़ा एक पॉपुलेशन है इस देश में, एक है फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसमें आशा है, आंगनवाड़ी है, ANM है, इनको ज्यादा नहीं 2-3 घंटे का एक ओरिएंटेशन होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि कहां पे ट्रीटमेंट सेंटर्स अवेलेबल है और कैसे पहचाने कि कोई अब इसके गिरफ्त में आ गया। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको, या पंचायती राज की जिम्मेवारी बनती है कि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इसमें लेकर आए, क्योंकि जब तक ये तीनों बड़े जो मिनिस्ट्रीज है ये ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो हम लोग उस पॉपुलेशन में नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए अभी तो हम लोग सिर्फ शहर की बात कर रहे हैं, शहर में भी कुछ इलाकों की बात कर रहे हैं, अगर आप पूरे राष्ट्रीय स्तर की बात कर रही है तो उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन तीनों को आना पड़ेगा।
1: जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत ही व्यापक इसमें पार्टिसिपेशन की जरूरत है, तो नशा मुक्ति मित्रास का जो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है जिसमें वॉलंटियर्स जाके समझाते हैं, वो भी आपको लगता है कि ग्रास रूट लेवल पे जैसा आप कह रहे हैं कि जो छोटे शहर हैं या रूरल एरियाज हैं वहां के लिए एक बहुत ही सुगम और प्रभावी एक तरीका है?
0: देखिए अधिकतर ये जो मित्र बने हैं वो मित्र कहां से है, NSS से है, NYK जो MyGov आजकल उसका नया नाम हो गया है, NCC है, इन संस्थाओं के बच्चे बने हैं, क्योंकि ये बच्चे दूसरों बच्चों से थोड़े, मैं बेहतर नहीं कहना चाहता हूँ, थोड़ा ज्यादा एक्टिव है और उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है, क्योंकि वो अगर वॉलंटियरिंग कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तो लोग उनकी बात सुनते भी हैं। तो इस तरह के जो मित्र बने हैं उनका भी रोल बड़ा अच्छा है, बट उनको भी ट्रेन करने की जरूरत है, उनको बताने की, उनको एज ए पीयर एजुकेटर उनको ट्रेन करने की जरूरत है। अगर वो ट्रेन हो जाते हैं तो उसका फायदा क्या होगा, हम और यंग पॉपुलेशन में बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। एक और बात मैं बताता हूँ, जो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च करने की जरूरत है, और वो भी उतना मुश्किल नहीं है, बट इन यूनिवर्सिटीज को एंड कॉलेजेस को इनिशिएटिव लेना होगा और उसके लिए भी भारत सरकार के पास प्रोग्राम है।
1: सो आप कह रहे हैं कि भारत सरकार के पास प्रोग्राम्स हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना जो है वो एक माइक्रो लेवल पे, उसमें बाकी लोगों की जो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी हो जाती है। डॉक्टर कुमार, आपने शुरुआत में बात कही थी जो बाहर से बॉर्डर के पार से ड्रग्स आती हैं, अब चाहे वो टेररिज्म हो या चाहे वो ड्रग्स हो, ये बॉर्डरलेस कहें कि मेनेसेस हैं, ये सभी को प्रभावित करती है और सभी के लिए उतने ही हानि पहुंचती है, उनकी इकोनॉमी को, उनके पूरे जो पीढ़ी है उसको, तो क्या कहेंगे आप इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितनी जरूरी है इस समस्या से पार पाने के लिए?
0: देखिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बगैर तो आप कहीं नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है वो सैंडविच है।

0: जरूरत है।
1: तो जैसा आप कह रहे हैं कि हर लेवल पर कोऑपरेशन की जरूरत है, अगर हम भारत की बात करें तो स्टेट लेवल पर जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्सेज हैं उनको जो सेंट्रल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसके साथ मिलकर काम करना है, सभी देशों को साथ मिलकर काम करना है, बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर प्रतिबद्धता हो तो कोई भी समस्या पार की जा सकती है। सो इस उम्मीद और आशा के साथ कि नशा मुक्त भारत एक जो सपना है वो साकार होगा, हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर कुमार।
0: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे नशा मुक्त पंजाब से नशा मुक्त भारत की ओर विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: Countrywide.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: बीसवें एशियाई खेलों में आज के कार्यक्रम के साथ उपस्थित हैं हम। मैं हूं अनुपम पाठक, नमस्कार। सबसे पहले आज की सुर्खियां। नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन कुश्ती में इतिहास रचा, पाया रजत पदक। सेलिंग में फ्रांसिस मनु और प्रिंस नोबेल ने रजत पदक हासिल किया। कंपाउंड आर्चरी में गणेश मणिरत्नम ने कांस्य पदक पर निशाना साधा। स्क्वैश में महिला और पुरुष टीम दोनों स्पर्धाओं में कांस्य पदक। और हॉकी में भारत ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पहलवानी के मैट पर आज भारतीय लिहाज से एक अनोखी उपलब्धि आई। सोनीपत हरियाणा के लाल ने कमाल कर दिया। 1962 के बाद पहली बार कोई भारतीय ग्रीको रोमन स्पर्धा के इवेंट में फाइनल में पहुंचा। खुलासा शाहिद आजमी से।
2: भारतीय पहलवान नितेश कुमार ने 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीतकर 64 साल का इंतजार खत्म कर दिया। शानदार प्रदर्शन के दम पर फाइनल तक पहुंचे नितेश भले ही स्वर्ण पदक से चूक गए, लेकिन उनका रजत पदक भारत की कुश्ती के इतिहास में एक नया अध्याय लिख गया। पुरुषों के 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में नितेश ने क्वार्टर फाइनल में तुर्कमेनिस्तान के अमान बर्दी अगामेदेव को 7-1 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में मंगोलिया के गंखुयाग गनबातार को 9-0 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में उन्हें जापान के यूरी नकाजातो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन रजत पदक जीतकर नितेश ने इतिहास रच दिया। वह 1962 के बाद ग्रीको रोमन वर्ग में एशियन गेम्स फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पहलवान बने। हालांकि इससे पूर्व 2 और ग्रीको रोमन मैच खेले गए, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। 60 किलोग्राम भार वर्ग में सुमित को ईरान के अब्बासपुर रागानी के खिलाफ मुकाबला गंवाना पड़ा। वहीं 77 किलोग्राम में अमन ने शानदार शुरुआत करते हुए मंगोलिया के बोरगिल तोशिन बातार को 8-6 से हराया। हालांकि अगले मुकाबले में कतर के शाहीन बदागी मुफराद ने अमन को 9-0 से शिकस्त दी। इसके साथ ही भारत का ग्रीको रोमन कुश्ती अभियान 2 पदकों के साथ समाप्त हो गया। वहीं महिला वर्ग में आज एकमात्र वजन वर्ग में भारतीय पहलवान मानसी अहलावत 62 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। मानसी का कांस्य पदक मुकाबले में मंगोलिया के अल्तजिन तोकतोक से सामना हुआ। रोमांच से भरपूर इस मैच में मानसी ने आखिरी दम तक जोर लगाया, लेकिन 4-2 से हारकर कांस्य पदक से चूक गई। इससे पहले मानसी ने प्री क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान की इरीना कुज़निसोवा को 6-1 से हराया, जबकि क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की जो सुबिन को विक्ट्री बाई फॉल से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। हालांकि सेमीफाइनल में जापान की नोनोका ओजाकी के खिलाफ मानसी को 0-6 से हार का सामना करना पड़ा। अब कल 2 अक्टूबर को पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में सुजीत कलकल और 125 किलोग्राम में रूहाल चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिलाओं के 50 किलोग्राम में दीपांशी और 76 किलोग्राम में प्रिया मलिक मैट पर उतरेंगी।
1: नौकायन के नाविक कई दिनों से समंदर की लहरें गिन रहे थे। आज कई स्पर्धाओं में उनकी नाव किनारे पर जा लगी। स्किफ में प्रिंस नोबेल और फ्रांसिस मनु की नाव तो चांदी से भर गई, और इस चांदी की पूरी कहानी साक्षी मंडवाल से।
3: इंडिया सिक्योर्ड देयर फर्स्ट सेलिंग मेडल एट द एशियन गेम्स विद मनु फ्रांसिस एंड प्रिंस कुरिसिंकल नोबेल विनिंग सिल्वर इन द मेंस स्किफ इवेंट। द इंडियन पेयर फिनिश्ड सेकंड विद 23 नेट पॉइंट्स एंड 29 टोटल पॉइंट्स आफ्टर 9 रेसेस बिहाइंड गोल्ड मेडलिस्ट चाइना हु फिनिश्ड ऑन 16 net points. India recorded 2 race wins and 2 second place finishes in the 9 race series. China claimed the gold while Hong Kong took the bronze medal.
1: कंपाउंड आर्चरी में युवा होनहार गणेश रत्नम और चिकिता तानीपार्थी थे आर्चरी रेंज में, पदक एक ही आया। रिपोर्ट शाहिद आजमी से।
2: एशियन गेम्स के 12वें दिन तीरंदाजी में भारत के लिए एक पदक आया, तो एक मुकाबले में करीबी हार का सामना करना पड़ा। पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग में गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक के मुकाबले में गणेश ने वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149 के मुकाबले 144 अंकों से हराया। गणेश ने मुकाबले में घसब की सटीकता दिखाई और 15 में से 14 तीरों पर परफेक्ट 10 का स्कोर किया। यह एशियन गेम्स में गणेश का दूसरा पदक है। इससे पहले स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम का हिस्सा रहे थे। उनके कांस्य पदक के साथ कंपाउंड तीरंदाजी में भारत ने 3 स्वर्ण और 1 कांस्य समेत 4 पदक जीते। वहीं महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में चिकिता तानीपार्थी को इंडोनेशिया की नूरिसा दियान अशफरिहान ने बेहद करीबी मुकाबले में 144-143 हराया। इसके साथ ही चिकित्सा का व्यक्तिगत कंपाउंड अभियान क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया।
1: स्क्वाश में टीम स्पर्धाओं में भारतीय टीमें शानदार प्रदर्शन करती हुई सेमीफाइनल तक पहुंच गईं और आज सेमीफाइनल में दोनों टीमों के रैकेट विपक्षी कौशल और दमखम को पार नहीं कर सके, लेकिन उनके हौसले और अभियान की दाद दीजिए जिसने दोनों को दिलाए कांस्य पदक। रिपोर्ट धर्मेंद्र से।
4: स्क्वाश में भारत को आज दो कांस्य पदक मिले। पुरुष टीम को मलेशिया के हाथों सेमीफाइनल में 1-2 की हार से ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। पहले मैच में अभय सिंह को एनजी इयान ने 0-3 से शिकस्त दी। स्कोर 8-11 रहा, लेकिन दूसरे मैच में वीर चोटरानी ने भारत को वापसी कराई। इस मैच को चोटरानी ने 3-0 से अपने नाम किया। उन्होंने मलेशिया के खिलाड़ी संजय जीवा को 11-4, 11-8, 11-5 के स्कोर से शिकस्त दी। लेकिन वी सेंथिल कुमार निर्णायक मैच में पराजित हो गए। उन्हें ए चंद्रन ने 4 सेट में 12-10, 6-11, 8-11, 9-11 से हराया और भारत के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म कर दी। भारतीय महिला स्क्वाश टीम को भी ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। टीम को सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। इस सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत भारतीय महिला स्क्वाश टीम के लिए अच्छी नहीं रही। ये अलग बात है कि अनाहत सिंह ने चान सिन युग के खिलाफ अच्छी शुरुआत की और पहले दो गेम जीते। अनाहत ने पहला गेम 11-9 और दूसरा गेम 11-8 से अपने नाम किया। हालांकि इसके बाद चान सिन ने शानदार वापसी की और उन्होंने अगले 3 गेम जीतकर मैच को अपने नाम कर लिया। तीसरा गेम चान सिन ने 11-6 से जीता तो चौथे गेम को 13-11 और पांचवें गेम को 12-10 से जीता। इस जीत के साथ हांगकांग ने मैच में 1-0 की बढ़त बना ली। हालांकि इसके बाद तन्वी खन्ना ने भारतीय टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा। उन्होंने अपने से ऊंची रैंकिंग वाली खिलाड़ी ली का यी को बेहतरीन वापसी करते हुए हराया। पहले गेम में तन्वी को 4-11 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने अगले 3 गेम जीतकर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। तन्वी ने दूसरा गेम 13-11, तीसरा गेम 11-9 और फिर 13-11 से जीता। निर्णायक मुकाबले में जोशना चिनप्पा ने निराश किया और वह होजे लो के खिलाफ हार गई। होजे ने पहला गेम 11-4 से अपने नाम किया। इसके बाद दूसरे गेम में भी हांगकांग की खिलाड़ी का दबदबा रहा और उन्होंने गेम को 11-7 से जीता। होजे तीसरे गेम में भी हावी नजर आई और उन्होंने 11-9 से जीतकर हांगकांग को फाइनल का टिकट दिलाया।
1: हॉकी में परंपरागत विपक्षी भारत और पाकिस्तान थे आमने सामने और क्या मैच हुआ, लोमहर्षक, सांसें थाम देने वाला। भारत ने करीब 1 दशक से पाकिस्तान पर चली आ रही अपनी बादशाहत बनाए रखी, मैच 4-3 से जीत लिया। किसी बेहतरीन थ्रिलर की तरह था ये मैच। 3-3 की बराबरी, खेल समाप्त होने वाला था, सीटी बजने वाली थी, लग रहा था मामला शूट आउट में जा रहा है। तो हूटर बजने के ठीक 40 सेकंड पहले भारतीय हमला होता है, गेंद डी में पहुंचती है, पाकिस्तानी डिफेंडर के स्टिक से टकराकर फ्लेक्ट होती है और अभिषेक ने फुर्ती के साथ गेंद को गोल मुहाने के भीतर कर दिया। भारत फाइनल में पहुंच गया, लेकिन इस मैच के रंग कई बार बदले थे। पहले दोनों क्वार्टर्स भारत के नाम और अगले दोनों में भारतीय रक्षण की चूक और पाकिस्तान के पलटवार। पहले क्वार्टर में ही 5वें मिनट और फिर 13वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर हिट्स का जादू चलाया, भारत 2-0 से आगे। हाफ टाइम के बाद सुखबीर ने एक बेहतरीन फील्ड गोल कर भारत को 3-0 से आगे कर दिया। भला किसने सोचा था कि पाकिस्तान अभी भी मैच में वापस आ सकता है, लेकिन लगा भारतीय रक्षण की धार अच्छा।

0: अनकुंद सी हो गई है। पहले पेनल्टी कॉर्नर में अल महमूद और फिर हनान शाहिद का फील्ड गोल और उसके बाद चौथे क्वार्टर में राणा वहीद का भी लेफ्ट फ्लैंक से मारा गया करारा शॉट जिससे गोलकीपर कोसों दूर थे। बहरहाल अभिषेक के गोल ने भारत की जीत पक्की कर दी। अब स्वर्ण पदक के लिए भारत मलेशिया से भिड़ेगा 3 तारीख को और कहने की जरूरत नहीं, हॉकी का स्वर्ण पदक और सभी पदकों से ज्यादा प्यारा होता है हमें। क्रिकेट में आखिरकार भारतीय टीम सचमुच मैदान में उतरी और शानदार मैच खेला। इस शानदार जीत की शानदार कहानी धर्मेंद्र से।
1: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराकर एशियन गेम्स के फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने जापान के निशिन में खेले गए सेमीफाइनल में पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 169 रन बनाए। ईशान किशन ने नाबाद 80 रन की पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी ने भी 21 गेंदों पर 38 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 9.5 ओवर में 45 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका के 6 बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल सके। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा ने 2-2 विकेट भारत के लिए लिए। भारत ने श्रीलंका पर 2020 क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी बनाया। पिछली सबसे बड़ी जीत 93 रन की थी जो 2017 में कटक में मिली थी। अब शनिवार को गोल्ड के लिए भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये पहला मौका है जब ये दोनों टीमें एशियन गेम्स में क्रिकेट मुकाबले में आमने सामने होंगी। ईशान ने बताया कि भारतीय टीम फाइनल मैच के लिए तैयार है। ईशान किशन ने इस मैच के बारे में कहा,
2: आई थिंक जस्ट कीपिंग इट सिंपल, यू नो, यू डोंट थिंक सो मच। वी प्लेड टुडे, वी नो द कंडीशंस आर नॉट गोइंग टू बी सो इजी, स्पेशली दे आर आल्सो स्पिनर फ्रेंडली टीम। एट द सेम टाइम, यू नो, यू जस्ट डोंट थिंक लाइक व्हाट्स गोना हैपन आफ्टर 2 डेज। यू जस्ट कीप काम, यू प्ले योर शॉट्स, यू बी इन द मोमेंट एंड जस्ट एंजॉय दोस क्रंच मोमेंट्स।
0: सिपक टॉकरा में पुरुष क्वाड्रेंट में अरुण और बॉबी कुमार के खेल ने उम्मीदें जगाई रखी। जानते हैं साक्षी मंडवाल से।
3: इंडिया सिक्योर्ड अ मेडल इन मेंस क्वाड्रेंट सिपक तक्रो आफ्टर बीटिंग म्यांमार 2-1 इन द फाइनल ग्रुप मैच। द विक्ट्री सेंट इंडिया इनटू द सेमीफाइनल्स एंड कीप्स देयर अनबीटन रन इंटैक्ट अक्रॉस 3 ग्रुप मैचेस। इंडिया फिनिश्ड टॉप ऑफ देयर ग्रुप एंड आर अश्योर्ड ऑफ अ प्लेस ऑन द पोडियम। अर्लियर इन द डे वी सॉ इंडिया डिफीट वियतनाम इन द मेंस क्वाड्रेंट ग्रुप ए मैच ऑफ द सिपक तक्रो इवेंट। दे वन इन स्ट्रेट सेट्स बाय अ मार्जिन ऑफ 15-12, 15-7, thereby डिफीटिंग वियतनाम 2-0।
0: शूटिंग की स्पर्धाएं आज समाप्त हो गई। अंतिम स्पर्धा भी कल से जारी पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश भानवाला फाइनल तक तो पहुंचे लेकिन पदक पे निशाना नहीं साध पाए। आज की स्पर्धा पर शाहिद आजमी का विवरण।
4: एशियन गेम 2026 में शूटिंग स्पर्धा में आज भारत की आखिरी उम्मीद अनीश भानवाला का सफर 25 मीटर रैपिड पिस्टल के फाइनल में 7वें स्थान पर रहते हुए खत्म हुआ। क्वालिफिकेशन में अनीश ने 576 का स्कोर कर 9वां स्थान हासिल किया। हालांकि एक देश से अधिकतम 2 निशानेबाजों के फाइनल में पहुंचने के नियम के तहत उन्हें फाइनल में जगह मिली। आपको बता दें दक्षिण कोरिया के 3 निशानेबाज क्वालिफाई हुए थे लेकिन नियम के तहत उनके 2 निशानेबाज ही फाइनल में पहुंच सके। फाइनल में अनीश ने एक अहम दौर में 15 में से 11 सटीक निशाने लगाए लेकिन टाई ब्रेकर में पीछे रह गए। इस तरह अनीश 7वें स्थान पर रहे और उनके साथ ही एशियन गेम्स में भारत का शूटिंग अभियान समाप्त हो गया। अब एक नजर डालते हैं एशियन गेम 2026 में भारतीय निशानेबाजों के प्रदर्शन पर। भारतीय शूटरों ने एक बार फिर अपनी सटीक निशानेबाजी का दम दिखाया। हालांकि कुछ नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। ओवरऑल भारत ने कुल 15 पदक अपने नाम किए जिनमें 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि रही नीरू ढांडा का प्रदर्शन। उन्होंने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने के साथ ही कायनन चेनाई के साथ मिक्स ट्रैप में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में एशियन गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। और अगर पिछले एशियन गेम्स की तुलना करें तो हांगझाऊ 2022 एशियन गेम्स जो 2023 चीन में आयोजित हुए थे वहां भारतीय निशानेबाजों ने 22 पदक जीते थे जिनमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे।
0: वॉलीबॉल में टीम दमखम तो पूरा लगाती है लेकिन 1986 के बाद से पदक नहीं आ पा रहा। लेकिन आज क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को वो ब्लॉक नहीं कर पाए। विवरण धर्मेंद्र से।
1: वॉलीबॉल में भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान से 0-3 से हार गई। पाकिस्तान ने मुकाबला 25-19, 25-23, 25-18 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। ये मैच 1 घंटे 20 मिनट तक चला। भारत को सबसे ज्यादा 10 अंक अंशवाल राय ने दिलाए। पाकिस्तान के मुराद खान ने 22 अंक बनाए। इस हार के साथ भारत का एशियन गेम्स में वॉलीबॉल अभियान खत्म हो गया।
0: जूडो में उम्मीदें यामिनी मौर्य से थी लेकिन मन मोह लिया मणिपुर।

0: की एक लड़की ने कांस्य पदक के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई। जूडो का विवरण साक्षी मंडवाल से।
1: In judo, Yamini Maurya's campaign ended with a defeat in the women's 57-kilogram repechage at the Asian Games. While India's Inanganbi Taklambam first beat Nepal's Poonam Shrestha by IPO to qualify for the quarterfinals. However, she lost by IPO to North Korea's Song Hui Moon in the quarterfinals. Song's reaching the final opened up the repechage route for Taklambam. The Indian was scheduled to face China's Jing Tang in the repechage round. However, the Chinese judoka was disqualified before the bout. Consequently, Taklambam was awarded a walkover victory by a Fusengachi. India's Inanganbi Taklambam lost the bronze medal bout in the women's 70-kilogram event, getting defeated by Anujin Ulzi, who won the bout by Waza Ari.
0: इन एशियाई खेलों में टेनिस ने जरूर कई दिल तोड़ दिए, मायूस किया। 40 साल बाद टेनिस में भारतीय दल बिना पदक के रह गया। सुमित नांगल भी अपना मैच आज हार बैठे क्वार्टर फाइनल का। लेकिन गोल्फ की बात करें तो उसमें उम्मीदें जगी हुई हैं। कल आरंभ हुआ था, भारतीय टीम चुनौती देने की स्थिति में लग रही थी, और आज क्या हुआ इसका विवरण दे रही हैं साक्षी मंडवाल।
1: India's Pranavi Urs was in the second place in the women's individual stroke play after two rounds, carding 11 under 129 to set two strokes behind leader Shannon Juan Jin Tan of Singapore. Diksha Dagar was tied 21st at 4 over 144, while Aditi Ashok was tied 25th at 5 over 145. India are third in the team standings behind China and Singapore.
0: साइकिलिंग ट्रैक में आज पुरुष ओमनियम, महिला स्प्रिंट और मेडिसिन की प्रतियोगिताएं थीं। ओमनियम में हर्षवीर सिंह सैकों नवे स्थान पर पहुंचे। महिलाएं मेडिसिन स्पर्धा समाप्त ही नहीं कर सकी और स्प्रिंट में साइकिलों के चक्के रिपेचेस तक पहुंचकर ही थम गए। तो ताइक्वांडो में क्या हुआ, आइए जानते हैं साक्षी मंडवाल से एक बार फिर।
1: इंडियाज कैंपेन इन द वुमेन्स इंडिविजुअल पॉम्से इवेंट इन ताइक्वांडो एंडेड एज रूपा बेयर बाउड आउट ऑफ द सेमीफाइनल। शी फिनिश्ड विद 7.6100 पॉइंट्स। दिस वाज नॉट इनफ टू फिनिश अमंग द 8 स्टार्स हु क्वालिफाइड फॉर द फाइनल।
0: रग्बी सेवन के मुकाबलों में भारत पूल ई में है। हांगकांग से पहला मैच ही बहुत मुश्किल साबित हुआ भारत के लिए। इस स्पर्धा का पूरा विवरण साक्षी मंडवाल से।
1: इंडियाज वुमेन्स रग्बी सेवन टीम कंप्राइजिंग शिखा यादव, दुमुनी मारंदी, संध्या राय, मामा नायक, वैष्णवी पाटिल, कल्याणी पाटिल, अमनदीप कौर, आरती कुमारी, भूमिका शुक्ला, गुरिया कुमारी, निर्मल्या राउत, संध्या रानी टुडू एंड उज्ज्वला घुगे हैड अ टफ स्टार्ट ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द आईची नगोया 2026 एशियन गेम्स, सफरिंग टू हेवी डिफीट्स इन पूल बी, पूल ई इन सम क्लासिफिकेशंस एट द पलोमा मिजुहो रग्बी स्टेडियम। In match number 1, India was handed a defeat by Hong Kong China 33-7, while in match number 2, India was handed a defeat by People's Republic of China 43-5.
0: और अब पदक तालिका की ताजा स्थिति शाहिद आजमी से।
2: एशियन गेम्स 2026 में भारत के खाते में अब तक 10 स्वर्ण, 22 रजत और 32 कांस्य सहित 64 पदक हैं और भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर है। वहीं मेडल टेबल पर चीन 154 स्वर्ण समेत 288 पदकों के साथ पहले, जापान 59 स्वर्ण समेत 217 पदकों के साथ दूसरे और दक्षिण कोरिया 30 स्वर्ण समेत 113 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है।
0: ये एशियाई खेल अपने समापन की ओर बढ़ चले हैं, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन अभी भी पदकों के लिए पूरी रस्साकशी जारी है। वो सवाल जो प्रतियोगिताएं उठाती हैं, जिनके जवाब होते हैं स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक पाना, उसके लिए जद्दोजहद जारी है और भारतीय खिलाड़ी भी इसमें लगे हुए हैं। कल का दिन बहुत खास रहने वाला है क्योंकि महिला हॉकी का फाइनल है, सारी निगाहें वहीं रहेंगी। भारत की लड़कियां चीन के विरुद्ध उतरेंगी हॉकी के मैदान पर। बहुत शानदार मैच रहेगा ये। इसके बारे में जानना हो तो हमारी अपडेट्स आकाशवाणी पे साथ रखिएगा। भारतीय लड़कियों ने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत शानदार खेला है। सबसे पहले उज्बेकिस्तान को 19-0 से परास्त किया, उसके बाद इंडोनेशिया को 17-1 से, थाईलैंड को 20-1 से, जापान को 3-1 से, सिंगापुर को 7-0 से और सेमीफाइनल में कोरिया की मजबूत टीम को 2-0 से परास्त किया था। यानी पूरे जोश में होंगी लड़कियां और स्वर्ण पदक भारत के हिस्से में आना चाहिए। कल और 3 स्वर्ण पदक हैं जिन पर भारतीय निगाहें रहेंगी। बॉक्सिंग के रिंग में उतरेंगे अंकुश पंघाल, परवीन हुड्डा और लवलीना बोरगोहेन। देखते हैं बॉक्सर्स भारत के लिए क्या करके दिखाते हैं। वैसे बॉक्सर्स ने अब तक के इन एशियाई खेलों में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, पहले से कहीं बेहतर। अगर प्रदर्शन ऊंचा हुआ है तो बॉक्सिंग वो स्पर्धा है जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा करके दिखाया है। कुश्ती में भी कल भारतीय पहलवान बहुत कुछ कर गुजरने की चाह लेकर मैट पर उतरेंगे। फ्री स्टाइल में सुजीत कलकल होंगे 65 किलोग्राम भार वर्ग में, रजत होंगे 125 किलोग्राम भार वर्ग में, दीपांशी 50 किलोग्राम भार वर्ग में और प्रिया 76 किलोग्राम भार वर्ग में अपने दांव पेंच दिखाएंगे। तो आर्चरी में रिकर्व टीम की सेमीफाइनल स्पर्धाएं हैं। अंकिता भगत, कीर्ति और कुमकुम खेलेंगी चीन के विरुद्ध। इसके अलावा केनो स्लालोम में महिला और पुरुष के क्रॉस इंडिविजुअल हैं। साइकिलिंग में महिला ओमनियम, पुरुष काइरिन और पुरुष मेडिसन की प्रतियोगिता होगी। गोल्फ में पुरुष टीम राउंड 3 में खेलेगी और इसके अलावा इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले महिला और पुरुष का जारी रहेगा। रग्बी 7 में मलेशिया के विरुद्ध मैच होगा। सेपक टोकरा में महिला क्वाड्रेंट के मुकाबले होंगे। ताइक्वांडो में कशिश मलिक उतरेंगी। और अब समय आ पहुंचा है विदा लेने का। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, कल सुबह 9:30 बजे से FM रेनबो पर नियमित अपडेट्स सुनना मत भूलिएगा और रात 10 बजे हमारा ये हाइलाइट्स कार्यक्रम। तो फिलहाल मुझे अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा, एडिटर विशाल कुमार और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान।
3: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली से प्रसारित विशेष कार्यक्रम। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम महफिल में चंद गजलें। तो चलिए गजलों का सिलसिला शुरू करते हैं इस गजल से।

श्रोताओं, इस गजल के साथ ही आज का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। कार्यक्रम सुरों के रंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज सुरों के रंग कार्यक्रम में अलग अलग रंग यानी अलग अलग गीत हम पेश करेंगे। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं बजरंगी भाईजान का ये गीत के स्वर में। कौसर मुनीर के बोल हैं, संगीत है प्रीतम का। और उसके बाद आप सुनेंगे फिल्म लव यात्री का गीत अतीफ असलम की आवाज़ में। शबीर अहमद के बोल हैं और संगीत है तनिष बख्शी का। तो चलिए हम गीतों का सिलसिला शुरू करते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग में फिल्म बजरंगी भाईजान के इस गीत से।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग छवि के साथ। अब अगला गीत आपको हम सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है दिल का रिश्ता, अलका याग्निक की आवाज़ है।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम का ये गीत अनुराधा पौडवाला उदित नारायण की आवाज़ में। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कुछ ना कहो का ये गीत शान और साधना सरगम की आवाज़ों में।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराए लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में भी बदलाव किया है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। पुदुचेरी जिला प्रशासन ने 6 अक्टूबर को होने वाले थट्टन चावड़ी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए 4 फ्लाइंग स्क्वाड और एक विशेष निगरानी टीम 24 घंटे तैनात की गई है। इसके अलावा 5 बाइक स्क्वाड और आबकारी विभाग की 3 टीमें भी लगातार निगरानी कर रही हैं। उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार रविवार 4 अक्टूबर को शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदाता चुनाव संबंधी शिकायतें टोल फ्री नंबर 1950 या निर्वाचन आयोग के सी विजिल मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज करा सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। इस घटना के कारण विमान को सऊदी अरब में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। फ्लाई दुबई की ये उड़ान दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही थी। इसी दौरान सह पायलट ने विमान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और उसे रोकने की कोशिश कर रहे कैप्टन स्मिथ मछार पर चाकू से हमला किया। घायल कैप्टन स्मिथ मछार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। यह जानकारी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मछार पर गर्व है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ टोटल 66 पदक जीत लिए। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने रजत तथा महिला स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। उधर पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को और पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with principles of pro-people, pro-active and good governance. The Prime Minister said the country is moving rapidly on the reform express and the institutions that conduct examinations must also work on reforms that are the need of the country. Addressing the centenary celebrations of Union Public Service Commission at Bharat Mandapam in New Delhi today, the Prime Minister stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office but to public service.
1: हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा. हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो. इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है बल्कि वो यह भी देखे युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है.
2: The Prime Minister said an examination should not be considered just as an event as it is related to the future of the youth. Mr. Modi noted that a delay of even a few months can create difficulties for the youth and therefore the examination system should follow the principle of time certainty. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have praised Captain Smith Mutcher for his heroic courage in preventing a major tragedy and saving many precious lives. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and U.S. President Donald Trump have also hailed Smith Mutcher as a hero who averted a big tragedy. Mr. Netanyahu thanked Captain Smith Mutcher for saving the lives of 174 people on board Tel Aviv-bound Fly Dubai flight. Meanwhile, External Affairs Ministry today said it continues to closely follow the health condition of Captain Smith Mutcher. It said in a statement that after receiving initial medical treatment in a hospital in Tabuk, Saudi Arabia, he has now been shifted to Abu Dhabi for continued medical attention and recovery. Indian Ambassador in UAE met Captain Mutcher in hospital and inquired about his well-being. Earlier, the ambassador also met his family and assured all possible support for the captain's health and well-being. The Indian Embassy in Abu Dhabi and Consulate in Dubai are in close touch with the local authorities in the matter. Union Home Affairs Minister Amit Shah today chaired a meeting in New Delhi to resolve the long-standing Mahanadi water dispute. Union Jal Shakti Minister C.R. Patil, the Chief Ministers of Chhattisgarh and Odisha and other senior officials were present at the meeting. The dispute over sharing of Mahanadi waters between Chhattisgarh and Odisha has remained unresolved for several years. Odisha had requested the central government in November 2016 to set up a tribunal to resolve the dispute. The government has extended the validity of exempted fast tags from existing 1 year to up to 5 years for Divyangjan, depending on the degree of disability. The centre has revised the guidelines for issuance and renewal of the exempted fast tags for eligible Divyangjan and persons with disability beneficiaries. The guidelines will come into effect from tomorrow. Bihar continues to battle floods. Several rivers in the state are flowing above the danger mark. Chief Minister Samrat Chaudhary has sought the assistance of the Indian Air Force for relief and rescue operations in view of the seriousness of the situation. After inspecting the rising water level of the Ganga in Patna today, Mr. Chaudhary told reporters that several rivers in the state are flowing at high levels. At the Asian Games 2026 in Japan, India enjoyed another action-packed day today with the men's hockey and cricket teams reaching their respective finals. Men's hockey team defeated their arch-rivals Pakistan 4-3 in a thrilling semi-final, while the cricket team beat Sri Lanka by 124 runs to book a place in the gold medal match. Greco-Roman wrestler Nitesh Tiwaj today bagged silver medal in men's 97kg at Asian Games in Japan. Nitesh lost to Japan's Yuri Nakazato 0-4 in the final. Nitesh missed out on a historic gold but secured India's first silver medal in Greco-Roman wrestling at the Asian Games since 1962. Indian pair of Manu Francis and Prince Kurisinkal Noble bagged the silver medal in the men's skiff opening race 9 of the Asian Games sailing competition. And that is the end of this news bulletin.
3: श्रोताओं आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से. ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर. अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है. कल प्रातः 5:53 पर पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए